मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

सुबह की सुंदर भोर एक ऐसा मधुर पल जब संपूर्ण प्रकृति शांत और सौम्य रूप में दिखाई देती है। हल्की ठंडी हवा, आसमान में फैली गुलाबी रोशनी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सब मिलकर मन को शांति और सुकून से भर देते हैं। नमस्ते, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब समय हो रहा है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान

0: नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किसानों के खेत पर नहरों द्वारा सिंचाई की दक्षता 35 से 40%, जिसे दक्षतापूर्ण जल प्रबंधन अपनाकर 60 से 70% तक बढ़ाया जा सकता है, तथा भूजल की उपयोग दक्षता लगभग 60% है, जिसे बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है। इसके लिए कई उपाय करने होंगे अगर इस तरह से हम इसकी जो संभावना है उसको साकार रूप देना चाहते हैं। तो पहली बात तो यह कि भूमि की सतह समतल न होने से खेत में समान रूप से सिंचाई नहीं की जा सकती है। आजकल उपलब्ध लेजर प्रणाली से खेत को पूर्णतया समतल किया जा सकता है, जिसके कई लाभ होते हैं। इसलिए इस समतलीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक समतल सतह हो जाती है, इससे सिंचाई में लगने वाले पानी और समय में भी बचत होती है। खेत में पानी का समान वितरण होगा, इसलिए सिंचाई जल की भी बचत हो सकती है। फसलों में समान नमी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है, साथ ही साथ फसलों का समान अंकुरण एवं अच्छी वृद्धि भी होती है, क्योंकि वायु संचार भी उसी अनुपात में बेहतर हो पाता है। खेत में आने जाने की सुगमता भी रहती है। तो ये कई फायदे हैं भूमि के समतलीकरण करने से। और सिंचाई का प्रबंधन अगर हम देखें तो इसमें फसल की क्रांतिक अवस्थाओं, जैसे कि फसल में वृद्धि एवं विकास के लिए पानी की जो अधिकतम आवश्यकता है, उस संदर्भ में अगर हम इसे ध्यान में रखते हुए सिंचाई की सारणी या जो एक शेड्यूल होता है, कार्यक्रम बनाना जिसे कहते हैं, वह अगर बना लेते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पारंपरिक क्षमता है उसमें भी सुधार की तमाम संभावनाएं हैं। इसलिए पानी के स्रोत से फसल तक पहुंचने में रिसने या फिर चूने से पानी की जो क्षति होती है, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाकर न्यूनतम किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे 3 से 4% जमीन की बचत भी होगी, जो खेती के काम आ सकती है। उन्नत सिंचाई का ढंग भी आवश्यक है, इसलिए नालियां और बेड बनाकर बेड पर बुआई करना और उनके मध्य बनी नालियों में पानी देना, जैसे गेहूं में, या दूर बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, गन्ना, आलू और सब्जियों में मेड़ों पर बुआई व नालियों में पानी का प्रयोग करने से 30 से 40% तक पानी की बचत हो जाती है। चाहे वह खरीफ के लिए हो, जायद के लिए हो, रवि के लिए हो, इन सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। खरीफ में ज्यादा पानी लगने की जब स्थिति बनती है तो इन्हीं नालियों के माध्यम से उसे बाहर भी निकाला जा सकता है, जो हमारी फसल के लिए लाभदायक स्थिति पैदा करता है। सूक्ष्म सिंचाई भी होती है। इसके लिए यह देखा जाता है कि प्रवाह विधि से सिंचाई करने पर पानी के अपव्यय के साथ फसल उत्पादकता प्रभावित होती है और जल भराव, लवणीकरण, भूमि की दशा में गिरावट, तमाम ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो नुकसानदेह होती हैं। सतही एवं भूजल के दक्ष प्रयोग के लिए स्प्रिंकलर या फिर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, इनकी जो जाल बिछाने की होती है पाइप के द्वारा, उसे भी कर लिया जाता है तो महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की बचत के साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से बागवानी का क्षेत्र, जिसमें हम सब्जी उत्पादन भी शामिल करते हैं, उसको इसके तहत लिया जाता है। खेत में पानी रोकना भी जरूरी होता है। यदि खेत के चारों ओर 20 से 22 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बना दी जाए तो वर्षा का पानी खेत में रुकेगा, विशेषतः धान के खेत में। इससे धान की खेती में सिंचाई की आवश्यकता कम होगी और साथ ही साथ भूजल भी रिचार्ज होता रहेगा, जिससे नमी बनी रहेगी, भूजल का जो स्तर है वह भी मेंटेन रहेगा। मल्च का प्रयोग करने से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, जिससे कम वाष्पोत्सर्जन व कम खरपतवार उगते हैं और साथ ही साथ भूमि संरचना में सुधार होता है। नए विकसित यंत्र हैप्पी सीडर, जो मल्चिंग एवं बुआई दोनों ही कार्य एक साथ करता है, इसका प्रयोग सुविधाजनक ढंग से कर सकते हैं और इस तरह बेहतर से बेहतर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
1: अभी आप जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर नगेन सिंह रघुवंशी द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। सुविचार हमें स्मरण कराते हैं कि परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करें तो धीरे धीरे वही विचार हमारी आदत बन जाते हैं। तो आज के इस विचार में सुनिए

0: गंगा दशहरा के बारे में। स्वर प्रेम नारायण मल्होत्रा का है।
1: गंगा दशहरा। गंगा माता भारत भूमि की पवित्र नदी है और जनमानस के कल्याण के उद्देश्य से हिमालय में गोमुख से निकलकर गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, सुखताल, कानपुर, बिठूर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, बलिया और कलकत्ता होते हुए गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं और अपने मार्ग में लाखों श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अपने तन और मन को पवित्र करने का अवसर प्रदान करती हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में माँ गंगा का भगीरथी के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गंगा के स्थान पर यथाशक्ति दान पूर्ण करते हैं। इस दिन के स्नान को स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि के योग के साथ मनाया जाता है। पूजन की विधि। गंगा दशहरे के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में खड़े होकर ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाए, नमः का 10 बार जाप कर नदी में डुबकी लगानी चाहिए। अगर आपके पास कोई नदी नहीं है तो घर में स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर ओम नमो भगवते इयम ही श्री हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्या स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें और फिर फूल को पानी में अर्पित कर दें। इसके साथ ही अपने पितरों, सभी संबंधियों और इष्ट मित्रों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। स्नान पूजन की विधि। स्नान के समय 10 दीपों का दान करना न भूलें। वहीं नदी में 10 डुबकी लगाने से पितरों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। उसी दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए इसे महापूर्णकारी पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मोक्षदायिनी गंगा माता की पूजा होती है। गंगा दशहरे के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। गंगा दशहरे के दिन किसी भी नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए कम से कम 10 पापों का नाश होता है। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम गंगा दशहरा पड़ा है। गंगा दशहरा व्रत और पूजन की विधि। गंगा दशहरे का व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो वैसे ही व्रत करते हैं तो भी उसको उतना ही लाभ होता है। एकादशी की कथा सुनते हैं और अगले दिन और दान पुण्य करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, जल भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि चीजें भक्त दान करते हैं।
0: आज के सुविचार में आप सुन रहे थे गंगा दशहरा के बारे में। स्वर प्रेम नारायण मल्होत्रा का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।

0: 8700-001-4242।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

मन जब श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तब वही मन एक पवित्र मंदिर बन जाता है। सच्ची आराधना बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि हृदय में बसे ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण में है।

कन्याओं का सम्मान करना वास्तव में देवी स्वरूप का सम्मान करना है। लता मंगेशकर जी की मधुर और श्रद्धामय आवाज इस भजन में वात्सल्य, भक्ति और पवित्रता का अद्भुत भाव भर देती है।

जब मनुष्य अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में सौंप देता है, तब चिंता और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हम मनुष्य सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, इसीलिए अपने अहंकार, अपनी इच्छाएं, अपनी व्यथा, सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देनी चाहिए।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 182।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारंगावकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को है। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र

0: जितना साधारण है उतना ही प्रभावशाली भी। हम बात कर रहे हैं ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की, एक ऐसा घोल जो शरीर को निर्जलीकरण से बचाकर जीवन रक्षक बन सकता है, विशेषकर गर्मियों और बरसात के मौसम में जब डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी और नमक की कमी एक आम समस्या बन जाती है। शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना होता है। जब हम पसीने, उल्टी या दस्त के कारण अधिक मात्रा में पानी और जरूरी लवण खो देते हैं तो शरीर की सामान्य क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। ये स्थिति डिहाइड्रेशन कहलाती है। डिहाइड्रेशन सिर्फ प्यास लगने या होंठ सूखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये स्थिति गंभीर रूप लेकर बेहोशी, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है। ऐसे समय पर ORS का सेवन करना न केवल आवश्यक होता है बल्कि ये एक जीवन रक्षक कदम भी बन सकता है। ORS में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम जैसे लवण होते हैं जो शरीर में खोई हुई ऊर्जा और जल की कमी को बहुत तेजी से पूरा करते हैं। इसकी खूबी ये है कि ये आसानी से घर में भी बनाया जा सकता है और बाजार में भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है और इसका उपयोग दुनिया भर में दस्त या डिहाइड्रेशन के मामलों में प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है। गर्मियों के दिनों में जब सूरज सिर पर होता है, शरीर अधिक पसीना छोड़ता है और यदि आप अधिक समय तक धूप में रहते हैं, मेहनत करते हैं या छोटे बच्चे हैं जो लगातार खेल में लगे रहते हैं तो शरीर में पानी और लवण की मात्रा तेजी से कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल पानी पीना काफी नहीं होता क्योंकि शरीर को सिर्फ तरल नहीं बल्कि नमक और ऊर्जा भी चाहिए होती है। यहाँ ORS सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है क्योंकि ये न केवल पानी की कमी को पूरा करता है बल्कि शरीर की अंदरूनी प्रणाली को भी संतुलन में रखता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ORS और भी जरूरी हो जाता है। छोटे बच्चों का शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो सकता है और उन्हें दस्त या उल्टी की स्थिति में तुरंत ORS देना जरूरी होता है। इसी तरह बुजुर्ग जिनका पाचन और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी होती है उनके लिए भी ये घोल जरूरी राहत का काम करता है। माताएं जो छोटे बच्चों को संभालती हैं, उन्हें ORS की महत्ता और इसका सही उपयोग जरूर आना चाहिए ताकि समय पर दिया गया एक घोल किसी गंभीर बीमारी को टाल सके। आजकल बाजार में कई फ्लेवर्ड ORS पैकेट मिलते हैं जो पीने में बच्चों को पसंद भी आते हैं और शरीर को फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश पैकेट ना हो तो आप घर पर भी ORS बना सकते हैं। 1 लीटर उबले हुए ठंडे पानी में 6 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक मिलाएं और अच्छे से घोल लें। ये घोल पूरी तरह से सुरक्षित है और शरीर के लिए उतना ही प्रभावी भी। इस समय जब गर्मी का मौसम अपने चरम पर होता है और साथ ही बरसात के समय जल जनित रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है, ORS को अपने घर के प्राथमिक उपचार बॉक्स में जरूर शामिल करें। जब भी किसी को कमजोरी, चक्कर, बार बार पसीना आना या दस्त और उल्टी जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत ORS देना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले ये पहला और बेहद असरदार कदम होता है। श्रोताओं, भारत जैसे देश में जहां गर्मी और दस्त जैसी बीमारियां आम हैं, ORS ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बेहद सस्ता, सुलभ और सरल है। जागरूकता की कमी के कारण कई बार लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि ये वो समाधान है जो समय पर लिया जाए तो अस्पताल की जरूरत ही न पड़े। तो आइए इस गर्मी हम सब ORS को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बच्चों, बुजुर्गों, खेत में काम करने वाले लोगों, दफ्तर में दिन भर मेहनत करने वालों, सभी के लिए ये एक जरूरी साथी है। ये सिर्फ एक घोल ही नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप ORS एक फायदे अनेक विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रही थी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त।

उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। आज शाम 5 बजे नागरिक अलंकरण समारोह भाग एक का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे विमल किशोर श्रीवास्तव से सुनिएगा काव्य पाठ। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाध फरमाइएगा। आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश सुनिएगा नगमा।

पेशकश सुनेगा नगमगी प्रोग्राम, सदाकार हैं आसिफ इकबाल। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व फुटबॉल दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर नरेश मल्होत्रा का ख्याल गायन प्रसारित होगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:30 पर विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन श्रोता सुनेंगे। दिन में 1:15 पर घर आंगन कार्यक्रम में रश्मि शील की कहानी बहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर विनोद कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता का विषय है जायद फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर सरोकार में सुनेगा ओबी पर आधारित कार्यक्रम पत्थरों में तब्दील होती धरती और हमारा सरोकार। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर पशुओं में गला घोटू कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी से की गई भेंटवार्ता सुनेगा। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें विश्व थायराइड दिवस पर थायराइड ग्रंथि की समस्याएं विषय पर डॉक्टर सुभाष यादव से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। भेंट करता है आशीष चतुर्वेदी। साथ ही चक्कर आने का कारण और कान की समस्याएं, इस विषय पर डॉक्टर मनीष चंद बताएंगे। भेंट करता है आशीष चतुर्वेदी। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर शशि लेखा सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आप आनंद ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर कैलाश जोशी की गाई गजलें पेश की जाएंगी। पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत का आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूं। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व फुटबॉल दिवस। प्रिय श्रोताओं, जब मैदान में हजारों दर्शकों की गूंजती आवाजें, खिलाड़ियों की तेज कदम, गेंद की रफ्तार और गोल होते ही उठता उत्साह एक साथ मिलते हैं, तब जन्म लेता है दुनिया का सबसे रोमांचक खेल फुटबॉल। आज विश्व फुटबॉल दिवस केवल एक खेल का उत्सव नहीं, बल्कि जुनून, अनुशासन, टीम भावना और संघर्ष की उस कहानी का प्रतीक है जिसने दुनिया के करोड़ों दिलों को एक धड़कन में बांध दिया। फुटबॉल एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मैदान में दौड़ते खिलाड़ी, पास होती गेंद और जीत के लिए बहता पसीना अपने आप सब कुछ कह देता है। यही कारण है कि फुटबॉल आज केवल

फुटबॉल का इतिहास भी बेहद रोचक रहा है। माना जाता है इसकी शुरुआत सदियों पहले विभिन्न देशों में अलग अलग रूपों में हुई, लेकिन आधुनिक फुटबॉल को संगठित स्वरूप देने का कार्य इंग्लैंड में हुआ। आज यह खेल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में गिना जाता है। हर चार वर्ष में आयोजित होने वाला फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। जब विश्व कप का रोमांच शुरू होता है तो सीमाएं, भाषाएं और संस्कृतियां सब पीछे छूट जाती हैं और केवल एक भावना शेष रहती है, अपने पसंदीदा देश और खिलाड़ियों को जीतते देखने की भावना। फुटबॉल केवल एक ताकत का खेल नहीं, यह बुद्धिमत्ता, धैर्य और तालमेल का अद्भुत संगम है। मैदान में खिलाड़ी केवल गेंद को नहीं दौड़ाते बल्कि अपने सपनों को भी गति देते हैं। एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है और एक सही पास पूरी टीम को जीत दिला सकता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। फुटबॉल हमें सिखाता है कि जीवन में अकेले नहीं बल्कि टीम बनाकर आगे बढ़ना जरूरी है। जब खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी जीत संभव हो पाती है।

आज के युवाओं के लिए फुटबॉल की सार्थकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आधुनिक समय में जहां युवा मोबाइल, इंटरनेट और आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं, वहीं फुटबॉल उन्हें मैदान से जोड़ता है। यह खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति भी बढ़ाता है। फुटबॉल खेलने वाला युवा अधिक सक्रिय, अनुशासित और आत्मविश्वासी बनता है। खेल के दौरान तेज निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होती है।

फुटबॉल युवाओं को हार से सीखना भी सिखाता है। हर मैच में जीत संभव नहीं होती, लेकिन हार के बाद फिर उठ खड़े होना ही असली खिलाड़ी की असली पहचान है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश भी है। आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में जहां छोटी असफलताएं कई युवाओं को निराश कर देती हैं, वहां फुटबॉल उन्हें संघर्ष करना और निरंतर आगे बढ़ना सिखाता है। दुनिया के महान खिलाड़ी की कहानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लियोनेल मेसी ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपनी प्रतिभा को दुनिया से चौंका दिया। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अनुशासन और अथक मेहनत के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। इन खिलाड़ियों की सफलता बताती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता।

भारत में भी फुटबॉल धीरे धीरे युवाओं के बीच नई पहचान बना रहा है। इंडियन सुपर लीग और विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ने इस खेल को नई ऊर्जा दी है। गांवों और छोटे शहरों के युवा अब फुटबॉल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि करियर के रूप में भी देखने लगे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का बढ़ता उत्साह ये साबित करता है कि आने वाला समय भारतीय फुटबॉल के

0: विश्व फुटबॉल दिवस हमें याद दिलाता है कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की शक्ति भी रखते हैं। फुटबॉल मैदान में जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थिति का कोई महत्व नहीं, वहां केवल प्रतिभा, मेहनत और टीम भावना की पहचान होती है। यही संदेश आज दुनिया की सबसे अधिक आवश्यकता है, एकता और सहयोग का संदेश। आज विश्व फुटबॉल दिवस हमें इस अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में खेलों को महत्व देंगे, युवाओं को मैदान से जोड़ेंगे, उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करेंगे, क्योंकि खेल केवल शरीर को नहीं बल्कि व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाते हैं। आइए फुटबॉल की इस ऊर्जा, अनुशासन और उत्साह को अपने जीवन में उतारें और यह संदेश फैलाएं कि जो मैदान में संघर्ष करना सीख जाता है वह जीवन की हर चुनौती को जीतना भी सीख जाता है। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।
1: भारत की इस टीम को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसके 7 से 8 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार खेल रहे हैं।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ही आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत्ती अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप।

0: पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राष्ट्रवाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _ उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: इस बीच भारत के

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने महंगाई के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी फ्लड पीएससी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका

0: उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में, अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनी नरेश मल्होत्रा का राग गुणकली में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं डमरू हरकार बाजे। द्रुत 3 ताल में निबद्ध है, तबले पर संगत नंद किशोर मिश्रा ने की है।

अभी आप नरेश मल्होत्रा का रागोड़ कली में खयान गायन सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे नंद किशोर मिश्रा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की

0: में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा

दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल दो दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो

0: अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
2: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मोज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मोज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मोज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली। नमस्ते बरेली कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र सुदेश कुमार सैनिक। ये सेगमेंट शहर के दो रूट पर संचालन की बनी है योजना। तेजी से हो रही तैयारी, 8,500 करोड़ से अधिक से होगा स्टेशन और रूट का विकास। शहर में मेट्रो चलाने के लिए जून में DPR पर लग सकती है मोहर। शहरवासियों को जल्द मेट्रो के सफर का आनंद दिलाने के लिए राइट्स कंपनी ने एक कदम और बढ़ा दिया है। प्राथमिक सर्वे के बाद जून में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करने का दावा किया जा रहा है। इसमें दो रूट पर 23 किलोमीटर लंबे गलियारे का खाका खींचा जा रहा है। ये करीब 8,500 करोड़ रुपए से तैयार हो रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार DPR को UP सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से भी स्वीकृति ली गई है। इसको लेकर मेट्रो निर्माता विशेषज्ञों की ओर से तैयार की जा रही कार्य योजना अंतिम चरण के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बैरियर 2 के पास वर्कशॉप भी तैयार किया जाएगा जहां

मेट्रो की मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था होगी। बरेली में मेट्रो रेल के लिए प्रथम चरण में रेलवे जंक्शन से चौकी चौराया, बाया सैटेलाइट बस स्टैंड से बैरियर टू तिराया और चौकी चौराया से कुतुबखाना चौराया, बाया डेलापीर तिराया से बैरियर टू तिराया तक कॉरिडोर प्रस्तावित है। इसके लिए कई अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है। राइट के विशेषज्ञों ने रेलवे जंक्शन चौकी चौराहा सैटेलाइट बस स्टैंड रोयलखंड यूनिवर्सिटी फन सिटी बैरियर टू तिराया अनुमानित लंबाई 12 किलोमीटर और दूसरा रूट चौकी चौराहा युगखा चौराहा से कुतुबखाना चौराहा कोलापीर डेलापीर तिराया से बैरियर टू तिराया अनुमानित लंबाई 9.50 किलोमीटर में कॉरिडोर पर समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में ही प्राथमिक रूप से सहमति व्यक्त की जा चुकी है। दूसरे चरण में एक कॉरिडोर चौकी चौराहे से रामपुर रोड पर सीवीगंज तक और दूसरे स्टेशन जंक्शन से बदायूं रोड साउथ सिटी मोड़ तक भी भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है। शहर का होगा विकास, बढ़ेगी आर्थिकी। शहर में मेट्रो चलाए जाने से निश्चित तौर पर आवागमन में सुविधा होगी। इसके साथ ही शहर में मेट्रो शुरू होने से यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने से जिले की आर्थिकी भी मजबूत होगी। इतना ही नहीं, अपना शहर महानगर की श्रेणी में आ जाएगा। इससे यहाँ के पर्यटन विकास में भी तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 25 मई 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से, विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख व समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 25 मई 2026 को, यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, क्योंकि जहां हैं आप वहां हैं हम, और कार्यक्रम है नमस्ते बरेली। श्रोताओं, सता रही तपिश, लू कर रही बेहाल। रविवार को अधिकतम ताप 12 जो रहा 41 डिग्री, न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जिले में कुछ दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को चिलचिलाती धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही चल रही तेज हवा दोपहर तक लू में तब्दील हो गई, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में ही रुक के रहने की को मजबूर हुए। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति में आ रही समस्याओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित भी हुआ। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही काफी कम नजर आई। जो लोग किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकलने को मजबूर थे, वे खुद को धूप से बचाने के लिए छाता, टोपी और गमछे का सहारा लेते दिखे। इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत पाने के लिए लोगों ने ठंडे पेय पदार्थों का रुख किया। शहर के चौक चौराहों और बाजारों में आम, सन्ना, नारियल, पानी, गन्ने का रस और आइसक्रीम की दुकानों पर भीड़ देखी गई। लोग अपनी प्यास बुझाने और शरीर को ठंडा रखने के लिए इन विकल्पों का भरपूर सेवन करते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि 28 मई से मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अनुकूल परिस्थितियां बनने पर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है।

बरेली होकर चलेगी आनंद विहार समर स्पेशल। रेलवे गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए बरेली होते हुए 04:40-28 और 04:40-27 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से 29 मई से 12 जून तक प्रत्येक शुक्रवार और मुजफ्फरपुर से 30 मई से 13 जून तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। TPRO सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 04028 आनंद विहार से 9:15 पर चलकर मुरादाबाद में 12 बजे पहुंचेगी। बरेली से 1:32 से शाहजहाँपुर से 2:32 से सीतापुर से 4:35 से गोंडा से 7:15 से बस्ती से 8:40 और गोरखपुर से 10:25 बजे दूसरे दिन छपरा से 1:30 से और सोनपुर से 2:33 और हाजीपुर से 2:48 पर छूट कर मुजफ्फरपुर 4:30 पर पहुंचेगी। वापसी में 04027 मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल समर स्पेशल मुजफ्फरपुर से 6:15 पर चलकर हाजीपुर में 7:20 पर और सोनपुर से 7:32 पर छपरा से 9:45 पर गोरखपुर से 12:55 पर बस्ती से 1:50 और 3:15 पर सीतापुर से 7 बजे शाहजहाँपुर से 7:57 बरेली से और 10:54 तथा दूसरे दिन मुरादाबाद से 2:05 पर छूट कर आनंद विहार टर्मिनल 5:30 पहुँचेगी। ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 5, द्वितीय श्रेणी के 2, प्रथम श्रेणी का 1

0: शयन कक्ष श्रेणी के 5 और तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के 3 कोच सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। और रेलवे की ओर से गंगा दशहरा पर लखनऊ और हरिद्वार के बीच 2 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। हरिद्वार से 25-26 मई और लखनऊ से 26-27 मई को ट्रेन चलेगी। दोनों ट्रेनें बरेली होकर जाएंगी।
1: मैं निकला ओ गटिले।

साइकिल रैली निकालकर दिया स्वस्थ रहने का संदेश। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत रविवार को संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की भावना को समर्पित था, जिसका उद्देश्य खेल, फिटनेस और एकता को बढ़ावा देना रहा। साइकिल रैली भारतीय क्षेत्र भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र से शुरू होकर शास्त्री चौक, बीआई बाजार, कैंटोनमेंट बोर्ड, अस्पताल और धोपेश्वर मंदिर होते हुए वापस केंद्र परिसर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आईटीबीपी पेज के इंस्पेक्टर भूरत सिंह, छावनी परिषद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी वंदना और तथा केंद्र प्रभारी संदीप मोहन चौधरी ने प्रतिभागियों का स्वागत कर किया। रैली में आईटीबीपी जवानों, एनसीसी कैडेट्स, मेडिकल स्टाफ और विभिन्न खेल संघों के सदस्यों सहित लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट साइकिल चलाने और नियमित व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना। इस अवसर पर जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव गजेंद्र तोमर, सिपक टाकरा संघ के सचिव सुमिल सीरिया सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, आप प्रस्तुत है लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला।
1: सुनिए दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपमाला लाया सेहत की पाठशाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज चौकला बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फालिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
2: 9837000048।
5: सेहत की पाठशाला लेकर आया दीपमाला। जी हाँ, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत।

0: मैं हूं मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ मौजूद हैं दीपमाला अस्पताल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: स्वागत है आपका भी मुकेश जी।
0: डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार बहुत खतरनाक कहा जाता है, लेकिन डेंगू के बारे में कई मिथक भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप डेंगू स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, डेंगू बुखार क्या होता है?
1: डेंगू एक वायरल फीवर है, यानी कि मच्छर द्वारा जनित है, जो मच्छर इस वायरस को डेंगू वायरस को आदमी के शरीर में दे देते हैं। डेंगू वायरस चार प्रकार का होता है, जिसको सब वार कहते हैं, सब स्पीसीज, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। तो डेंगू बुखार के लक्षणों की अगर हम बात करें
0: जी,
1: इसके लक्षण की एक खास क्लासिकल विधि होती है, जिसे कहते हैं डबल माउंटेड हम्प। इसका मतलब ये कि डेंगू बीमारी में बुखार के संग हाथों पैरों में दर्द होता है
0: जी।
1: और जब बुखार उतर जाता है तो आदमी को बहुत ज्यादा कमजोरी होती है और डिहाइड्रेशन होता है। एक बार उतरने के बाद 2 दिन के बाद बुखार फिर से आ सकता है।
0: अच्छा।
1: और जब ये पहली बार बुखार निकल के जाता है और दूसरी बार बुखार आता है, इन दोनों के बीच का टाइम क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है
0: जी।
1: डेंगू बुखार की खासियत और है, ये कहा जाता है कि डेंगू खतरनाक बीमारी है। दरअसल देखा जाए तो डेंगू बहुत ही एक सिंपल बीमारी है। डेंगू के मरीजों में अगर 100 लोग को बीमारी होगी तो सिर्फ 1% या 5% लोगों को लक्षण आएंगे, बाकी 90% से 95% तक लोग को मामूली वायरल फीवर की तरह होगा। देखिए, बाकी बुखार, वायरल बुखार, जैसे आप गले का वायरल बुखार सबसे ज्यादा जानते हैं
0: जी,
1: जो जिसमें खांसी, जुकाम और सिर में दर्द और हाथों पैरों में दर्द होता है, उस बुखार में, या टाइफाइड का बुखार हो जो पानी से फैलता है, या फिर आप और कोई बुखार मान लें, तो उनमें बुखार में और डेंगू बुखार और मच्छर जनित बुखारों में क्या फर्क है
0: जी?
1: फर्क ये है कि जो एक मच्छर ये बुखार को फैलाता है, वो एक मच्छर एक रात में 300-300 बार बाइट करता है
0: जी।
1: यानी कि एक घर के अंदर अगर एक मच्छर है तो वो उस पूरे घर के सारे लोग को काट डालेगा। इसके माने ये हैं, जब डेंगू बुखार शहर में एक आदमी को आता है तो बहुत तेजी से उस पूरे 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर में एक मच्छर पूरे को फैला सकता है।
0: इसी को डेंगू एपिडेमिक कहते हैं।
1: देखिए, एपिडेमिक तो तब कहते हैं जब उम्मीद से ज्यादा फैलने लगे
0: जी,
1: मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ जाए, तब एपिडेमिक कहते हैं। अब मेरा आशय ये था कि जो मच्छर जनित बुखार है वो बहुत तेजी से फैलते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार में कई लोग तो यूं ही सही हो जाते हैं, जैसा आपने भी कहा कि बहुत साधारण बुखार है, लेकिन कई लोग जो है वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और उनकी जान तक पे बनाती है, ऐसा क्यों?
1: देखिए, पहली बात हम बताते हैं डेंगू बुखार की स्टेजेस
0: जी।
1: हालांकि अब WHO ने वो स्टेजिंग चेंज कर दी है, पर पहले हम डेंगू बुखार की 4 स्टेजेस मानते थे। पहला स्टेज जिसे अनस्पेसिफाइड वायरल फीवर कहते हैं, या जो लोग कहते हैं हमें वायरल बुखार हुआ है, उस बुखार में सिर्फ गले में हल्की सी खराश, हाथों पैरों में दर्द और मामूली हड़कन होती है
0: जी,
1: और मामूली सा बुखार आता है, प्लेटलेट काउंट भी अक्सर कम नहीं होती है। अब याद रखें, डेंगू बुखार अगर 100 लोग को होता है तो 90-95 लोग को सिर्फ ये वायरल बुखार की स्टेज हो चुकी होती है।
0: अच्छा।
1: यानी कि जो अगर हम इन लोग का, जिस समय शहर में अगर डेंगू फैला है या कुछ लोगों के डेंगू की रिपोर्टें आ रही हैं, तो ये जो वायरल फीवर वाले जो लोग आते हैं, इनकी अगर आप जांच कराएं PCR, तो इनको भी डेंगू निकल के आएगा।
0: अच्छा।
1: अब ये लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं मामूली दवा लेकर के
0: जी।
1: दूसरी स्टेज होती है जिसे हम डेंगू फीवर कहते हैं या डेंगू वायरल फीवर कहते हैं। इसमें प्लेटलेट काउंट कम होने लगती है, आदमियों को पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं, पॉटी से ब्लड आ सकता है, दांत से खून आ सकता है, या महावारी ज्यादा हो सकती है। ये डेंगू फीवर है
0: जी,
1: जिसमें प्लेटलेट काउंट कम है और ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में ब्लीडिंग अलग से नहीं होती है, ब्लीडिंग तो डेंगू फीवर में ही होती है
0: जी।
1: डेंगू हेमरेजिक फीवर में कैपिलरी लीक होने की वजह से, नाड़ियों के गीला हो जाने की वजह से, शरीर से पानी नाड़ियों से निकल के लीवर में, पेट में, सीने में एडमिट होने लगता है और BP कम हो जाता है, मरीज को चक्कर आने लगते हैं। ऐसे मरीजों को लीवर पे सूजन मिलेगी, सीधे हाथ के लंग पे पानी भरा हुआ मिलेगा और पैरों में भी सूजन आ सकती है। ऐसे मरीज डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, उनको बार बार प्यास लगती रहती है और BP कम होता है। BP कम होना डेंगू हेमरेजिक फीवर का मेन लक्षण है।
0: अच्छा।
1: और 4th स्टेज होती है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन या सीरोसाइटिस। ऐसी स्टेज में मरीज के लीवर, गुर्दे और सांस, तीनों चारों चीजें जो खराब होती हैं। इन चारों स्टेजेस के अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे

0: कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम।
1: जी जी
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कैपिलरी लीक यानी कि नाड़ियों के लीक करने की वजह से हो जाता है, पानी निकल जाता है। अच्छा मुकेश जी, हम एक बात आए मैं बताना चाहूंगा, दरअसल प्लेटलेट होते क्या हैं? आप जानते हैं क्या होते हैं प्लेटलेट्स?
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि प्लेटलेट्स के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं और आप तो ये भी कहते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, देखिए।

0: जी जी बिल्कुल।
1: देखिए जैसे हम लोग जानते हैं चोट लगने पे खुरन बन जाता है,
0: जी बिल्कुल।
1: तो आप इस तरह से समझिए कि खुरन के बहुत महीन महीन माइक्रोस्कोपिक टुकड़े हैं जो खून में घुले हुए हैं
0: जी,
1: और कहीं पे चोट लगने पर वहां पे आके वो चिपट के खुरन बना देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो इन प्लेटलेट्स का पहला काम ये होता है कि कहीं से ब्लीडिंग हो तो ये उसको आके खुरन वहां पे बना दें और रोक दें
0: जी,
1: भले ही ब्लीडिंग इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल।
0: अच्छा।
1: और दूसरा काम होता है सरल भाषा में समझाने के लिए कि इन प्लेटलेट्स का काम होता है नाड़ियों की इंटीग्रिटी को बना के रखना, मतलब नाड़ियों में ये सीमेंट का काम करते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे मान लीजिए किसी के घर में सिर्फ ईंटें हो और सीमेंट ना लगाओ या प्लास्टर ना हो तो क्या होगा, बाहर का पानी अंदर आ जाएगा, अंदर का पानी बाहर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो मनुष्य की नाड़ियों से पानी लीक करने लगता है, और पानी लीक करने की वजह से आदमी को डिहाइड्रेशन होता है, हालांकि उसको कोई दस्त नहीं हुआ, कोई उल्टियां नहीं हुई, तब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और उसको ऐसे मरीज को अगर आप ग्लूकोज चढ़ाएं भी तो भी वो ग्लूकोज नाड़ियों से निकल के पेट में सीने में भर जाता है। हमने अक्सर देखा है गांव देहात में कि डॉक्टर लोग वहां के जो वो खूब सारी बोतलें लगा देते हैं, और बोतलें अगर पहली स्टेज में लगाएं तो ठीक है, ये कैपिलरी लीक के बाद बोतलें लगाने से मरीज की सांस फूलने लगती है और पेट फूल जाता है। तो ये प्लेटलेट का असली काम ब्लीडिंग रोकना और कैपिलरी लीक रोकना है।
0: डॉक्टर साहब कई जगह ये कहा जाता है प्लेटलेट जरूर चढ़ाई जाएंगी, जैसा आपने भी स्वीकार किया, लोग बोतल के अलावा प्लेटलेट चढ़ाने की बात भी करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट चढ़ाने की एकदम जरूरत नहीं होती, सच्चाई क्या है?
1: देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ
0: जी।
1: प्लेटलेट तो को खुरन के टुकड़ों की तरह समझिए,
0: बिल्कुल।
1: उनकी जरूरत तब है जब कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है।
0: अच्छा।
1: अगर पेशेंट को कहीं से बड़ी ब्लीडिंग नहीं हो रही है और आप प्लेटलेट चढ़ा दें तो वो बजाय चोट पे चिपकने के वो फेफड़ों में चले जाएंगे, वहां पे चिपकेंगे, वहां पे इन्फेक्शन और निमोनिया करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई प्लेटलेट चढ़ाएं तो उनका असर सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ब्लड में रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी की प्लेटलेट कम है और प्लेटलेट चढ़ा के आप उनकी संख्या बढ़ा लें। अगर आप आज प्लेटलेट चढ़ाएंगे तुरंत जांच करेंगे 1 घंटे बाद तो प्लेटलेट आपकी बढ़ी हुई मिलेंगी, लेकिन अगले दिन सुबह करेंगे तो प्लेटलेट फिर उतनी ही मिलेंगी जितनी पहले थी। तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत सिर्फ तब होती है जब बहुत मैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, किसी को उल्टियों में खून आ रहा हो या लगातार लाल टट्टी आ रही हो या ब्लीडिंग उसकी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही हो।
0: ये तो डॉक्टर साहब टेक्निकल बात है, तकनीकी बात है, और ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बताइएगा जो डेंगू के मरीज हैं उनका इलाज किस तरह होता है और क्या खास बातें ध्यान रखनी होती हैं डेंगू के मरीजों को?
1: डेंगू 4 वायरसेस का होता है, डेंगू 1, डेंगू 3, डेंगू 4। जिसको जीवन में पहली बार डेंगू हुआ तो 100 में से 90 लोगों को सिर्फ वायरल बुखार की तरह होके चला जाएगा। इन्हीं लोगों को अगर दूसरी बार डेंगू हुआ तो वो वायरल फीवर की तरह नहीं होगा, तो उसमें उसकी विविधता बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा सीरियस होके होगा। क्योंकि एक बार डेंगू होने से उस टाइप के डेंगू के लिए जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन बाकी 3 प्रकार के डेंगू वायरस से मनुष्य क्रॉस रिएक्शन करने लगता है।
0: अगली बार अगर डेंगू होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा।
1: जी हाँ, इसीलिए जब डेंगू के सीजन में किसी को वायरल फीवर हो तो उन्हें डेंगू की जांच करा लेनी चाहिए, और वो PCR जांच से ही सिद्ध होगा। उन्हें पता चल गया कि आपका जो वायरल फीवर था वो दरअसल डेंगू था, तो अगले साल डेंगू के मौसम में आप बच के रहिए।
0: डॉक्टर साहब अगर कोई मरीज समय पर अस्पताल आ जाता है, उसका इलाज आप शुरू कर देते हैं, तो कितना समय तक लग सकता है डेंगू के मरीज को ठीक होने में?
1: ये निर्भर करता है वो कौन सी स्टेज में आया। अब आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि इतने ज्यादा अस्पताल गांव देहात में खुल गए हैं कि ज्यादातर लोग अपने जानने वाले डॉक्टर से ही इलाज कराते हैं। हमारे पास तक वो मरीज आते हैं जिनकी प्लेटें बहुत कम हो गई, जिनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, गुर्दे खराब हो गए या लीवर खराब हो गया। लेकिन अगर प्रथम या सेकेंड स्टेज में कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वो ये जान लें कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज डेंगू की यानी कि वायरल फीवर और डेंगू फीवर की स्टेजेस में उसका सबसे बढ़िया इलाज है ORS पीता रहे, तो यानी कि नमक पानी का घोल पीता रहे, तो उसको कोई भी कमी नहीं होगी और उसका फीवर बिल्कुल मामूली वायरल की तरह होके चला जाएगा।
0: डॉक्टर साहब चूंकि इस समय बुखार का सीजन लोग कह रहे हैं और देखने में भी आ रहा है बुखार के बहुत मरीज आ भी रहे हैं, क्या खास बात बताना चाहेंगे आज की सेहत की पाठशाला जो दीपमाला लेकर आया है उसमें क्या संदेश है आपका हमारे श्रोताओं के लिए?
1: मेरा संदेश यह है कि आज के सीजन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर बुखार हो रहा है तो गले में खराश भी हो, बदन में दर्द भी हो, तो आप फौरन ही ORS

0: पीना शुरू कर दें और अपनी प्लेटलेट्स की और सीबीसी की जांच कराएं। कभी भी अकेले प्लेटलेट्स की जांच ना कराएं, हमेशा सीबीसी की जांच कराएं और जो है बिना जांच के दवाई ना लें।
1: अक्सर जब बुखार होता है किसी भी व्यक्ति को तो मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल की गोली लेकर खा लेते हैं, क्या सुझाव है डॉक्टर साहब, क्या ऐसा करना उचित है? और अगर पैरासीटामोल ही मेडिकल स्टोर से लेकर खानी है तो कब तक खा सकते हैं?
0: देखिए आप, मैं फिर से दोहराता हूँ, बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बुखार तो बीमारी का लक्षण है। आप पैरासीटामोल खा के बुखार को दबा देंगे लेकिन बीमारी नहीं जाएगी। आप पैरासीटामोल खाएंगे तो 6 से 8 घंटे तक आपका बुखार कम रहेगा, बदन का दर्द कम रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ पैरासीटामोल खा के काम नहीं करना है, आपको अपनी बीमारी का भी इलाज करना है। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है। बुखार तब होता है जब आपका शरीर बीमारी से लड़ता है। बीमारियां होती हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस, लेप्टो, तो जब तक आप मूल बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तब तक दवाई बंद करते सही बुखार बार बार आने लगेगा।
1: डॉक्टर साहब, डेंगू का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, एक कपकपी सी होने लगती है, इतना डरावना है डेंगू नाम ही, लेकिन आप कहते हैं डेंगू से डरना मना है।
0: जी बिल्कुल सही है। देखिए डरते समय आदमी जो है मिस्टेक्स करता है, डर की वजह से आदमी उत्तेजना में आ जाता है और गलत फैसले लेता है। डर की वजह से लोग प्लेटलेट्स पे प्लेटलेट चढ़ाते हैं और डर की वजह से लोग प्लेटलेट कम होने पे डॉक्टर पे सवार हो जाते हैं। तो डेंगू बुखार में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरा मानना तो है किसी भी बीमारी में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है, मारे डेंगू के डर के लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
1: तो सेहत की पाठशाला में आज आपने जाना कि क्या है डेंगू बुखार और किस तरह से ये प्रभावित करता है लोगों को, कितना खतरनाक होता है। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के साथ अगली सेहत की पाठशाला लेकर आएगा एक बार फिर दीपमाला। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपमाला लाया सेहत की पाठशाला।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत की पाठशाला। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। लीजिए अब सुनते हैं मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

ददरती पिक्चर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी कमाल खान की, रजत अरोरा के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। श्रोताओ, आज सिनेमा जगत के यानी भारतीय सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर था। इनकी मुलाकात संगीतकार प्यारेलाल जी से हुई और दोनों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनका संगीत आज भी उतना ही मशहूर है। लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन के साथ साथ तमाम और वाद्यों को बजाना सीखा। 1963 में इस जोड़ी ने फिल्म पारसमणि के लिए कालजयी गीतों को स्वरबद्ध किया। इससे पहले संगीतकार लक्ष्मीकांत ने बतौर बाल कलाकार फिल्म भक्त पुंडलिक और 1950 की फिल्म आंखें से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म दोस्ती, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिन बहार के पत्थर के सनम, इज्जत, साजन, अनजाना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के लिए दिल को छू लेने वाले गीतों को संगीत से सजाया इस जोड़ी ने, और लगभग चार दशकों तक सुरीले संगीत का उनका सफर चलता रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 फिल्मों से अधिक में इन्होंने गीतों को संगीत से स्वरबद्ध किया। हम संगीतकार लक्ष्मीकांत की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल हैं, हिमेश रेशमिया का संगीत है।

तो ये था कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ लेते हैं इजाजत आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
2: फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50। जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र मिश्रा का सप्रेम नमस्कार।
1: श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, MBBS MS वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, और हमारे मेहमान हैं बरेली के फोकस पैथलैब फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD।
3: ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक जिसने ये आकाशवाणी है कहकर देश को जगाया है, बिनाका गीतमाला से दिल बहलाया है और हर आपदा में सबसे पहले खबर

0: पहुंचाई। आज भी कहीं खेत में, कहीं बस में, कहीं बॉर्डर पर रेडियो बजता है तो लगता है देश साथ में है। ना तस्वीर, ना स्क्रीन का जाल, बस एक आवाज और कमाल। 90 वर्षों से जो सबके साथ चली वो अपनी आकाशवाणी है। जय हिंद, जय आकाशवाणी।
1: तो पहले आंखों में एलर्जी के बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर कर्णप्रिया अग्रवाल से। उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी से, जो बेहद रोचक बातें आपको बताएंगे। तो आइए पहले मिलते हैं डॉक्टर कर्णप्रिया अग्रवाल जी से।
2: जान है तो जहान है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कर्णप्रिया अग्रवाल, MBBS MS वरिष्ठ फेको सर्जन एवं रेटिना स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम जान है तो जहान में।
3: नमस्कार श्रोताओं।
2: डॉक्टर साहब, आज का विषय है
4: आंखों में एलर्जी, एक समस्या और समाधान।
2: तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: जिस तरीके से शरीर में एलर्जी होती है उसी तरीके से आंखों में एलर्जी होती है। आंख शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो जिस पे एलर्जी का प्रभाव काफी होता है। दूसरा है खाल। जैसे हमें पता है कि जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर हमारी खाल में होती हैं, उसी तरीके से आंख, क्योंकि वो बाहरी यानी एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहर की तरफ को एक अंग है, इसलिए आंख में भी एलर्जी होना बहुत कॉमन है।
4: डॉक्टर साहब, आंखों की एलर्जी के कौन कौन से कारण होते हैं वो भी बताइए।
3: आंख में एलर्जी के कई कारण हैं, सिर्फ ये कारण एक नहीं, अनेक कारण हैं। जैसे कि सबसे जो कॉमन कारण है वो ये है, एनवायरनमेंट में या जो हमारे मंडल में जो फूल हैं उनके जो तिनके होते हैं उनकी वजह से हमारी पॉलन्स जिनको हम कहते हैं या पराग जिनको हम कहते हैं उनसे हमारी आंखों में एलर्जी होती है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पॉलन्स की वजह से ही हो, लेकिन कई सारे अन्य कारण जैसे कि घर में धूल है जो कि क्या कहते हैं फंगस की वजह से होती है, थोड़े दिनों के लिए घर में डस्टिंग ना करें तो कई जगह पे, कई कोनों पे जहाँ पे सीलन होती है वहाँ पे फंगस इकट्ठा होने लगता है, और यही इसी की जब हम सफाई करते हैं तो उस समय ये फंगस पूरे आपके घर में हवा में चला जाता है और उसकी वजह से हमारी आंखों में ये एलर्जी होने लगती है। इसी के साथ साथ एक बहुत और इम्पोर्टेंट कारण जो है हमारी आंखों में एलर्जी का है वो है पोल्यूशन।
4: डॉक्टर साहब, धुआं तो किसी रूप में हो सकता है, अंगीठी का हो, कोयले का हो, इस मौके का धुआं तो और भी नुकसान करता होगा।
3: सिर्फ धुआं या फिर कुछ जलाने से, कूड़ा जलाने से ही नहीं, बल्कि एलर्जी का एक बहुत जो कारण है वो ये है कि घर में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट के धुएं से भी हमारे क्या कहते हैं आंख में, और बच्चों की खास तौर से आंख में एलर्जी काफी ज्यादा पाई गई है। धुएं के या धूल के क्या क्या कारण हैं, तो आंख की मेनली जो एलर्जी होती है वो इसी वजह से होती है।
4: डॉक्टर साहब, ये घर में हम लोग जो पक्षी पालते हैं, कुछ लोग कबूतर पालते हैं या अन्य जानवर पालते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, तो क्या इनका भी असर होता है आंखों की एलर्जी में?
3: घर में कुछ तरीके के जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, इनके जो फर होते हैं या इनके जो बाल होते हैं इसकी वजह से भी हमारे खाल में और आंखों में एलर्जी पाई गई है। तो जिन लोगों के घर में पालतू जानवर हैं उनके भी क्या कहते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी डॉग को या बिल्ली को छू रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथों को धो लें ताकि ये एलर्जी जो है उसका डायरेक्ट हमारी आंखों से ना हो।
4: तो सुना आपने, हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि भले ही आप पशु पक्षी पालें लेकिन सावधानी बरतें, उनको भी साफ रखें और अपने आप भी साफ रहें ताकि आंखों में एलर्जी ना हो।
3: इसी तरीके से जैसे कि धुआं एक बहुत बड़ा कारण है हमारी आंख का क्या कहते हैं आंख में एलर्जी का, उसी तरीके से खुशबू जो कि अगरबत्ती से होती है, अगरबत्ती में धुआं भी होता है और खुशबू भी होती है। कुछ कुछ लोगों को जैसे गुड नाइट है या फिर परफ्यूम्स हैं जो इत्र होते हैं उनसे भी, उन स्मेल से भी कई बारी क्या कहते हैं आंख में एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं जो लेडीज में या फीमेल्स में ज्यादा हैं, जैसे कि आंखों का मेकअप, आंखों का मेकअप या फिर जो हमारे आर्टिस्ट लोग होते हैं जो कि कहीं पे जाके किसी मंडली में जाके नृत्य करते हैं या मेकअप जो काफी लगाते हैं, तो आई का मेकअप भी एक बहुत बड़ा कारण है एलर्जीज का। इस बात का ध्यान रखें कि जब हमारी आंख आ गई हो या हमारी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया हो उस दौरान आंख में खास तौर से, और वैसे भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जब हम लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सूट नहीं कर रहे। कई सारे लोग होते हैं जो कि ये कहते हुए आते हैं कि आंख हमारी लाल हो जाती है नहाने के बाद, तो कई साबुन ऐसे होते हैं जो कि जब आप उसका

0: साबुन का झाग हमारी आंख में चला जाता है नहाते नहाते ही, तो हमारी आंख लाल होने लगती है और अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो हमारी आंख में एलर्जी बन जाती है। तो इसलिए ये कुछ कारण हैं जो कि हमारी आंख में एलर्जी करते हैं। फिर जब हम शहर के लोग जो हैं आजकल कॉन्टैक्ट लेंस काफी इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक ऐसी तरीके ये है क्या कहते हैं जो कि चश्मा ना लगाना चाहते हैं जो लोग, वो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं कुछ समय के लिए। तो जब हम वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से भी आंखों में एलर्जी होती है। तो ये कारण है जो कि हमारी आंखों को एलर्जी या आंखों में लाली करते हैं। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं हमारी आंखों में एलर्जी होती है।
1: सब एक बार बता दीजिए कि जब पढ़ते समय अपनी रोशनी को लैंप को किस तरफ रखें, किधर से रोशनी आए।
0: बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और माता पिता के लिए बच्चों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता पिता ही बच्चों को इस बात के लिए समझा सकते हैं और बचपन में ही ये आदत डल पाती है कि बिस्तर पे ना पढ़ के कायदे से कुर्सी चेयर पे पढ़ें। और कुर्सी चेयर की जगह घर में जैसे मंदिर की एक जगह होती है या पूजा करने का एक स्थल होता है जहां पे जाके एक दिशा में आप पूजा करते हैं, एक दिशा में आप पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से एक दिशा में पढ़ाई करने की भी एक वजह होती है। तो आप अपने बच्चे का जो कुर्सी और मेज है इस तरीके से रखें कि वो जो रोशनी है वो उसके किनारे की तरफ से आए, सामने मुंह पे उसके रोशनी ना पड़े। मुंह पे रोशनी ना पड़ के जो लैंप है या फिर जो ट्यूबलाइट है ना तो वो पीछे से आनी चाहिए ना फिर वो डायरेक्ट सामने से आनी चाहिए, वो आपके साइड में से आनी चाहिए ताकि जो रोशनी है वो किताब पे पड़े ना कि आपकी आंखों और चेहरे पे।
1: बात आपने कहा, सुरक्षा की बात की, जांच की बात की, कुछ टाइम जैसे ही मिला मोबाइल पे लगे हुए हैं। अगर आप कहीं भीड़ में देखेंगे तो सभी लोग, लगभग 90% लोग मोबाइल पे ही लगे, उससे क्या एलर्जी नहीं हो सकती है?
0: आंख पे एलर्जी जो है मोबाइल देखना अपने आप में ही एक बहुत क्या कहते हैं गंदी आदत बन गई है। मोबाइल या फिर किसी भी चीज की अति खराब है, तो इसी तरीके से मोबाइल का भी हमको इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है। वक्त के साथ साथ हमारे आधुनिक दुनिया और आधुनिक तकनीकों में बहुत बदलाव आए हैं और उसी वही एक बदलाव है मोबाइल। वक्त के साथ हमें जरूर बदलना चाहिए मोबाइल हमें, लेकिन बदलते इस दौर में, बदलती इन तकनीकों में हमें भी अपने आप को बदलना है। बदलना मतलब ये है कि हमें उन मोबाइल देख रहे हैं वो मोबाइल उतना देखें जितना जरूरी है। जब हम काम कर रहे हैं या हमें कोई रिसर्च करनी है या जब हमें कुछ पढ़ना है तो हम मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन फालतू में जो वीडियोस और सब चीजें हम लोग देखने की आदत बन गई है, खास तौर से लोग जो है बिस्तर पे जब लाइट ऑफ हो जाती है तो बिस्तर में जाकर फिर वीडियोस देखते हैं और मूवी देखते हैं, ये सब चीजें हमारी आंखों को बहुत नुकसान देती हैं।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
0: नमस्कार दोस्तों, चलिए एक क्विक आई टेस्ट करते हैं, कुछ सवाल ताकि आपको अपनी आंखों की सेहत के बारे में पता चले। क्या आपकी आंखें जलती हैं? क्या मोबाइल देखते वक्त सर में दर्द होता है? रात को आंखें बहुत सूखी और खड़कन जैसी महसूस करती हैं? या बच्चे दिन भर आंख स्क्रीन पर लगे रहते हैं? अगर ऐसा कुछ आपके साथ में है तो आज का शो स्पेशली आपके लिए है।
3: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये बातें आपकी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।
0: फोन की बैटरी अगर 20% रह गई है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आंखें 2% भी बची होती है तो भी कंटिन्यूसली काम करती रहती है। आंखें हमारी हमेशा काम करती हैं जैसे ही हम सोकर उठते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आंखों का उतना ध्यान रख पाते हैं जितना आंखें हमें हमारी दुनिया दिखा रही हैं? एक सही सच्चा सवाल आप सबके लिए।
3: जी डॉक्टर साहब, वो सवाल कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए जो बहुत ही फायदेमंद होगा?
0: फोन ओवरहीट हो जाएगा
4: तो वार्निंग देगा, लेकिन जब आंखें ओवरलोड हो जाएंगी

0: दोस्तों क्या जवाब देती हैं? तब वो जवाब देती हैं, हाँ दोस्तों, आंखों में जलन होती है, आंखों में लाली आती है, आंखों से पानी आता है, सर में दर्द होता है और आंखों की रोशनी भी धुंधली होती है। और इस समर वेकेशन में हमारी आंखें सब कुछ ये काम कर रही हैं, धूप में भी जल रही हैं और स्क्रीन्स भी है।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं अपने श्रोताओं की तरफ से। गर्मियों में अपनी आंखों की कैसे देखभाल करें ताकि हमारी आंखें सुरक्षित रहें, चमकती रहें, अच्छी दिखाई देती रहें, रोशनी भी सही रहे, अपनों को पहचान भी सकें।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनुप्रिया और आज हम बात करेंगे कि इन गर्मियों में अपनी आंखों को कैसे बचाकर रखें। समर वेकेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों का डेली रूटीन कुछ ऐसा है कि रात में टीवी, दिन में कार्टून, दोपहर में गेम खेलना कंप्यूटर पे और बीच बीच में स्विमिंग पूल। इस पूरी वेकेशन में सबसे ज़्यादा वर्कलोड कहाँ पर है? और हमारी आंखें भी अब पूछ रही हैं कि क्या ये छुट्टियाँ हमारे लिए भी हैं या ये छुट्टियाँ हमारे शरीर के लिए ही हैं सिर्फ। तो दोस्तों, इन गर्मियों की छुट्टियों में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें आँखों की सुरक्षा कैसे रखनी है। छुट्टियों में जब भी बाहर निकलें तो ध्यान रहे कि टोपी तो हो, साथ में उसके एक डार्क गॉगल्स भी हो। ये डार्क गॉगल्स सिर्फ काला चश्मा ही नहीं, रंग कोई सा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो काला ही हो, लेकिन उसमें यूवी फिल्टर लगा हुआ होना चाहिए। ये यूवी फिल्टर ग्लासेस हमारी आंखों को सही मायने में प्रोटेक्ट करती हैं। यूवी फिल्टर से हमारी आंखों में अनचाहे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं और हमारी आँखें सुरक्षित रहती हैं। यूवी फिल्टर पहुंचने से हमारी आंखों में नाखूने होने की परेशानी, जल्दी मोतियाबिंद बनने की परेशानी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होने की परेशानी और सबसे ज़्यादा आंख में सूखापन होने की परेशानी पनपने लगती है। ऐसा ना हो इसलिए ज़रूरी है कि हम यूवी फिल्टर ग्लासेस का हमेशा इस्तेमाल करें जब भी हम बाहर निकलें।
1: डॉक्टर साहब, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे स्विमिंग पूल भी जाएंगे, नहाएंगे भी, गर्मियों का आनंद भी लेंगे, तो आंखों कैसे सुरक्षित रखें?
0: स्विमिंग पूल में भी बच्चे बिना गॉगल्स के स्विमिंग ना करें इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि क्लोरीन का पानी हमारी आंखों को नुकसान देता है, आंखों में जलन और लाली करने के साथ साथ आंखों में सूखापन करता है। तो इसलिए स्विमिंग पूल के वक्त भी गॉगल्स पहनना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें जो हमें अपनी आंख की सुरक्षा के लिए ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम स्क्रीन पे हों।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आप जो कुछ बातें बताती हैं ना, हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं, शायद कुछ ऐसी जानकारी वाली बात होगी जो वही बात की।
0: सबसे पहले 20-20-20 रूल का हमेशा इस्तेमाल करें, यानी कि हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 फुट दूर देखना है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए। बीच बीच में पलकों को झपकाते रहें, इससे हमारी आंखों में सूखापन भी कम होगा और हमारी आंखों में अच्छा भी रहेगा। हमें कभी भी स्क्रीन को अंधेरे में नहीं देखना चाहिए, इसलिए रात को लाइट बंद करने के बाद स्क्रीन्स को ना देखें, हमेशा लाइट में ही स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। ब्राइटनेस को एडजस्ट करके रखें ताकि आंख पे जोर ना पड़े।
1: डॉक्टर साहब, और कुछ सावधानियां बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: जो मोबाइल का डिस्टेंस है उसको आंखों से कम 25 से 26 इंच की दूरी पर रखें और इससे हमारी आंखों में थकान नहीं होगी।
1: जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, तो पानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता पानी पिए, आंखों में नमी बनी रहे?
0: ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि हमारी आंखों के ऊपर जो परत होती है आंसू की वो हेल्दी रहे। 7 से 8 घंटे की स्लीप लें ताकि हमारी आंख पूरे दिन भर की थकान के बाद रेस्ट कर सके। आंखों को कभी भी मसलना नहीं है, इससे एलर्जी इरिटेशन बढ़ सकती है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, एस्टिगमेटिज्म बच्चों में बनता है और सन गॉगल्स का प्रयोग हमेशा करना है।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आंखों के चेकअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, आंखों का चेकअप कब कराएं? जी,
0: अपनी आंखों का साल में एक बार रेगुलर चेकअप कराने से कोई भी बीमारी जो होने वाली है उसको पता पहले से ही लगकर इलाज पहले से ही संभव है। लू चलने लगी है और बहुत तेज हवा भी चल रही है और लू और हवा के चलते ही मेरे पास आज एक छोटी सी बच्ची आई जिसकी आंख में एक भुनके का पंख चला गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आंख में एक हड़कन होने लगती है, हम कह नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, लेकिन छोटी सी भी आंख की परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर आंख में समस्या होती है

0: तो हम फौरन ही फौरन आके अस्पताल में दिखाएं और अपने तरफ से उस तिनके को निकालने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि यार मसले नहीं आंख को मसलने से या फिर उस तिनके को खुद से निकालने से आंखों में अब्रेशंस हो सकते हैं और आंख में जख्म बन सकता है। दूसरा, इस गर्मियों में आंख में बहुत पसीना आता है और पसीना कई बार आंख में भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में आंख में खड़कन होती है। कभी भी ऐसा हो तो फौरन आंखों को स्वच्छ पानी से धो लें और अपने चेहरे को पोंछ लें।
1: डॉक्टर साहब, आपने 20-20 रूल के बारे में बताया, पानी में बच्चे नहाए तो सावधानी क्या बरतें, गर्मियों में पानी ज्यादा पिए, मोबाइल कितनी दूरी से देखें। डॉक्टर कनुपिरा अग्रवाल जी, अब आप ये बताइए, आंखें लाल हो जाती हैं इन दिनों गर्मियों में और आंखें आ भी जाती हैं जो बहुत दुखती हैं, करकती भी रहती हैं, तो ऐसे में
0: गर्मियों में आंख भी आ जाती है और ऐसी स्थिति में कभी भी ओवर द काउंटर यानी कि किसी भी दुकान पे जाके कोई सी भी ड्रॉप नहीं लेनी है, क्योंकि इन दवाइयों से हमारी आंख जो आई है कई बारी ठीक होने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटी सी ही लापरवाहियां ही बहुत बड़े नुकसान को अंजाम देती हैं, तो अपनी आंखों की सुरक्षा रखें। अच्छा, अब एक सवाल रविंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया किया कि आंखों को किस तरीके के पानी से और कैसे धोना चाहिए। तो आंखों को कभी भी ना तो गर्म ना ही बहुत ठंडे पानी से, जैसे कि हम इतनी गर्मियाँ हो गई हैं, हम टंकी खोलते हैं फौरन ही टंकी में बहुत गर्म आता है, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल पानी आने लगता है और फिर आता है ठंडा पानी। तो ना तो हमें गर्म पानी आंखों में डालना है और ना ही बहुत ठंडे पानी को आंखों में डालना है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे स्वच्छ पानी, जो कि बिल्कुल साफ पानी हो, फिल्टर्ड वाटर हो, वैसे उस पानी का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी आंखों को साफ करना चाहिए। आंखों को दिन भर में मात्र एक बार ही साफ करना चाहिए। बार बार आंखों को साफ करने से भी हमारे आंसू की परत खराब होती है, तो दिन में एक बार स्वच्छ नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से हमको अपनी आंखों को धोना चाहिए।
2: फोकस चित्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90-68-80-50-50।
3: कोई अपना रोशनी की किरण बनकर उजाला देता है तो मिलता है एक ऐसा उजाला, फोकस नेत्रालय बरेली का उजाला। आइए बात करते हैं उनसे जिन्होंने फोकस नेत्रालय से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। वो खुश हैं, क्या कहते हैं, आइए बात करें। आपका नाम क्या है?
4: सहाना भी।
3: सहाना भी, कहाँ से आई हैं आप?
4: भिंडौलिया।
3: ये आपको आंख में जब दिखाई नहीं देता तो कैसा लग रहा था उस समय?
4: धुंधला दिख रहा
3: है। अच्छा अच्छा, तो अब ऑपरेशन हो गया है?
4: हाँ, ऑपरेशन हो गया।
3: कैसा हुआ है?
4: सही हुआ।
3: सही हुआ, अच्छा अच्छा, खूब दिखाई देता है।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90-68-80-50-50।
3: कहाँ से आई हैं?
4: धौरा।
3: कैसा लगा ऑपरेशन कराने से पहले?
4: ऑपरेशन से पहले ये खड़कती थी, पानी निकलता था आँख में।
3: अच्छा अच्छा।
4: हाँ, तो इसमें दिक्कत आई थी बहुत, जैसे चावल का एक पानी होता गाढ़ा गाढ़ा, इस तरीके से निकलता था, तो इसलिए दिखाने आए थे तो ऑपरेशन बोला था।
3: अच्छा, ऑपरेशन हो गया।
4: हाँ,
3: तो ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा आपको?
4: कभी कभी जैसे फड़क मानती है आँख, तो ये उस दिन दिखाने आए थे तो ये बोला कि ये भी बनेगी, तब दोनों आँखों में सुकून मिलेगा।
3: अच्छा, ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ भी दी होंगी डॉक्टर?
4: दवा दी, हाँ दवा भी दी, ड्रॉप भी दिया, दवा भी दी खाने की।
3: जी, डॉक्टर करुपिया ने आपको क्या क्या बताया कि जब आँख बनने के बाद कितना नहाना है? जी,
4: नहाने को तो ये बोला कि जैसे 15-20 दिन मत नहाना,
3: मतलब आँख में पानी
4: आँख में पानी नहीं जाए, दिक्कत बढ़ जाती है ना।
3: अच्छा,

0: तो हम
1: दवाई भी दी
0: हमने एक महीना नहीं जान दिया पानी, दवा भी दी थी।
1: अच्छा, दवा दी, दवा के पैसे तो नहीं ले गए?
0: नहीं। तो
1: आपके यहाँ कैसे बनी?
0: आयुष्मान कार्ड लगाया था, आधार कार्ड लगाया था। अच्छा, दोनों चीजें लगाई थी।
1: क्या कहेंगे फोकस त्रिताला के बारे में?
0: अच्छा बताएंगे सबको, लोगों को, जैसे अगर कोई आँख बनवाना चाह रहा है तो ये कहा जाएगा कि फोकस हॉस्पिटल सही है, अगर आप बनवाना हो तो वहाँ जाकर बनवा लो।
1: परिवार में आपके कौन कौन है?
0: परिवार में हमारे चार पांच लड़के हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ ये हैं, बड़े हैं।
2: श्रोताओं, आंखें क्या हैं? सिर्फ दो कंचे नहीं, ये दो रब का लिखा हुआ वो खत है जिसे हर कोई पढ़ तो लेता है पर समझ कुछ ही पाते हैं। आंखों ने देखे हैं मेले, आंखों ने देखे हैं झमेले, आंखों ने देखा बचपन का आंगन, माँ की लोरी, बाबा का दामन। ये आंखें जब हंसती हैं तो सावन बरस जाता है, ये आंखें जब रोती हैं तो पत्थर भी पिघल जाता है। कभी आंखें बन जाती हैं दर्पण, दिल का हर एक कोना दिखा देती हैं। झूठ छुपाओ लाख जुवां से, ये नमी सब बयां कर देती है। बच्चों की आंख में सपना पलता है, चांद तारों से भी आगे निकलता है। बूढ़ी आंखों में यादें बसती हैं, गुजरे लम्हों की बारात सजती है। आंखें शिकारी भी हैं, आंखें पुजारी भी हैं। देवी की मूर्ति में नूर बनकर ये आंखें ही उतारी जाती हैं। पर आज की आंखें थकी थकी हैं, स्क्रीन की रोशनी में झुकी झुकी हैं। बचपन की आंखों में चश्मा चढ़ा है, मोबाइल ने अपना बचपन पढ़ा है। ए लोगों, संभालो इन आंखों को, ये अनमोल हैं, बेशकीमती तोहफा हैं ये। 20-20-20 का नियम अपनाओ। इसलिए कहता हूँ, आंखें सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं, आंखें तो पूरी कायनात की गवाह हैं।
3: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90-68-80-50-50।
1: आपका नाम?
4: मेरा नाम परवीन जहां है।
1: कहाँ रहती हैं आप?
4: बहेड़ी रहती हूँ।
1: बहेड़ी?
4: बहेड़ी मीना बाजार मोहल्ला टांडा।
1: तो आपकी आंख में क्या समस्या हुई?
4: मेरी आंख में सर समस्या ये है कि जब मैं सुबह में उठती हूँ तो चीपड़ आते हैं और दिन भर मेरी आंखें सूजी सूजी रहती हैं, सुरख सुरख हो जाती हैं धूप में निकलने से। सारे मैंने डॉक्टरों को दिखाया, मुझे इतना आराम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ फोकस के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था, जब मैंने इनको मैम को दिखाया मुझे बहुत ही फायदा लगा। 8 दिन की दवाइयों से मेरा चश्मा बन गया, फिर भी मैंने सोचा मैं इनको एक बार और दिखा देती हूँ ताकि मुझे आगे परेशानी नहीं हो। अपनी बेटी को लेकर आई हूँ मैं, तो मैंने कहा बेटी को भी कोई परेशानी नहीं हो। मेकअप करने के बाद ऐसा होता है आंखें इनकी सूज जाती हैं, तो मैंने कहा इनको नजर डलवा दी।
1: डॉक्टर कुनबिया, जिसे आपने इलाज कब से करवाया है?
4: यहाँ तो मुझे 8-9 दिन हुए।
1: अच्छा, लेकिन फायदा हो गया?
4: फायदा मुझे बहुत लग रहा है, माशाल्लाह आराम है मुझे।
1: आपके कितने बच्चे हैं, परिवार में कौन कौन है?
4: मेरे परिवार में 2 बेटे 2 बेटियां हैं जी। मैं तो बहुत अच्छा कहना चाहूंगी, बहुत ज्यादा बढ़िया मेरे लिए तो है। जब मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, बहेड़ी में भी, बरेली में भी, तो मुझे इतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत आराम हुआ। मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, आदत भी बहुत अच्छी, व्यवहार भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी, हंस के ही बात करती हूँ।
1: देखो जी मेरी आंखों में।
5: इधर आइए, देखो तो जरा आपकी आंखों में क्या है।
1: मुझे तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये तुम्हारा सुंदर मुखड़ा है ना, ये भी नहीं दिखाई देता है। देखो जरा मेरी आंख में क्या हुआ है।
5: अरे लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है।
1: मोतियाबिंद? अरे वाह,
5: अरे वाह, इसमें हंसने की क्या बात है।
1: फोकस नेत्रालय है ना,
5: तभी तो आपको हंसी आ रही है।
1: बहनों भाइयों, अभी हम बातें कर रहे थे उन लोगों से जिन्होंने फोकस नेत्रालय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, और अब पुनः मिलते हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी से।
6: डॉक्टर साहब, आपने मोबाइल की बात की न देखें, लेकिन आकाशवाणी से गाने तो सुन सकते हैं जी, बताइए।
7: बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपका ये, और बिल्कुल ही हम जो है यही चाहेंगे कि हम अपने कानों का ज्यादा प्रयोग करें। आंखें तो जैसे ही खुलती हैं वैसे ही देखना शुरू कर देती है और अपना काम शुरू कर

0: कर देती हैं। आंखों का भी हमें खूब अच्छे से ध्यान रखना है और उसी के साथ साथ अपने कानों को भी आपको इस्तेमाल करते हुए खूब आकाशवाणी सुननी है।
1: शेर की आंखें देखूं तो हिम्मत नजर आती है, लोमड़ी की आंखें देखूं तो चालाकी नजर आती है। कितना बोल जाती हैं ये आंखें कि माँ के आंसुओं में भी प्यार देख लेती हैं।
2: और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है यहीं पर समाप्त होता है। रविंद्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आपको बता दें ये कार्यक्रम जान है तो जहान है आप सुन सकते हैं माह के प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक शनिवार को समय सुबह 9:30 पर। तो सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम जान है तो जहान है।
3: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जान है तो जहान है रविंद्र मिश्रा के साथ। आज इस कार्यक्रम में मेहमान थे डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। श्रोताओं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोता स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरेपुटिक और हाइपोथेरेमिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार 25 मई 2026 को 4:00 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। इस पर विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरेपुटिक एवं हाइपोथेरेमिया कब और क्यों और कैसे, शंकाएं और समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख हम सब करेंगे, याद रखेंगे हम सब, समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 25 मई 2026 को यानी आज शाम 4:00 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। ये प्रस्तुत है आकाशवाणी के दीवाने। आज के दीवाने हैं बारिश अली।
5: आकाशवाणी बरेली की समस्त टीम और सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वारिस अली खान लखनऊ से हूँ। मुझे इस बात को कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं रेडियो का दीवाना हूँ। मैंने आकाशवाणी के लगभग सभी चैनल को सुना और मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ विविध भारती को या आकाशवाणी को जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पिताजी उस समय एक रेडियो लाए थे जिसका नाम था मर्फी, और मैं अपने पापा से लड़ता झगड़ता था। मेरे पिताजी जो थे वो न्यूज के शौकीन थे और एक प्रोग्राम आता था आकाशवाणी लखनऊ में मजदूर मंडल, उसके शौकीन था, लेकिन मैं उनसे रेडियो छीन लेता था और मैं गाना सुनता था और कमेंट्री सुनता था। तब से यह सिलसिला आज तक कायम है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि रेडियो के माध्यम से हम सभी लोगों से जुड़ जाते हैं। और इस वक्त जब मैं जो चैनल सुन रहा हूँ, करीब मुझे 2 साल हो गए हैं, आकाशवाणी बरेली, आकाशवाणी बरेली के एंकर के बोलने का लहजा मुझे बहुत पसंद आता है। उनका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत हमको अच्छा लगता है। कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, जिसमें खास हमको प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं वो है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, अनुरोध गीत, लकी चॉइस, मन भावन, और जो इस समय मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है वो 5:05 पर शाम को भजन

0: संध्या, मैं इन प्रोग्राम को कभी भी मिस नहीं कर पाऊंगा। और देखिए, रेडियो को सुनने की से एक फायदा है कि हम अपना काम करते भी रहते हैं और प्रोग्राम सुनते भी रहते हैं। हालांकि जो मेरा चैम्बर है, लोग हंसते हैं कि आप तो चैम्बर में अपने रेडियो लगा के FM लगा के बैठे हैं, लोग TV लगाते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान देता हूँ, बल्कि उनका ब्रेन वॉश करता हूँ कि हमारे साथ कभी ये बात सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जमाने में आज भी रेडियो की कितनी वैल्यू है, कितनी महत्व है। मैं आकाशवाणी बरेली के सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक हमको मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, जिससे मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं, कह सकूं। मैं इस बात के साथ अपनी बात को समेटता हूं और भविष्य में भी अगर हमको मौका मिला तो मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा। आदाब, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दीवाने। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए सोशल मीडिया पर किस किस के क्या क्या संदेश आए हैं। हम देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास आया है सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा राम नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा का संदेश। और ये है हमारे साथ भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। और आप हैं पद्मा टाकी देवपानकर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कौशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और उनके परिवार के सभी सदस्य। कटराचांद कहा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, बेदना मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य, स्वाति मौर्य। और आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, अपार ढेंगिया, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊ, नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मैं जबी निसार अंसारी, बेटी नुसरत जहां फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इकरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन बन्ने मियाँ और पप्पू भाई अंसारी। आई सुनते आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सरगम का गीत।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
3: कार्यक्रम से पुनः जोड़ते हैं आपको आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ, और किसकी फरमाइश है इस पर फिर से नजर डालते हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशोर तासु, अर्णब आनंद, सत्यम आनंद, भोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, और आप हैं एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई, तहसील सिल्लौड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैशाली घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के, और आप हैं सुनने वाले सादुल शहर से राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख,

फराज शेख, बेबी मुस्कान, और ये हैं मिलने वाले हैं मोहम्मद यासीन अंजाम, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। जिला रामपुर, ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत, शिवम, सुखपाल, अमरपाल, कृषिपाल, सिद्धार्थ और यश। और ये है ग्राम लोहडा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मनीष प्रजा देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर अनूतन और भुवनेश्वरी देवी प्यारी पोती। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आप हैं गांव गढ़ी कोहाटा गोटाहा, जिला पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, सानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, अमर अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी। ये हैं राजस्थान से, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। जिला मुरादाबाद महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं सुनने वाले हमारे आर्यनगर कोका भिलाई, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर शक्ति फिल्म का गीत।

और ये सुनने की फरमाइश आपकी है, दही गांव नादुरा से ढोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भातुरकर, संतनगर शेगांव से शुभम राउत और कुमार रुद्र राउत। आप हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। और आप हैं ज्योति नगर नोखा राजस्थान से बुकराज बड़ गुजर, कैलाश मिश्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्ग, बाबूगिरी, बाबू गौरी, हसन सिक्का और उनके परिवार के कोई सदस्य। ननौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित ऊजा। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। चरण डोंगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य। जयसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, मोहिना और मोहिरा नूर। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। और ये है पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्ला अंसारी, उस्मान नाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राजेश एडी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर आदिबा। आप हैं चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम।

सुनील गौतम, अमन गौतम, बेटी शालू गौतम, और ये है सेक्टर नंबर 2 आवास विकास काजगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर। बरेली कैंट चनेटी से दिनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। ये हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू।

आज सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से सुनने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल का पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलबीर और उनके परिवार के सभी सदस्य। और आप हैं संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला सरतलाम एमपी से और इनका मालवा रेडियो श्रोता संघ है। सुनने वाले आप हैं जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर और वीणा बंडलकर, विविधा बंडलकर, अंजुम भाई खालदा बेगम और उनके परिवार के सभी सदस्य। बहड़ी से हैं ये। और आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और आप हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरबाल, सचिन खोरबाल, अमन खोरबाल, दीपांशु खोरबाल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से सुनने वाले हैं रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं ऊपरकोट मोहल्ला चाकखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ये हैं सुनने वाले हमारे मछली गोदाम कैंदी मुंडा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह और बलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन और उनके परिवार के सभी सदस्य। पांडा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशाद देवांगन, लखन लाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन। और ये है गाड़ी खाना चाईबासा छारगढ़ से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति। रेवनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ये हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिमी, सद्दाम हदीब हसन, गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से।

और ये सुनते हैं अर्पण फिल्म में लता मंगेशकर को, और सुनने की फरमाइश आप सभी की है। खरसावां से, खरसावां से सुनने वाले हैं खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और मनोज और उनके परिवार के सभी सदस्य, ये हमारे साथी सुनने वाले हैं। बाबू यादव, श्रीमती मंशा, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू यादव और अरुणेश यादव, देवकी बिहार कॉलोनी सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हैं आप, और गाड़के नगर, यवतमाल, महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखांडे, अल्पना ताई लोखांडे, शैलेश लोखांडे, प्रतीक्षा लोखांडे, स्वप्निल लोखांडे, रक्षता लोखांडे, शाहजी नगर, देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, ये हैं बिलराम, और बिरमगाम गुजरात में अजीत भावसार, प्रमिला जी भावसार, गांव कवनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण अनीता और

और राहुल भाविष्ठे और उनके परिवार के सभी सदस्य उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। आप हैं सुनने वाले हमारे ये परवेज के एन सिंह विनोद और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित रितु मोगेश जगपात और उनके परिवार के सभी सदस्य खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डिगू भाविक सिक्का और आप हैं दत्तरेंगी भटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डेकास्ट्रो, रोजी डेकास्ट्रो, पर्ल डेकास्ट्रो, बिलिंस डेकास्ट्रो और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नेहावकर, निर्मला नेहावकर और विशाल नेहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान टाइले और आशीष मुरहेकर। आप हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, कनक, शकुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, पृथक सिंह। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर अर्पण फिल्म का गीत।

bahwa आइए कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म साजन से, सुनने की फरमाइश आप सभी की है। ये हैं नाजनी बेगम, मोहम्मद कासिफ, कमर मोहम्मद, शाकिब मोहम्मद, आकिब मोहम्मद, जैद नाज परवीन, सिराजपुर जिला सुपौल बिहार से, और ये हैं सब्जी मंडी झंझर से बिट्टू भैया और रीटा भाटिया। आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पानल जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, और आप सुनने की फरमाइश करते हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनन वर्मा। ये हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति, ग्राम चरौदाबार नवापारा जिला बिलौंदाबाजार छत्तीसगढ़ से, और आप हैं सुनने वाले अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और उनके तमाम साथी। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निषाद वर्मा, कौशिक वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के वर्मा और राजा। लीजिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर साजन फिल्म का गीत।

हाँ, ये अगलगी चुन्नी की फरमाइश की है। बठिंडा रोड मंडी बर डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अर्जुन नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, और ये हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरजलकार, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। आप हैं एटा रोजगंड डुंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम जख्मी, डीएच बच्चन, और बोरखेड़ा पितारमल जिला उज्जैन से मध्य प्रदेश से, और विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन नाहटा, आपके परिवार के सभी सदस्य, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु विरिधान खुराना, तुलसी खुराना, और हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेश विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनल, आशीष। आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर एक तुझे के फिल्म के लिए गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए आप प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। आइए सबरंग में सुनते हैं सबसे पहले ज़हीर अहमद खान और शाहिद अहमद खान के जुगल सुरम में साथी और इनके कव्वाल साथी हैं ये कव्वाली।

फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तश्नाए फरियाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सवरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 मेगाहर्ट्ज़ पर। निजी प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मन तीन भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?

0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, आप सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा।

0: कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
8: Sir,
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर,
4: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे।

0: जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगा।
1: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
0: हाँ हाँ, कहो।
1: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
0: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: गो अहेड यंग मैन।
1: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी साहब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
1: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
1: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चविंडा क्षेत्र पर भारत का

0: अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं लखनऊ से एफएम रेनबो के कार्यक्रम।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में आयुष विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को केवल उपचार आधारित व्यवस्था तक न सीमित रखते हुए आयुष, योग, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस सेवाओं के समन्वय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठन की मजबूती का आधार होते हैं और कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मौर्य ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के प्रति और अधिक समर्पित बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष में मोदी सरकार गिर जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि यह बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के कारण राज्य को लीड्स 2025 रैंकिंग में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में सर्वोच्च एक्सेम्पलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धि केवल एक सम्मान नहीं बल्कि उस व्यापक परिवर्तन की पहचान है जिसने उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक प्रगति के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश की ओर से इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पुरस्कार ग्रहण किया। चित्रकूट के वन क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से लगातार और काफी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019, 2021 और 2023 के दौरान पूरे इलाके में हरित क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चित्रकूट में चलाए गए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों ने सफलता की मजबूती की नींव रखी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: बारह बजकर 5 मिनट का वक्त। हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? इस चिलचिलाती गर्मी में बहुत अच्छा तो मन नहीं होता है, क्योंकि जब पसीना बहता है ना तो दिल थोड़ा सा अजीब सा अजीब सा हो जाता है और बिल्कुल भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर कुछ खूबसूरत से गाने हो और वो काम जिसमें आपका मन लगता हो वो करिए, तो फिर थोड़ा गर्मी साइड लाइन हो जाती है और आप जिस काम को कर रहे होते हैं उसमें बहुत अच्छा फील करते हैं। एंड हाँ, अच्छा लगने के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपकी हेल्थ। यानी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको फिर अपने आस पास भी सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज हेल्थ की बात होगी आपके प्रोग्राम रूपा में, और आज किस बारे में बात होगी भाई, आप जानते हैं ना, आज कौन सा इम्पोर्टेंट है? आज है वर्ल्ड थायराइड डे। तो विश्व थायराइड दिवस पर हम थायराइड के बारे में ही आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह आप कुछ चीज़ों को ध्यान रख के इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन उससे पहले कि हम एक बढ़िया सा गाना चलाएं, हम बता देते हैं शिल्पी रहेगी आज आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम शत्रुपा में।

मोहब्बत तो आपको करनी चाहिए अपने आप से, क्योंकि भाई अगर हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे सकते, और फिर क्या होता है ना, हम खुश नहीं रह सकते, और जब खुश नहीं रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे अपने शरीर में हो जाती है और हमें लगता है ये कहाँ से आ गई। और आज 25 मई का दिन है और आज वर्ल्ड थायराइड डे है, और इस बार थायराइड को जो थीम है वो है थायराइड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी हमारा जो खाने पीने का तरीका होता है उसका सीधा असर हमारे थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा होता है तो थायराइड हार्मोन अच्छे से बनते हैं, और अगर न्यूट्रिशन आपका वीक होता है यानी अच्छे से नहीं आप खा पी रहे हैं तो ये सब थायराइड पर असर डालता है। तो हम आपको क्या सलाह दें, हम कोशिश करें किसी एक्सपर्ट से आपकी बात कराएं और पूरी जानकारी दें आपको इस संबंध में, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो थायराइड की समस्या से ग्रसित रहते हैं, और बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं उनको लगता है कि आप एक तरह का पार्ट मान लेते हैं कि अरे ये सबको होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें बहुत अपनी हैबिट्स को सुधार कर भी सही की जा सकती हैं। तो क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है, ये सब आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक और उसके बाद बात कराते हैं किसी एक्सपर्ट से आपकी।

0: काटे पाटे हैं राहों में कांटे हैं। मैं भी हूँ सितियाओं किस्म के आरे
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: दोस्तों, हमने आपसे कहा था ना कि आज वर्ल्ड थायराइड डे है और इस बारे में हम आपके एक्सपर्ट से बात कराएंगे ताकि आपको और ज्यादा जानकारी मिल सके। और इसी सिलसिले में हम आपके बात कराने जा रहे हैं SGPGI की डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मनीषा काका जी से, और उनसे जानेंगे सारी बात इस थायराइड के बारे में कि क्या क्या चीजें हमें खानी है, क्या नहीं खानी है, किस तरह अपना ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम शत्रुपा में। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरे जी
1: आज हम बात करेंगे कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए थायराइड के पेशेंट में। बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन है पेशेंट्स के पास जब वो आते हैं तो हमसे डिस्कस करते हैं, तो उन बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: जी
1: देखिए, थायराइड जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक हाइपरथायराइड होता है और एक हाइपोथायराइड होता है।
0: जी जी।
1: अब इसमें जो आहार की बात है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आयोडीन युक्त नमक खाएं।
0: जी।
1: अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते, आजकल बहुत सारे नए नए तरीके के सॉल्ट चल रहे हैं, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। सबसे पहले आप अपना जो भी नमक का पैकेट खरीदते हो तो उसमें जरूर देखें कि आप आयोडीन युक्त नमक खाएं।
0: जी।
1: उसके बाद आप दूध और दही का सेवन करें, अगर मांसाहारी है तो अंडा और मछली का सेवन करें। इसमें सेलेनियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, साबुत अनाजों में पाया जाता है, कद्दू के बीज होते हैं, मेवा दालें, इस तरीके का इस्तेमाल अपने खाने में आप कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, इस बार की जो थीम है वो थायराइड और न्यूट्रिशन ही है, तो एक चीज हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे थायराइड है इसको कैसे अर्ली स्टेज पे पहचान सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो लोगों को पता रहती है कि थकान हो रही है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, या फिर वजन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो शायद थायराइड हो, लेकिन कैसे परफेक्टली जाने कि क्या क्या, अगर आपको सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि पता चल जाए कि हाँ ये थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है।
1: सिम्टम्स है ना, ये हाइपो में और हाइपर में अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर आपके पास इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप है आपको ब्लड टेस्ट कराना। वैसे भी एक उम्र के बाद जब हम 40 क्रॉस करते हैं, और महिलाओं को भी स्पेशली हर साल एक बार ब्लड चेकअप जरूर कराना चाहिए।

0: जी
1: जब हम ब्लड चेकअप कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। रूटीन प्रोटोकॉल में कर लेना चाहिए कि साल में एक बार हमें टेस्ट जरूर कराना।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ब्लड टेस्ट कराने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी थायराइड की लेवल कैसा है।
0: जी
1: इसके अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना है, एबनॉर्मल है तो सबसे पहले अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को मिलके उसको देखना है कि वो आगे कैसे बढ़ना है, तो उसे समय समय पर मॉनिटर कराना होगा
0: जी
1: और अपनी डाइट को ना मेंटेन करना होता है इसमें।
0: डॉक्टर साहब, ऐसी थायराइड किसी को अगर डिटेक्ट हो जाता है तो एक दवा दी जाती है जो इसके कुछ वैल्यूज होती है कि अगर आपका इतना थायराइड लेवल निकला है तो इस ये दवा दी जाएगी, या इतना थायराइड लेवल है तो इस तरह आपको दवा खाली पेट खानी रहती है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि दवा तो आप खा ही रहे हैं थायराइड को कंट्रोल करने में, लेकिन अपने डाइट में किस चीज़ को इंक्लूड करना और किस चीज़ को हटाना है?
1: देखिए सबसे पहले इसमें जो हमें खाना है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि दूध दही पनीर इन सब का सेवन करना है, हरी सब्जियों का सेवन करना है, फलों
0: जी
1: का सेवन करना है, ओट्स का सेवन करना है, असली के बीज का सेवन करना है। इसमें क्या नहीं सेवन करना है ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो आपने देखा होगा पत्ता गोभी, फूल गोभी,
0: जी
1: लौकी और सोयाबीन, इन सब की मात्रा को थोड़ी सी निर्धारित करना है, मतलब बहुत एक्सेस अमाउंट में ये चीजें नहीं खानी है अगर
0: जी
1: आपको थायराइड है तो। और बाकी जीवन शैली बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपका जो दवा लेने का समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सोने से जैसे ही उठे तुरंत
0: जी
1: अपनी दवा लें, और दवा ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ, सामान्य पानी के साथ दवा लें, और उसके करीब सबसे इम्पोर्टेंट कि दवा खाली पेट लें और उसके 20 से 35 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जाननी थी कि थायराइड जो होता है इससे और हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है, किस तरह की चीज़ें या समस्याएं देखने को मिलती हैं?
1: देखिए इसमें आपको अधिक वजन बढ़ सकता है, थकान हो सकती है, गर्दन में सूजन आ सकती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है,
0: जी
1: और प्रेगनेंसी में भी थायराइड का लेवल चेक कराना ना बहुत जरूरी है कि आगे वाले बच्चे का पूरा मेटाबॉलिज्म उस पर डिपेंड करता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे आपसे कि ये थायराइड जब आपको डिटेक्ट हो जाता है कि भाई थायराइड है, तो क्या कुछ ऐसा है कि दवाओं को नियमित रूप से लेने से एक तो कंट्रोल रहता है, लेकिन क्या दवा कभी बंद हो सकती है इसकी? जी
1: मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, मुझे नहीं बनती है
0: जी
1: ये फॉर द टाइमिंग प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ गया था,
0: जी
1: बंद
0: जी
1: होती है, बट आपको इसे मॉनिटर करना, जैसे कि मैंने बोला ना ये नहीं कि आपकी 25 mg की चल रही है और आप जिंदगी भर वही खाते जा रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको हर 3 से 5 महीने में आपको अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना है, उसके मापदंड से आपके दवा का डोज कम हो सकता है, बढ़ सकता है, और इवन कभी कभी हमने देखा है कि मतलब बंद भी होता है,
0: जी
1: डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट।
0: ये ब्लड टेस्ट की आप डॉक्टर साहब बात कर रही थी, तो हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्लड टेस्ट इसके लिए होता है जो करवाना जरूरी है?
1: के लिए होता है T3, T4 एंड TSH।
0: जी, ये तीनों टेस्ट होते
1: थायराइड
0: हैं।
1: प्रोफाइल करके भी आता है और ये तीन टेस्ट हम एक बार में कराते हैं, T3, T4, TSH।
0: जी
1: ये सुबह खाली पेट आप अपने किसी भी लैब के सामने, लैब में आप जाके सैंपल दे सकते हैं
0: जी
1: और शाम तक आपको रिपोर्ट मिल
0: तो
1: जाएगी।
0: खास तौर पर जो आप कहना चाह रही हैं कि अगर हम अपने जीवन शैली को सुधार लें, जो बाहर का खाना या प्रोसेस्ड फूड है इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, तो हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक बात और कहना
0: जी
1: चाहूंगी कि थायराइड के साथ ना विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। आज के मैंने देखा सब लोग एसी में रहते हैं, धूप का बिल्कुल भी
0: जी
1: सेवन नहीं करते,
0: जी
1: तो
0: जी
1: विटामिन डी की ना टैबलेट खा लेंगे और
0: जी
1: धूप का सेवन नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए कि सुबह की एक जो छोटी सी चाय होती है 10 से 5 मिनट की,
0: जी
1: वो गार्डनिंग करते हुए या धूप में बैठ के सुबह सुबह के 6-7 बजे की धूप जरूर लें। धूप सनलाइट हमारे हर बीमारी से लड़ने का एक सबसे बड़ा है कि आप उससे बच सकते हैं, तो सनलाइट का सेवन जरूर करें, एसी की हवा बिल्कुल खाएं बट सनलाइट का भी प्रयोग करें।
0: जी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे तमाम लिसनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो पूरे समय एसी में रहते हैं और धूप के दर्शन भी नहीं करते हैं। सबके लिए बहुत जानना जरूरी कि विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सुबह 6 से 7 के बीच अगर थोड़ा सा समय आप दे पाइए तो जरूर उस धूप को लीजिए, क्योंकि हमें कहते हैं नेचर से जितना आप जुड़े रहते हैं उतना ही ज्यादा फिट रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है हमारे जो लिसनर्स हैं इन जानकारियों का फायदा उठाएंगे और समय पर अपने थायराइड की जांच करा के और दवाएं लेकर अपने आप का एक स्वस्थ जीवन शैली की तरफ अग्रसर होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मनीषा काका जी, SGPGI की डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक अच्छी जीवन शैली, अगर आप जी रहे हैं, अच्छा सा खाना खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खा

रहे हैं, सुबह की धूप ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप एक सुरक्षित जीवन शैली जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। और टाइम टू टाइम उन्होंने बताया कि आप ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कोई समस्या अगर आ रही है तो पहले ही उसका इलाज हो जाएगा, जिससे कि आप बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ फील करेंगे। तो इस ढेर सारी जानकारी के बाद एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक गाना सुनते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो शिल्पी के साथ।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है क्षेत्रपर, शिल्पी आपके साथ है 12:34:55। और आज हम बात करें सेहत की। तो भाई थायराइड डे के बारे में तो हमने आपको बता दिया, और साथ ही डॉक्टर मनीषा काका जी ने भी आपको बहुत सारी जानकारी दी और ये बताया कि हमने जैसे आपसे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा था, अपने से इश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने से इश करेंगे तो अगर हमारे शरीर में कुछ थोड़े बहुत बदलाव होंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आएंगे, तो हम टाइम पर जरूर जरूर डॉक्टर को दिखाएंगे। और ये बात सिर्फ आपको अपने तक नहीं रखनी है, अगर आपके घर में भी कोई महिला है, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी दादी है, कोई भी है, किसी को भी कुछ आप फील कर रहे हैं कि कुछ अलग सा वो फील कर रही हैं, वो अनईजी फील कर रही हैं, या कुछ छोटी सी भी परेशानी लग रही है, तो आपको उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, महिलाएं सोचती हैं कि भाई चलो छोड़ो, अभी बाद में दिखा देंगे, और ऐसा करते करते समस्या शायद काफ़ी बढ़ जाती है। तो महिलाओं को ये इस बात का खास ध्यान रखना है। कोई भी हो, हम तो सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम क्षेत्रों पर इसलिए हम करते हैं, नहीं तो हम सबसे ये कहेंगे कि अर्ली स्टेज में कोई भी चीज़ डायग्नोस होती है तो उसका जो समस्या है उसका समाधान बहुत इजी हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और होती है, जो स्ट्रेस होता है ना, वो बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के बीच रहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि सुबह की धूप ज़रूर लीजिए, सुबह आपका वक्त आपका होता है, बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। और हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि ये जो वाकई में कुदरत ने एक चीज़ बनाई है कि सुबह के इतनी खूबसूरत नज़ारे होते हैं, वो जो शांति होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, वो आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगी। फिर तो शोर शराबा शुरू जाता है जी, ढेर सारी गाड़ियों की आवाज, ढेर सारे हॉर्न, उफ़ वो पोल्यूशन, वो तेज धूप, वो आनंद आपको जो सुबह का आप मिस कर देते हैं, वो आपको फिर दोबारा नहीं मिलता है। तो अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं, देर से उठते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कीजिए और सुबह के नज़ारे को बिल्कुल मिस मत कीजिए। हो सकता है आप कुछ दिन उठिए और उसके बाद फिर आपको बिना उठे चैन ना, यानी इश्क हो जाए आपको इस सुबह के नज़ारे से, अपने आप से, और अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि बहुत अनमोल, बहुत प्यारी है ये जिंदगी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम क्षेत्रपा।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: तो दोस्तों, जो भागदौड़ होती है, भागदौड़ भरा जो जीवन होता है, वो आपको करनी ही पड़ती है, क्योंकि भाई आप जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कहिए कि भाई हम भागदौड़ नहीं करेंगे, हमें काम नहीं करना। काम करना पड़ता है, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि आप अपने खाने को स्किप कीजिए इस बीच में, यानी न्यूट्रिशियस खाने को। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह का आप नाश्ता स्किप कर देती हैं, तो उसे मत स्किप कीजिए और एक निश्चित समय पर एक सही जगह पर आप बैठकर उसे जरूर खाइए। और अपनी दिखावट को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने अपनी शारीरिक गतिविधि को बदलने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज को जरूर टाइम दीजिए, यानी इतना वक्त निकालिए कि आप जरूर एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, और साथ ही नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अक्सर ऐसा होता है कि आपकी नींद प्रॉपर वे से नहीं होती है तो कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो नींद आपके टाइम है जो, उसको सही रखिए और सुबह जब टाइम से उठिए तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालिए कि आप अपने जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव वे में कीजिए, ताकि आपका पूरा पूरा दिन अच्छा जाए। और ऐसा करिए और बताइए फिर हमें कि क्या लगता है आपको, क्या वाकई में शिल्पी ने जो कहा वो सही कहा कि नहीं। फिलहाल और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम आपसे शेयर करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और आप भी ध्यान से सिर्फ सुनिए नहीं, इसे फॉलो भी कीजिएगा। फिलहाल सुनिए खूबसूरत से ड्राइव।

दोस्तों कहते हैं हम शरीर से कितने भी स्वस्थ हों या ना हों ये तो अलग बात है, लेकिन आपका मन से स्वस्थ रहना भी उतना ही बेहद ज़रूरी है जितना आपके शरीर को स्वस्थ रहना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन बहुत बीमार होता है और हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते, ना ही हमारे घर के लोग समझ पाते हैं कि भाई हम बहुत बीमार हैं या परेशान हैं। तो अगर आपको कुछ आसपास अपने घर में ही ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि कुछ कोई इंसान है जो आपसे कटा कटा रह रहा है, पहले की तरह बात नहीं करना चाहता, अकेले रहना चाहता है, कमरे की लाइट्स ऑफ करता है, थोड़ा सा उसके अंदर उदासी आ गई है, वो या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या फिर बहुत ज़्यादा चुप रहने लगा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड होती हैं, यानी अवसाद जिसे कहते हैं। तो ये जो लगातार उदास रहना, थोड़ा सा डिप्रेस रहना, निराशा रहना किसी भी चीज़ में, अक्सर ऐसा होता है कि हम फेल होते हैं तो हमें लगता है कि अरे अब जिंदगी में बचा गया। तो अगर ऐसी चीज़ें आप आसपास नोटिस कर रही हैं तो ज़रूर ज़रूर उस चीज़ का उपचार कीजिए। अपने मन को स्वस्थ बनाइए और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सुबह का जो समय होता है वो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। बहुत ही वंडरफुल टाइम होता है मॉर्निंग टाइम, आप का अपना समय होता है, आप कुछ वक्त ज़रूर अपने लिए निकालिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। और ये सिर्फ बातें नहीं है, सच में डीप ब्रीदिंग करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रेन को जाती है, विच एक्टिव योर ब्रेन, और आपका जब ब्रेन एक्टिव होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही रखिए, ये सोचिए ना कि अगर ऐसा हो जाए तो। किसी भी काम को करने से पहले अगर आप उस बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो मन में बहुत सारे इफ एंड बट बने रहते हैं। सो सोचिए ना कि कुछ गलत होने वाला है, अपने एफर्ट्स पूरे कीजिए और बस। कई हमने लेडीज़ को देखा है वो रात भर चैन से सोती नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुबह हमें अपने बच्चों को टिफ़िन बना के देना, हस्बैंड का टाइम से नाश्ता तैयार हो जाए, क्या होगा अगर मैं टाइम से नहीं उठ पाई, और इस चक्कर में उनकी पूरी पूरी नींद ख़राब रहती है। तो भाई डियर लेडीज, बहुत सारा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी और अपनी फैमिली की। तो बस अपनी और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, लेकिन आपकी अपनी ऊपर आपकी भी जिम्मेदारी है। तो बस अपने आप को फिट रखने के लिए बिल्कुल भी कोई कसर छोड़िए नहीं, और अपना ध्यान रखने के लिए मैंने जो बातें बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, उस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिए।

जी, बातें करते करते समय देखिए 12:53 और 31 सेकंड हो गए हैं। और आज हमने बात करी वर्ल्ड थायराइड डे के बारे में, बात भी आपकी कराई हमारे एक्सपर्ट से, जिन्होंने आपको बताया कि भाई अच्छा खान पान जो होता है वो इफेक्ट करता है आपकी जो बीमारियां हैं उनको रोकने में काफी मदद करता है। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि हमें लगता है कि बस जल्दी से ऑर्डर करो, खाना मंगा लो, लेकिन आप जरा सोचिए कि आप मेहनत कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, अपने आगे जीवन के लिए कि जो बहुत अच्छा रहे, और आप अपने ही शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी आप कुक कर सकते हैं ज़रूर कुक कीजिए। आप के पास समय नहीं तो आप हल्के से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह डाल के खिचड़ी खा सकती हैं, या फिर फ्रूट्स का इंटेक कर सकती हैं जिनको हम अक्सर अवॉइड करते हैं, और डीप फ्राइड फूड खाने में ज़रा भी परहेज़ नहीं करते क्योंकि हम स्वाद ढूंढते हैं। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखिए। और आपको ये भी बता दें कि अवेयरनेस किसी भी दिन को

मनाने का मतलब होता है उसके लिए अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। तो जो भी लोग इस बीमारी से परिचित ना हो तो वो अब आज जान गए होंगे कि इस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे इस बीमारी से को हम कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और साथ ही नींद और स्ट्रेस, यानी अगर आपके पास स्ट्रेस है तो नींद नहीं आएगी, तो स्ट्रेस को थोड़ा सा बाय बाय कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा अपने जो आपका सोने का कमरा है, जैसे आप सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, उसी तरह आपको उस कमरे से टेक्नोलॉजी को भी ऑफ कर देना है, यानी कि उस कमरे से मोबाइल को दूर रखिए और टेंशन फ्री होकर बिल्कुल सुकून वाली नींद सोइए। क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है ना, देर रात मोबाइल चलाते रहते हैं और ऐसे में नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। तो बाकी हमारी सब जो सुनने वाली श्रोता है, हमारी जो लेडीज स्पेशल प्रोग्राम है या जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो सब सब चीज़ें जानते हैं और हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि मुझे पता है कि इस समय मुझे आपसे टाटा बाय बाय कहना है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम होठो पे तेरी बात में एक बार फिर मेरा आपका सामना होना है। सो राइट नाउ शिल्पी इज सेइंग टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड 200.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत।

आइए सुनते हैं सबसे पहले मुस्कान फिल्म में अनुराधा पौडवाल उदित नारायण को, गीत है समीर का, संगीत दिया है निखिल विनय ने, सुनने की फरमाइश आप सभी की है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज से और उनके साथी, ग्राम बगबुडबा बथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष और उनके परिवार के सभी सदस्य, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, आहदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ, इंद्र बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम नूरजहाँ, डब्लू अक्रम नूरजहाँ, बली अक्रम नूरजहाँ, उल्ला अक्रम नूरजहाँ, राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल लोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। और ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ बैग वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। और ये पत्र हमारे पास आया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर और उनके परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर मुस्कान फिल्म का गीत।

आइए सुनते हैं धड़कन फिल्म का गीत अलका याग्निक का अभिजीत के युगल स्वरों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम शिरवन। और सुनने की फरमाइश आप सभी की है कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी।

ये हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं तहसील दत्तागंज से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, सोनी यादव, अंकिता यादव, विनीता यादव, अनीता यादव, सुनीता यादव, सूरत श्री यादव, केशव यादव। और आप हैं गड़ैया बरेली से कैसर शमसी, अजीम शमसी, सुले शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये अस्तुपुर जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। और आप हैं राबर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ।

आज सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, दिल तो पागल है, फिल्म से आशा भोसले की आवाज। सुनने की फरमाइश आप सभी की। डोंगर गांव, जिला राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, परी महल कासगंज से आवाज खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान, सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलठांडा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योतिष नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, हलवाइयान शेरकोट बजनौर से बक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी, पदम सैनी। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर दिल तो पागल है फिल्म का गीत।

आज सुनते हैं गुना फिल्म का ये गीत रूप कुमार राठौर और साबरी ब्रदर्स की आवाज़ों में। छावनी अशरफ खां पानी टंकी के पास से सुनने वाले हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना मनोरमा देवी, अजय फजरुद्दीन भाई। और आप हैं कोटबा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, पीर बौड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद मुस्तकीम तबस्सुम, मौला तलैया और अल्लाह जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, राम प्रसाद शर्मा, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदना मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य, स्वाति मौर्य। आई सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर गुनाह फिल्म का गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है इतिहास फिल्म से अनुराधा पौडवाल और के पप्पू की आवाजें। सुनने की फरमाइश आप सभी की है। मनकाराम मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह मसागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, रतिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शकुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह। श्री भक्त प्रहलाद रेडियो श्रोता संघ दसमल चौक परतून जिला जालना से सुरेश आप्पा दसमली, सौरभ दसमली, सुधाकर दाजी दसमली, दसमली चौक परतून जालना से श्री जय श्री दसमली, कुमारी शिवानी दसमली, सौभाग्यवती अर्चना काटे, कुमारी आकांक्षा काटे दसमली और काटे परिवार। वार्ड नंबर से आवला बजरिया से मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी। और ये हैं हमारे डावर तालाब लॉन्च से रजा अहमद, आरिफ हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। आप हैं बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। आइए सुनते हैं इतिहास फिल्म का गीत।

आज सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है प्यार झुकता नहीं फिल्म से, एस एच बिहारी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, सुनने की फरमाइश आप सभी की है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र, कमरुल्ला नसीब, आयशा खान, आदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्तफ़ा खान, राव भाई और उनके परिवार के सभी सदस्य, पीतम लाला के मकान के पास का कराला बनाई उसे, डॉक्टर मसरूर खान, डॉक्टर मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमबीर और प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव,

खां। और ये हमें पत्र मिला है ननेटा मीरगंज बरेली से श्यामचरण, देवचरा ममोरा बरेली से रामचंद्र, परी महल कासगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान और उनके परिवार के सभी सदस्य। यह छावनी अशरफ खां मंदिर के पास होली चौक से लिखने वाले हैं राम प्रसाद शर्मा, भाई फजलुद्दीन, बेटी वंदना, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, आनंद और उनके परिवार के सभी सदस्य। गंज डुंडवारा से मुनब्बर लल्ला मिर्जा, नसरीन बेगम, अरवाज खान, शहबाज खान, सुफिया महबूबा, पप्पू बिजलीवाले, आफसोना बेगम, मैजवी शेख और बादाम अली किशमिश जहां बेगम। आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर प्यार झुकता नहीं है फिल्म का ये गीत।

आइए सुनते हैं कंपनी फिल्म का गीत अल्ताफ राजा की आवाज़ में, ताविश रोमानी का गीत है और संदीप चौटा ने संगीत दिया है। सुनने की फरमाइश आप सभी की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। और आप हैं सुनने वाले ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और ये है हमारे साथी खुर्जा से तिलक राज, प्रकाश, चंदन, अंकुश। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कंपनी फिल्म का गीत।

कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है प्यार करेंगे फिल्म से, SH बिहारी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने धुन बनाई है, शब्बीर कुमार की आवाज़ है। सुनने की फरमाइश आप सभी की है। गांव लोहडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुन्नेश देवी, मास्टर अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, पेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कैकशा, दानिश आदिल, शफक, ग्राम पंचायत बठेना, बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा और चटौंदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सोद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर शब्बीर कुमार की आवाज़ में प्यार किया है।

और ऋषि के गीत के साथ अनुरोध गीत कार्यक्रम सुदेश कुमार सैनिक को समाप्त करने की इजाजत दीजिए और आगे के कार्यक्रम के साथ लेकर के हाजिर होंगे हमारे साथी परवेज मोहम्मद परवेज।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजे हैं और अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत सुदेश कुमार सैनिक जी के साथ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रसरंग। रसरंग में ये पहली कव्वाली शाहबाज कलंदर की आवाज़ में है।

अगला गज़ल सुनने से पहले हम आपको बता दें कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ आज का हमारा विषय है पुराने ज़माने की कौन सी बात आज आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ श्रोताओं, यह है हमारा आज का टॉपिक, पुराने ज़माने की कौन सी बात आज आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे अपराह्न 2:30 पर और प्रसारण रहेगा शाम

और प्रसारण रहेगा शाम को 4:05 पर। और हमारा फ़ोन नंबर है 0581-251-7200। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं ये गज़ल चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज़ में। कलाम है ज़फ़र गोरखपुरी का और संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये लोकगीत नीलम वर्मा के स्वर में।

श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं रस रंग का, जिसमें आप सुन रहे हैं कव्वाली, गजल और लोकगीत। आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

एहसान सहारों का मत ले, एहसान सहारों का मत ले, खुद अपने मन को दीप बना, खुद अपने मन को दीप बना, तू रस्ते

बालक है तू मालिक है, तेरी हंसी में लाख सवेरे है, तेरी हंसी में लाख सवेरे है। दो हाथों में तकदीर लिए, दो हाथों

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

का यह गीत आशा भोसले की आवाज में शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: मुरलिक धुन सुन आई राधे आई राधे। जमुना के तट पर नीरत करत उठ नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्धि राम तत थई राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

ಎದುರೋಡನೆ ಲಹಕಿ ಮೃದಂಗ ಧನಕ ಸದ್ ನಗಿನ ಸಗನ್ ನದಾನ ಸಗನ ಕಾ ಸಗನ ಕಾ

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का है संगीत।

0: की सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है। और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, हाँ। ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है। जी। खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है, उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: जी हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: बिल्कुल। आज हम बिहार की व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं, जो एक बिल्कुल गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा ही होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
4: आज कथा सुधा में सुनते हैं

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी, पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई, हाथ में पाटा लेकर। वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल

0: पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दया रे दया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू।

0: अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी। हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला ले हम।
0: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ जाओ जल्दी से जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
2: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
3: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
2: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
0: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
3: हाँ हाँ पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। हाँ अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
4: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
3: 7 बजे सुबह।
2: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
3: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है, ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
0: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
3: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
0: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
3: किया क्या जाए? हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। हरे कृष्ण।
1: हाँ हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
0: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए?
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
3: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी,

0: क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हां, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना? पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया? बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
1: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और 1 मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
1: अरे बाप, इतना सामान? अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
3: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
2: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
0: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण
1: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
1: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
1: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
1: ऐसा?
0: हरे कृष्ण।
4: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो।
0: अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए।
2: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
5: अरे अम्मा जी,
1: हाँ,
5: ये तो
1: क्या हुआ, बोलो तो।
4: अरे हुआ का, बताओ,
5: बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या, बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी,

0: 11 तोला सोने की बिल्ली
1: और वो भी भाग गई
0: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं
1: बिल्कुल
0: और

0: तो आरती, स्वागत है फिर से सखी सहेली में। और
1: हाँ
0: पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया,
1: अब
0: देखो
1: तो
0: रूठा
1: मान ही
0: ना
1: गए
0: करो, अब तक
1: होंगे
0: मान गए होंगे।
1: जी हाँ।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर
1: क्या
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं। तो
0: जी
1: इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो
1: जी
0: मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया,
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता, शरीर के
1: बिल्कुल
0: बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और
1: हाँ।
0: फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तिथि को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर

0: संचालित करने वाली संस्था है फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय हैं सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो
0: बिल्कुल
1: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है
0: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
1: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे
0: अच्छा
1: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे
0: इस
1: अपने
0: खेल
1: घर
0: की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
0: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने
1: इतनी
0: में स्ट्रेंथ।
1: कैलोरीज यहाँ पे
0: बिल्कुल
1: खत्म कर दी जाएंगी। जी
0: जी
1: बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
0: वाह, बहुत बढ़िया बात
1: ये
0: है।
1: कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर
0: बिल्कुल
1: झुकाकर जीत स्वीकार
0: कहते हैं ना,
1: करो और
0: जिस
1: हार
0: पे
1: जाओ।
0: पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है
1: हाँ
0: ना,
1: बिल्कुल
0: जिस
1: सही
0: पे
1: बात
0: कुछ
1: है
0: नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
1: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
1: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
1: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत
0: बिल्कुल
1: बढ़ेगी,
0: बढ़ेगी,
1: और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
0: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा,
1: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब
0: होता है।
1: संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
0: जी

0: वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है, टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना
1: बिल्कुल
0: कर रहे
1: सही
0: होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये
0: जी
1: खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत बहुत
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यानी कहीं
1: घूमने
0: घूमने
1: जाना
0: जाना है।
1: ठीक है। तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल। और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला
1: बिल्कुल।
0: जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना

0: आनंद होता है ना, और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: बड़ा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब हम साथ में खा रहे होते हैं ना, तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल। और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं। तो जो भी जा रहा है, हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयां ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती है उनके लिए जो दवाइयां रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
0: लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या
0: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम,
0: सबसे पहला काम। अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहां जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्य दिया, जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है। और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है।
1: अच्छा।
0: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो।
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखे होने, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड, साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा

0: मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए।
1: बहुत
0: इसमें मैं
1: जरूरी
0: एक
1: है।
0: चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के, कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के
1: घूम के
0: चलती
1: जाती हैं।
0: हैं तो
1: हाँ
0: मतली आती है, समस्या होती
1: हाँ
0: है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें,
1: बिल्कुल, साथ
0: और
1: में ले जाए।
0: चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी टकोर, मतलब इन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही, हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा है। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर
0: समय भी
1: सकते
0: बच
1: हैं।
0: जाएगा।
1: बिल्कुल आराम
0: बिल्कुल
1: कर
0: सही है।
1: सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती, और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका
1: हाँ
0: आनंद जरूर लीजिए। जैसा
1: बिल्कुल।
0: मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता
1: जी
0: है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई
1: ध्यान।
0: व्यवस्था करके,
1: बिल्कुल
0: अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी
1: जी
0: व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना
1: बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और
1: अच्छा।
0: जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल
1: अच्छा।
0: के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे हम, उस
1: सहूलियत
0: जगह पे
1: एकदम
0: जाके
1: सही से रखा रहता
0: जी
1: था।
0: रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे,
1: सही
0: और वो
1: बात है,
0: समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे, और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं।
1: हाँ।
0: अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें।
1: बिल्कुल।
0: रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ से सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए, और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ।
1: अच्छा।
0: बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए।
1: अच्छा।
0: मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है, और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है

0: उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना उससे की रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छान कर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आँच पर पकाइए तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद अब गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
1: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा ना
0: बहुत
1: खाने
0: अच्छा
1: के लिए,
0: लगेगा।
1: इतना आइसक्रीम जैसा गले में
0: सच में
1: सूदिंग सूदिंग
0: बाहर की
1: लगेगा।
0: आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं अरिस्तान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत
1: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है। विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ श्रोताओं, माधुरी कश्यप शुभकामना संदेश दे रही हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर।
1: मेरा नाम माधुरी कश्यप है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। आकाशवाणी के 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, इस बात की बहुत बहुत बहुत सारी बधाई पूरी टीम के लिए। और अगर इसकी यादों की कहा जाए या इससे जुड़े रहने की कहा जाए, तो मैंने तो बचपन से सुना है, तो ये एक्चुअली बचपन से जो काम आप करो ना, वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। तो मैंने आकाशवाणी को बचपन से सुना। हमें याद है हमारे पापा के पास इतना बड़ा और इतना चौड़ा सा एक रेडियो हुआ करता था, और जब हम थाने में रहते थे, क्योंकि मेरे पापा पुलिस से हैं, तो फिर वो सुबह स्टार्ट हो जाता था और वो दिन भर चलता था जब तक कि चालू रहता था। उसके बाद जब प्रोग्राम बंद हो जाते तो फिर बंद हो जाता था, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता था। तो हमें याद है कि उस वक्त मैं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बचपन से शौक है, तो कुकिंग की अगर कोई चीजें जानकारी आती तो मैं कॉपी में नोट डाउन करती थी। इवन भजन, गीत, छंद।

0: ये सब मैं कॉपी में लिख लेती थी ताकि, क्योंकि उस समय यूट्यूब वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो यही था एक मनोरंजन का साधन। तो हम ये कॉपी में नोट कर लेते थे, फिर जब कीर्तन वगैरह कुछ होता था तो हम गाते थे। मेरे पास आज भी वो नोट डाउन है। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उससे, और बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम की जानकारियां होती हैं, वो भी हमें यहीं से मिलती थी। और आज के टाइम में तो यूथ के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं, नई नई जानकारियां देना, या बच्चों को किन चीजों से दूर रखा जाए, कौन सी चीजें दी जाए, इस तरह की जानकारियां देना। आज भी मेरे पापा को तो मतलब अभी भी हमारे घर में एक इतना बड़ा सा, एक आजकल तो नए नए तरीके के आने लगे हैं, तो एक FM है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है और जब वो सोने जाते हैं, जब वो सोने लगते हैं तब, जब 11 बजे के आसपास जब बंद होता है प्रोग्राम, तभी उनका वो ऑफ होता है। तो हमको रोज पता चलता रहता है कि आज किसकी ड्यूटी है, क्योंकि आवाज ही पहचान में आने लगी है। तो इसलिए लगातार हम सुनते हैं, और हमको बहुत खुशी है कि 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पहले इतना लोकल FM नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ आकाशवाणी ही सुना जाया करता था, और जिसमें महिलाओं के प्रोग्राम आते थे जैसे ममता सखी, तो उनको बचपन से सुना है, तो उनकी आवाजें, उनका बोलने का तरीका भी एकदम जहन में अच्छे से ताजा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही तरक्की करता है आकाशवाणी, और बहुत सारी।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामना संदेश दे रही थी माधुरी कश्यप। 104 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए, और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए, और जो लोग वीडियो नहीं बना पाएं वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashvanibareilly@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARREILLY akashvanibareilly@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतज़ार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का, और आज का हमारा विषय है पुराने जमाने की कौन सी बात आज आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम। जो गुजर गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, और लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, क्योंकि जब लगती है आग तो लोग बुझाने नहीं आते। श्रोताओं नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत खैर मकदम है, और आज का ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त परवेज। ढेर सारी बातें पुराने जमाने की हमारे लिसनर्स ने, हमारे श्रोताओं ने हमारे साथ फोन कॉल्स पर शेयर की हैं। तो आइए सुनते हैं ये पहली कॉल, ये हमारे पहले लिसनर कौन है, हमारे ये श्रोता कौन फोन लाइन पर है। जी हेलो।
4: जी अस्सलाम वालेकुम परवेज सर, कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं?
4: मैं सुल्तान नजर बात कर रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता।
3: क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में।
4: सर क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है, रहा नहीं जाता, किस कदर मोहब्बत हो गई हमें ऐसे

0: आकाशवाणी बरेली से, इसको सुने बिना रहा नहीं जाता।
1: क्या बात है, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका प्रेम है कि आप इतने ही शिद्दत के साथ हमारे प्रोग्रामों को सुनते हैं और उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। आज का हमारा जो विषय है, पुराने जमाने की कौन सी बात आज आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं?
0: सर, मेरी जो पुरानी बात है वो ये है, जो मैं बैल अपनी लेके जाता था चुमाने के लिए खेतों पे,
1: जी,
0: तो नदी पड़ती थी, उसमें नहाने को मिलता था।
1: अच्छा,
0: वो शायद अब मुझे शायद ना जिंदगी में मिले और ना आगे उम्मीद है मिलने की। तो ये बात पुराने जमाने की इतनी याद है मुझे कि शायद वो इन गर्मियों में आगे बड़ा सोचते हैं कि बहुत दिन ऐसे लौट के आ जाए, उस पुराने टाइम में पहुंच जाए कि हमें वो फिर से मिलने लगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पुराने ज़माने की तो बात ही अलग है, और ख़ास तौर से अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन के वो दिन, वो खेलना, वो कूदना,
0: छुट्टियों में स्कूल की तो वहाँ पे जाके बाग मामा का वगैरह करता था, उसमें हम के पेड़ के नीचे बैठ के और जो दोपहरी का मजा लेते थे, शायद वो एसी और कूलर में नहीं मिलता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, जो पेड़ के नीचे पेड़ की छाँव में जो हमें सुकून मिलता था वो शायद आज एसी कूलर
0: और कूलर में नहीं मिल रहा था।
1: बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राकृतिक हवा की बात ही अलग है ना?
0: अलग है सर, बहुत अच्छी बात। उसमें सबसे पहले मन चीज है कि ठंडी ठंडी हवा और पेड़ के नीचे कट्टा चाय लेटते थे ना, तो एक दिन मन ना बस लेटते ही ऐसी नींद आगे आती थी कि बस समझ लो चाय के ऊपर कौवे बोले या चिड़िया बोले, बस सो रहे हैं आराम से। तो शायद अब ऐसे पूरे नहीं मिलते थी आराम।
1: जी बिल्कुल, और साथ में अपने संगी साथी जो हुआ करते थे, एक साथ खेलते थे, कूदते थे, और एक ही साथ
0: पेड़ों पर चलते थे, और उसके साथ वो लब्बा साथ वगैरह गेम होते थे,
1: जी।
0: तो वो कुछ अलग ही थे। आप तो फोन पे खेलने वाले लोग गेम खेल रहे हैं, तो ये सब बेकार है। बहुत अच्छे प्राकृतिक गेम जैसे कि लब्बा साथ है और भी बहुत सारे भाग हम भाग वाले होते थे, तो उससे हम स्वस्थ भी रहते थे सर।
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सुल्तान रजा जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के बाद?
0: ईद के मुबारक मौके पर ईद आने वाली है, चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया,
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: जी,
0: आपकी बात
1: आदाब।
0: आदाब, कौन साहब बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी, मैं कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान बोल रहा
0: फारूक भाई, क्या करते हैं आप?
1: हूँ। जी, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है सर, मैं
0: अच्छा,
1: मैकेनिक हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जी,
0: इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, मैकेनिक हैं आप?
1: और इस रेडियो के शौक ने मुझे मैकेनिक बना दिया।
0: तो प्रोग्राम सुनते हैं आप हमारे?
1: जी, मैं बराबर कम से कम 30-35 साल से बरेली, क्या मतलब जब भी शुरू हुआ है तब से सुनता हूँ मैं
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको
1: रेड।
0: हमारे केंद्र से प्रसारित
1: जी,
0: कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छे लगते हैं सब, और आपकी फरमाइश के प्रोग्राम में तो मैं रोज भाग लेता हूँ।
0: जी, बिल्कुल।
1: जी,
0: आज
1: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, और जितने भी आरजेस हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत उम्दा बोलते हैं, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: जी आज का हमारा जो टॉपिक है, पुराने जमाने की कौन सी बात आज आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं?
1: जी देखिए, पुराने जमाने तो ये तो आपने एक बचपन की तरफ ले गए, और बहुत अच्छा लगा। सारी बचपन की यादें, बेशुमार यादें जो हैं आज ताजा हो रही हैं।
0: जी
1: अब जैसे गर्मी का ही मौसम ले लें, हम बड़े शहर में रहा करते थे। अब जब वहां से जब यहाँ आते थे कस्बा गुन्नौर में, यहाँ
0: जी
1: मेरी ननिहाल थी,
0: अच्छा,
1: और गर्मियों की छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में बड़ा दिल लगता था यहाँ पर,
0: क्या बात।
1: और इतना दिल लगा कि मुझे ये जगह इतनी पसंद आई तो मैं भी यहीं का होके रह गया।
0: यहीं पर आपने रिहाइश बना ली?
1: जी, मैंने यहीं पर रिहाइश बना ली, फिर गंगा का किनारा है हमारे,
0: क्या बात है। वाकई में जो
1: और
0: सुकून हमें गांव में मिलता है, वो शहर
1: जी
0: की भागा भाग भरी जिंदगी में हमें शायद मैसर ना
1: जी
0: हो।
1: जी सर, यहाँ पर पेड़ पौधे और फिर नल का पानी, ये सब बड़ा अच्छा लगता था मुझे, बहुत यादें बहुत हैं।
0: जी
1: और रेडियो तो हमारे हमेशा साथ रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: रेडियो के बिना तो हम रह भी नहीं सकते।
0: जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: मैं फिल्म का नाम है शालीमार, और गीत के बोले हम बेवफा ना थे सनम।
0: सुनवाते हैं फारूक भाई आपकी पसंद
1: जी,
0: पर
1: बहुत
0: ये
1: बहुत
0: गीत।
1: शुक्रिया आपका।
0: जी
1: ठीक है, ओके, और सभी सुनने वालों को मेरा आदाब।
0: आदाब।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मनकारा मंदिर पीढ़ी कॉलोनी करगना वर्ग से 15 साल बोल रहे सर।
0: क्या बात है पन्नी लाल जी, आपके ख़त भी हमारे पास आते हैं और आप अपने कमेंट्स भी हमें भेजते हैं, है ना?
1: हमारा दिल से लगा हुआ है रेडियो की, जो हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे इस प्रोग्राम के रेडियो
0: जी बिल्कुल, ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप रेडियो से इतना प्रेम करते हैं।
1: के लिए। ये तो पापा ने तब से हम सुनते ही हैं, तो हम ही हैं सुनना है प्रोग्राम आपके सभी के।
0: जी, आज का जो हमारा विषय है, पुराने जमाने की कौन सी बात आज आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं?
1: मिस क्या करते हैं, पहले हमारे ब्याह में नौटंकी चलती थी
0: जी
1: और नाटक भी होते थे, हमारे जैसे बरेली में वो नाटक होते थे,
0: जी जी
1: हैं यानी बहुत अच्छा माहौल था उस समय।
0: बिल्कुल
1: अब तो
0: बिल्कुल।
1: क्या वो सब टीवी टीवी है और टीवी के अलावा कुछ नहीं है।
0: हाँ, आज एक दूसरे के से बात करने का भी वक्त हमारे पास नहीं है।
1: समय नहीं है,
0: बड़ा अच्छा लगता होगा उस वक्त।
1: अब यादें हैं बस, यादें ही आदमी रहती जिंदगी में और कुछ नहीं रहता है।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि यादें याद आती हैं।
1: हाँ,
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज पन्नीलाल जी?
1: आज फिर मैं गंगाजल सरस्वती का साजन मेरे इस पार है, मिलने को दिल बेकरार है।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं आप?
1: अल्ताफ
0: अल्ताफ हुसैन अंसारी जी, आपका बहुत स्वागत है प्रोग्राम में।
1: हुसैन
0: आज का हमारा जो विषय है, पुराने जमाने की कौन सी बात आज सबसे ज्यादा आप मिस करते हैं?
1: पुराने जमाने के जो बड़े बूढ़े थे, जो वो लोग सब जाया करते थे पुराने जमाने की बातें, तो वो याद मिस होती है आप लोग से।
0: अच्छा, क्या बातें समझाया करते थे?
1: जैसे कि कोई गलत रास्ते पे ना जाए, कोई अच्छा काम करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ रहें, अच्छा नाम रोशन करें, तो यही बड़े बूढ़ों की बातें आज याद आती हैं। कोई बातें आज हम मिस कर रहे हैं
0: अच्छा,
1: जी।
0: साथ में बचपन की कोई ऐसी याद जो आज भी अपने आपके जहन पर तरोताजा हो?
1: हाँ, एक मेरे बचपन की जो याद

0: ऐसे थे हम, तो राम गंगा थी एक हमारे यहाँ, तो उसमें हम नहाने के लिए गए थे, तो वहाँ हमें पता नहीं था कि यहाँ उतराव है या मतलब यहाँ गहरान है, तो उस जगह पे हम अंध नदी होकर मतलब वहाँ नहा रहे थे
1: जी।
0: और हमारे पिताजी हमको ढूंढ रहे थे, तो जब वहाँ गाँव में लोगों से पूछा कि वो हमारे बच्चे कहीं देखे हैं, तो गाँव वालों ने बताया कि वो गंगा की तरफ गए हुए हैं
1: जी।
0: तो हम वहाँ पर जब नहा रहे थे, नहा के कपड़े पहन रहे थे, हमारे पिताजी वहाँ पहुँच गए, और फिर उन्होंने कहा बेटा आप नहा लिए, तो हमने कहा हाँ पिताजी हम नहा लिए
1: जी।
0: तो बोले आप फैस करके नहा बताइए सर, मैं सब रहता हम आपको मतलब यहाँ पर नहलवाते हैं
1: जी।
0: तो वो उस कुंडे के पास से, उस हैरान के पास से कहीं दूर रहकर 20-25 कदम दूर ले जाकर, और फिर वो अपने कम से कम पानी में हमें लेके गए, फिर वहाँ पर हमें नहलवाया
1: जी।
0: और फिर इशारे से हमारी गर्दने पकड़ कर वहाँ गोद लगाया, फिर 2-4 हाथ मारे और डंडे मारे, और कहा आज के बाद यहाँ आओगे तुम्हें मौत और जिंदगी का पता नहीं कि कहाँ मौत और कहाँ जिंदगी है
1: जी।
0: तो वहाँ से हम छोड़कर फिर सीधे घर आए। सर यही बचपन की याद है, वही हम आज अपने माँ बाप की बातों को याद करते हैं और मिस करते हैं कि बड़ा बूढ़ा इंसान जो भी होता है वो अच्छी वाली बात बताता है और अच्छे रास्ते पे ले जाने से बहुत करता है। वही
1: कौन सा गीत सुनेंगे आज आपसे बात हुई?
0: आज मूवी फिल्म का तुम याद ना आया करो,
1: सुनवाते हैं आपको
0: याद आने से पहले तुम आया।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन?
1: जी, बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम कटाकला से। नहीं
0: बंटू भाई प्रजापति? तो ये आपके नाम में भाई लगा हुआ है या आपने अपनी तरफ से लगा लिया बंटू भाई?
1: ये आकाशवाणी पे हम फोन करते थे तो वहीं से हमें मतलब मिला कि बंटू भाई प्रजापति आप लगाइए।
0: अच्छा, क्या
1: जी
0: बात है। तो
1: तब से लगा।
0: ये तो आपकी मोहब्बत है कि आकाशवाणी से आपको इतना प्रेम है कि आपने अपने नाम के साथ बंटू भाई लगा दिया और साथ में अपना सरनेम प्रजापति भी लगा दिया, है ना? आज का हमारा विषय है पुराने जमाने की। कौन सी बात आज आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं? तो कोई पुराने समय की बात आपको ऐसी है जो जिसको आज आप मिस करते हैं?
1: जी हम तो पुराने जमाने में अपने घर पर बहुत सी सर पुराने जमाने की बातें हैं, कुछ लोग मिस करते भी हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मतलब पुराने जमाने में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, वो हो रहा था, तो वो आज भी हो रहा, कुछ लोग सब नहीं कर रहे हैं। ये तो दोनों बातें यहाँ पर।
0: जी, कभी अपने नाना नानी के यहाँ घूमने के लिए गए थे आप?
1: जी हाँ, नाना नानी के यहाँ जी जाया करते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हम जाते थे तो हम मतलब रोने लगते थे, मतलब नानी हमारी पास होती थी, मुझे चीज चाहिए, मुझे चीज चाहिए, तो वो झट से पैसे निकाल के देती कि जाओ ये बिस्कुट ले आओ।
0: क्या आज आप उसको मिस करते हैं, वो पुराना बचपन का दिन, वो नाना नानी के घर पे रुकना, खेलना कूदना? यही तो सब बातें हैं जिनको आज हम मिस करते हैं, है ना?
1: जी।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी आप सुना दीजिए शराबी फिल्म का अपनी पसंद का कोई सा भी सॉन्ग, और आकाशवाणी परिवार के लिए बहुत बहुत प्रणाम।
0: प्रणाम।

जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार, जहाँ

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ हिम पंजरों का

यशोदा 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। बहुत सारे कमेंट भी हमारे श्रोताओं ने जो भेजे हैं उनको भी अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। आप हैं राम कुमार रेवाड़ और साथ में चंद्रकला रेवाड़ राजस्थान सादुल शहर से। आप लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप कहते हैं कि मैं बचपन को मिस कर रहा हूं और बचपन को ढूंढ रहा हूं, मेरा बचपन कहीं खो गया है। अगर आप किसी को मेरा बचपन कहीं मिल जाए तो लौटा देना। बचपन सबसे अनमोल जीवन था जो हम बच्चों के साथ हर प्रकार के खेल खेलकर अपना मनोरंजन और अपनी खुशी का पल अपने बचपन के साथियों के साथ खुशी से बेफिक्र होकर खेल कूद में जिया करते थे। बचपन में साइकिल चलाना, अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करते थे। काश मेरा बचपन फिर लौट आए, फिर हम साइकिल पर अपने बचपन के साथियों के साथ अपना मस्ती भरा जीवन गुजारें। बहुत ही सुंदर संस्मरण आपने गुजरे हुए जमाने का राम कुमार रेवाड़ जी हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं हमारी श्रोता सहारनपुर से राधा नामदेव। आप कहती हैं कि सड़कों पर साइकिल के पहिए पर डंडे मारकर चलाना और निडर होकर सारे दिन खेलना मस्ती करना, न खाने की चिंता, न कमाने की चिंता, न समाज की चिंता, सिर्फ अपने बचपन को जीना बहुत याद आता है। दोस्तों के साथ लड़ना, कट्टी होना और अगले ही पल अब्बा कर लेना, न वो पल है न वो दोस्त हैं और वो हम हैं, खो गई जिंदगी कहीं, क्या बात है। बहुत ही प्यारी सी बात आपने गुजरे ज़माने की हमारे श्रोताओं के साथ राधा नामदेव जी बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कमेंट हमारे पास आया है विनेश कुमार बैंक सेंटर के पास चनेटी बरेली से। आप कहते हैं कि बिजली के वो बल्ब वाले रेडियो जिनको ऑन करने के बाद काफ़ी देर बाद आवाज़ सुनने को मिलती थी, पान की दुकानों पर लगी भीड़ में क्रिकेट कमेंट्री या फिर देश में हुए चुनाव का रिजल्ट सुनते लोग, लालटेन और लैम्प की रोशनी की वो पढ़ाई की यादें, साइकिल से स्कूल जाना, ये सब बातें याद करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है। आज आकाशवाणी बरेली के साथ आपने अपने पुराने ज़माने की जो बातें जिनको आज आप मिस कर रहे हैं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनेश कुमार श्रीवास्तव जी। अब हैं हमारे श्रोता ग्राम पुरानी मस्जिद करेली बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी। आपकी कॉल भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है।

0: Will you marry me?
1: No, and no,

हमारे श्रोताओं के कुछ और कमेंट इस वक्त हमारे मोबाइल पर फ्लैश हो रहे हैं। अब हैं हमारे श्रोता नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, चरौदा बार, नवापारा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। अब कहते हैं कि पुराने जमाने का सबसे ज्यादा मिस करने वाला हिस्सा है सुकून और अपनापन। तब रिश्तों में वक्त था, पड़ोसियों से दिल का रिश्ता था और शामें मोबाइल नहीं बातों में बीतती थीं। चिट्ठियों का इंतजार, आंगन की गपशप और बिना दिखावे का साधारण जीवन था। आज भागदौड़ में बुद्धिमापन और भरोसा सबसे ज्यादा याद आता है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने लिखी हमारे नंद कुमार ठाकुर जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हैं हमारे श्रोता अनोखे लाल मौर्य, कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली से। आप कहते हैं कि पुराने जमाने की वजह बहुत ही अच्छा है। पुराने जमाने की बात है जब रेडियो सुनते थे, रेडियो सुनते हैं पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्या बात है, रेडियो सुनते सुनते आप तैयार हो जाते थे और वो पुरानी बातें आज भी आपको बहुत याद आती हैं। बहुत धन्यवाद हमारे अनोखे लाल मौर्य जी। और ये हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, आप लिखते हैं, नमस्कार जी, आदाब। आपको भी नमस्कार और आदाब। पुराने ज़माने के वो घर आज याद आ रहे हैं जो छप्पर वाले हुआ करते थे। क्या बात है, इस गर्मी में वो छप्पर वाले घर बहुत लाभदायक थे, उनमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। आज की गर्मी देखते हुए वो याद आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि जो छप्पर के कच्चे मकान हुआ करते थे लेकिन दिल जो थे वो सच्चे हुआ करते थे।

0: वाकई में जो उसमें जो सुकून मिलता था, जो राहत मिलती थी, उसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और साथ में मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपने ये कमेंट किया था। और आप ये हमारे श्रोता हैं, और भी कई एक श्रोताओं ने हमें कमेंट किया है, लेकिन उसमें कोई भी शब्द नहीं लिखा, सिर्फ अपने नाम लिख करके भेजे हैं। आप सभी का शुक्रिया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका परिवार, और आप हैं हमारे श्रोता कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य और इनका परिवार, आप हैं रामचंद मखीजा, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में हमारे कुछ और श्रोता अमित जंगेल, शगुल जंगेल दमदा ग्राम सुगरी कला से, आपका भी धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। और आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। और आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंत में, जो ये हमारे श्रोता हैं अपने पुराने बीते हुए कल की बातें फ़ोन कॉल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: हेलो
0: जी, कौन
1: जी? दलित भाई प्रजापति बोल। हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं आप? हमारे ये कॉलर कौन है? हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी।
0: हाँ, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: शमशाद अली बोल रहा हूँ मैं।
0: बहुत स्वागत है शमशाद भाई आपका प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: सही हैं, बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
0: हमारे प्रोग्राम आप सुनते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: कैसे लगते हैं आपको प्रोग्राम?
1: बहुत बहुत अच्छे से लगते हैं हमें।
0: आज का जो हमारा विषय है, पुराने जमाने की कौन सी बात आज आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं?
1: पुराने जमाने की बात बहुत कुछ अच्छी लगती है हमें, बहुत मिस करते हैं हम।
0: अच्छा, कौन सी ऐसी बात, कोई एक बात हमारे श्रोताओं को भी बताएं आप।
1: जैसे पहले के जमाने साइकिलें चलती थी, रक्शे चलते थे, वो मिस करते हैं
0: जी।
1: जब लोग चल रहे हैं टुक टुके और ये ऑटो चल रहे हैं।
0: साइकिल में हम जब लोग चलाया करते थे साइकिल, तो उससे क्या था कि हमारा शरीर था वो पूरी तरीके से फिट रहा करता था। शमशाद भाई गीत बता दीजिए आप।
1: गीत भाई कोई सा सुना दीजिए गाना अपने पसंद का, परवेज भाई।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको ये।
2: अभी अलविदा मत कहो।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय था पुराने जमाने की कौन सी बात आज आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं। शाम के 5 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से नागरिक अलंकरण समारोह का राष्ट्रपति भवन से प्रसारण।

0: और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट वन ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Shrimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering.

0: trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार. हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर, और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद, और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ. और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को-चेयरमैन ऑफ द इंडो-यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाव पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा

0: गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
1: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
0: guidelines. Piyush Pandey, Marnoprana.

0: Shri Pandey was named as the most influential advertising man in India by the Economic Times.
1: Shri Vishwabandhu Marnoprant Kala Lok Nitya, Unki Patni Shrimati Indu Devi.
2: Vishwabandhu ji, लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
0: श्री विश्वबंधु वाज़ द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
2: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
0: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान was released. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
2: Jaisalmer ki Tagaram Bhil अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
0: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He
1: so
0: got
1: Shri
0: many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
2: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
0: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, साहित्य एवं शिक्षा।
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
0: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkanth.
1: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
2: Kumar Bose तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
0: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect
1: Shri
0: within the artistic
1: Janardhan
0: community.
1: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
0: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
1: Swami
0: to the
1: Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।

0: during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school. Being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
1: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है. राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हूँ.
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
1: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और ख़ास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
1: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है. वन दादी नाम से जानी जाती हैं. 3,000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधि और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अलपुआ से आती हैं.
0: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: People's
2: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर
1: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Shrimati Sunita Godbole.
1: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
2: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा.
1: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
0: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security needs.
2: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
1: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं. लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy Award.
2: Shri Ghafruddin Mewati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
1: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं.
0: Well, through his sustained artistic practice,

0: way Gafuruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research, including
1: Shri
0: PhD level
1: Mir
0: studies.
1: Hazi
0: folk.
1: Kasam, Kala Dholak.
2: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं. आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं. 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं.
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स. He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
1: Shri
0: Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं. आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं.
0: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna, Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था. आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है. सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri
0: well.
1: Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishwa mein aap number 1 hain. और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार.
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स, सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड. एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल.
1: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा.
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई, श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%. एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी
1: देवबा लाड, दादा लाड, कृषि.
2: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं.
0: श्री रंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज़ वेल.

0: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
1: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
2: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 इयर्स यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
0: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
1: 69 वर्षीय Dr. Mandal, Interventional Cardiologist, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
2: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
0: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
1: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Budh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
0: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
1: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
0: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
1: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
0: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, कला, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
1: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
0: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
1: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
2: श्री सत्य नारायण
0: नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
1: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
0: Shri
2: been supplied
0: K.
2: to the
0: Indian Army. Shri K. Pajanivel Khel Silambam.
1: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है, इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानिवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mammalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
0: Shri Dharmik Lal.

0: चुन्नी लाल पांड्या, कला मान आख्यान।
1: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आप से आकर श्री पांड्या का सम्मान।
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
0: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
1: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
1: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hue aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
2: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
0: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
1: उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
2: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
0: Professor Dr. Rajendra Prasad, चिकित्सा ट्यूबरकुलोसिस।
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीड़ी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
0: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
0: श्रीमती दीपिका रेड्डी कला नृत्य।
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की 3 पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
0: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
0: श्री हरिचरण शाइकिया कला सत्रिया नृत्य।
1: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आ

0: करुणा पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म्ड सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hai aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka pramaan ki unka kitna bada contribution raha hai.
1: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
2: Shri Yumnam Yatra Singh Marnopranth Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
0: Aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युवनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
1: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
2: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
0: अब बारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया, और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, ख़ास तौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the US Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे, और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
0: Aap

0: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस काला आजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड काला आजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। He has published extensively in academic journals, including NEJM and
2: Dr.
1: The Lancet, etc.
2: Dr. S. G. Sushil Amma, Samaj Seva.
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as author in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein ek Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years, on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: प्रोफेसर जूसर वासी आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals
2: and conferences. Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव।

0: सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya evam Shiksha.
0: Gambhir Singh ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
2: Shri Halley War, Samaj Seva.
0: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
1: Shri Ward has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई, उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए, ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी, ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी, पीछे श्री वेंकैया नायडू जी, तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए.
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of this ceremony.
1: आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह और हेमराज मीणा. ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार. मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको ले चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस. नमस्कार.
3: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर. श्रोताओं आइए आप सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार.
4: नारी संसार में आज आपके साथ हूं मैं शिल्पी चौधरी और मेरे साथ है आपके लिए परिवार एवं संस्कार में महिलाओं की भूमिका विषय पर वार्ता और वार्ताकार हैं गंगा देवी. तो आइए जानते हैं गंगा देवी के विचार.
5: श्रोताओं नमस्कार, मैं बरेली जिले से ठरिया ब्रह्मान गांव से बोल रही हूं. आपको बताना चाहूंगी परिवार एवं संस्कार में महिला की क्या भूमिका है. हमारे समाज और परिवार की नींव संस्कारों पर टिकी होती है और इन संस्कारों को सहजने, संवारने तथा अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत आवश्यक रही है. जब भी परिवार की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में माँ की छवि उभरती है. माँ केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रेम, बलिदान, त्याग, जहाँ माँ बच्चों को बोलना, चलना और व्यवहार सिखाती है, सही गलत का अंतर समझाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान बताती है और जीवन के मूल्य को सिखाती है. एक शिक्षित और संस्कारी महिला पूरे परिवार को संस्कारित बना सकती है. कैसे? महिलाएं परिवार की धुरी होती है. कहते हैं महिलाएं परिवार की धुरी होती है. कहते हैं गाड़ी में दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिए में कुछ गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पाती है. उसी प्रकार महिलाएं परिवार की धुरी या नींव कह सकते हैं. वे घर को केवल ईंट और पत्थरों का मकान नहीं रहने देती बल्कि उसे प्रेम,

0: अपनापन और संस्कारों से भरकर स्वर्ग जैसा सुंदर घर बनाती हैं। परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और महिला उस इकाई की संचालक शक्ति होती है। एक महिला बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी और माँ के रूप में परिवार को तथा रिश्तों को जोड़ने और संभालने का कार्य करती है। माँ के रूप में भूमिका। बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। कहते हैं बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। माँ से ही बच्चा सबसे पहले भाषा, व्यवहार, अनुशासन और नैतिकता सीखता है। माँ से संस्कार यानी जीवन जीने का मूल्य जैसे समय, तब बच्चों को सही दिशा देने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आपसी सम्मान और समझ बच्चों के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। कुछ जगह देखा गया है कि पति पत्नी के आपसी झगड़ों का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे के सम्मान देना चाहिए। और राजनीति यानी कि कह सकते हैं हर क्षेत्र में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहन परिवार में प्रेम और सहयोग की भावना को मजबूत करती है। रिश्तों को जोड़कर रखना महिलाओं की विशेषता मानी जाती है। संस्कार किसी भी समाज की पहचान होते हैं। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, अतिथि सत्कार, ईमानदारी, सहयोग और रहन सहन बदलती भूमिका। आज महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि वह शिक्षा, कैरियर, समाज में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं बाहर ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से परिवार को सहयोग देती हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील सोच सिखाती हैं, समानता और आत्मसम्मान का उदाहरण। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने कार्य क्षेत्र और परिवार दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभा रही हैं। लेकिन आज की महिलाएं आत्मनिर्भर और संस्कारी हैं। वे आधुनिकता और परंपरा के बीच सुंदर तालमेल स्थापित कर रही हैं। हालांकि महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन आज भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू हिंसा यानी कि आपसी झगड़े, सामाजिक दबाव, कार्य और परिवार के बीच संतुलन। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब समाज महिला को सम्मान और समान अवसर दे। हमें समझना होगा, यदि महिला सशक्त होगी तभी परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। परिवार में महिलाओं का सम्मान क्यों आवश्यक है? हर परिवार की जिम्मेदारी है। संस्कार केवल बच्चों को सिखाने की नहीं, बल्कि बड़ों को अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। श्रोताओं, हम बताना चाहेंगे प्रेरणादायक संदेश। महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली सदस्य नहीं, बल्कि वे परिवार को आत्मा आत्मा होती हैं। जैसे एक आत्मा के बिना शरीर बेकार है, उसी प्रकार एक महिला के बिना घर घर नहीं होता। महिला घर को सुंदर तथा घर को सजा कर रखती है। इसलिए हमें बेटियों को शिक्षित बनाना होगा, महिलाओं को सम्मान देना होगा, उनके सपनों को नई उड़ान देनी होगी।
1: बहनों, अभी आपने सुने गंगा देवी के विचार, और विषय था परिवार एवं संस्कार में महिलाओं की भूमिका। बहनों, किसी से उधार मांगना एक बहुत ही संवेदनशील बात होती है। सही तरीका अपनाया जाए तो रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं और मदद मिलने की संभावना भी बढ़ती है। उधार अगर आपको मांगना पड़े तो उससे मांगें जो सक्षम हो, जिसके साथ आपका भरोसे का रिश्ता हो। बार बार अलग अलग लोगों से उधार ना मांगें, इससे आपकी विश्वसनीयता ही खराब होगी। वैसे तो ऐसी कंडीशन ही ना आने दें कि आपको उधार लेना या देना पड़े, मगर फिर भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उधार लेन या देन पड़े तो किसी को भी उधार देने से पहले रिटर्न डॉक्यूमेंट जरूर साइन करवा लें, जिससे बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप अपनी आय और व्यय का पूरा हिसाब रखकर जब खर्च करते हैं तो उसकी उधारी का सवाल ही नहीं उठता। जरूरत की चीज़

का खर्च करते समय कुछ पैसा बचत करने रखने की ज़रूरत होती है और ज़रूरत पड़ने पर आप वही पैसा यूज़ कर सकते हैं और आपको किसी से उधार मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसी तरह आप कभी भी किसी से उधार ना लें और ना ही दें, क्योंकि एक मोटी रकम तो आप एक ही बार में किसी को दे देते हैं, लेकिन वापसी में आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलता है, तो आपकी जमा पूंजी पर इंटरेस्ट मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता और आपका नुकसान भी होता है। इसलिए जितना हो सके उधार लेने और देने से ज़रूर बचें। बहनों, आजकल गर्मी का मौसम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो ऐसे में ज़रूरत है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। जब शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर उसे संतुलित नहीं कर पाता, तब उसे बॉडी हीट कहा जाता है। ये स्थिति ज़्यादा गर्म मौसम, गलत खान पान, कम पानी पीना या किसी बीमारी के कारण हो सकती है। गर्मी का असर ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। शरीर को ठंडा रखने का सबसे आसान तरीका है ज़्यादा पानी पीना। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है और शरीर की गर्मी तुरंत कम करता है। छाछ पाचन सुधारती है और बॉडी हीट को बैलेंस करती है। खीरा ककड़ी खाएं, ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। पुदीना शरीर में ठंडक पैदा करता है, आप इसे चटनी या ड्रिंक के रूप में ले सकते हैं। रात में सौंफ भिगोकर सुबह उसका पानी पीने से शरीर की गर्मी कम होती है। एलोवेरा शरीर को डिटॉक्स करता है और अंदरूनी गर्मी कम करता है। तरबूज खरबूज फल शरीर को ठंडक देते हैं और बॉडी हीट को कम करके नेचुरली उसको कंट्रोल भी करते हैं। शरीर की गर्मी कोई छोटी समस्या नहीं होती है, लेकिन सही समय पर ध्यान देने से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप ना सिर्फ बॉडी हीट को कम कर सकते हैं, बल्कि खुद को अंदर से ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश भी महसूस कर सकते हैं। अगर समस्या बार बार हो रही है या ज़्यादा बढ़ गई है, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार शिल्पी चौधरी के साथ। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

हाय हेलो नमस्कार एंड गुड इवनिंग। प्रोग्राम युववाणी में हमारे सभी यूथ लिसनर का बहुत बहुत वेलकम है और आज का ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त परवेज। जी हाँ, श्रोताओं, आज का सवाल, द गोल्डन हाउस उपन्यास किसने लिखा? कुछ खास है आज गंगा दशहरा और वर्ल्ड फुटबॉल डे पर, और साथ ही होगा खूब मस्ती धूम धड़ाका। तो बातचीत कर लेते हैं श्रोताओं गंगा दशहरा की। माँ गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की खुशी और उनकी पूजा के लिए मनाया जाता है। ये पर्व हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। गंगा के भारी वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, जिसके बाद वे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने या पवित्र गंगा जल से पूजा करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष धार्मिक महत्व है।

जी हाँ दोस्तों, 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी, और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड फुटबॉल डे की। जी हाँ साथियों, हर साल 25 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली ने 7 मई 2024 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। 25 मई को ही 1924 में पेरिस ओलंपिक के दौरान पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया जिसमें दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के देशों ने हिस्सा लिया था, और ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की नींव थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य फुटबॉल के जरिए दुनिया भर में शांति, एकजुटता, भाईचारे और खेल भावना को बढ़ावा देना है। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। ये खेल सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परे करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है।

जी दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। अब थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा एंजॉय, आइए शुरू करते हैं धूम धड़ाका इस प्यारे से गीत के साथ।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं कहते हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सा स्ट्रेस है और ऊपर से ये गर्मी, अगर आपको इस गर्मी में ठंडक महसूस करना है तो हमारे साथ गीत संगीत से जुड़िए, प्रोग्राम सुनिए और साथ साथ ये प्यारा सा गीत सुनिए और बजाइए हमारे साथ नगाड़ा।

श्रोताओं, प्रोग्राम के शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि द गोल्डन हाउस उपन्यास के लेखक कौन हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं के, लिसनर्स के, आकाशवाणी

के फेसबुक पेज पर जवाब आए हैं। इसका सही जवाब है सलमान रुश्दी। आप हैं पद्म टाकिज नेबा नगर मध्य प्रदेश, सुदर्शन शाह पल्लवी शाह, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी। आप हैं हमारे श्रोता फागुराम यादव और ये हैं मोहम्मद यासीन अनजान। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ का सही जवाब। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनुकेलाल मौर्य और सुंदर देवी मौर्य और इनके परिवार के सभी लोग। बदायूं से सुमेंद्र यादव और आप हैं उदयभान पाल, प्रवीण चौहान और ये हमारे लिसनर हैं। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा और इनके परिवार के लोग। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार दिवांगन, जिनका बिल्कुल सही जवाब है

और दोस्तों इसी गीत के साथ प्रोग्राम युवाणी से मुझे यानी परवेश को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे प्रोग्रामों को इंजॉय करते रहिए।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत किशनपाल सिंह यादव के साथ।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके भैया कन्हैया की ओर से राम राम। श्रोताओं, आज आपको मनपसंद कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे एक वार्ता, सशक्त युवा सक्षम गांव, और साथ ही क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता में आपको सुनवाएंगे धान नर्सरी की तैयारी इस विषय पर, और जानते हैं कि थोड़ी बातचीत भी आपसे करते हैं। जी हाँ, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमारो आपको सबको दायित्व है, और पर्यावरण को रक्षा को जहाँ सवाल उठते तो सीधी सी बात आते, भैया उसे हमें सुरक्षित कैसे रखनी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को हर स्तर पर और अपने ही तक सीमित ना, वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास करने होंगे। दैनिक जीवन में प्लास्टिक को उपयोग बंद करने होंगे, पेड़ ज़्यादा लगाने होंगे, जल और जो बिजली की बचत हमें करनी होगी, और साथ ही साथ प्रदूषण को नियंत्रित करने के जो संसाधन हैं उनको प्रयोग हमें करना होगा, जिससे हम अपने आसपास के वातावरण को सुंदर, सुरक्षित और जीवन उपयोगी बनाने में सफल हो सकते हैं। और यही जो पर्यावरण है श्रोताओ, उसी में हम रहते हैं और उसी में बहुत जीवनदायिनी चीज़ें हमारे जीवन के लिए मिलती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें, अपने आसपास का जो परिवेश है बाको साफ सुंदर बनाए कर रखें। तो जी सब बातें ही भैया जो कि हमको और आपको सभी को मिल करके अमल करने होगा, और जाके साथ साथ जहाँ गांव देहात की बात चल रही है वहीं पर आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो कैसे सक्षम बन सकती है, और जब सशक्त युवा होगा तो एक सक्षम गांव की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, जब विषय में आज हमारे लिए और आपके लिए बता रहे हैं मुनीश रत्न। तो इनसे जान लेते हैं।
1: सक्षम युवा सशक्त गांव। भारत को सदियों से गांवों का देश कहा जाता रहा है। भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की जड़ें ग्रामीण जीवन में ही निहित है। आज भी भारत की बड़ी आबादी गांव में रहती है, इसलिए यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो गांवों का विकास अनिवार्य है। गांवों के विकास की असली शक्ति वहां की युवा पीढ़ी है। युवा किसी भी समाज की ऊर्जा, उत्साह, साहस और नवाचार का प्रतीक होते हैं। उनसे परिवर्तन की क्षमता होती है। जब युवा सक्षम, शिक्षित, जागरूक

और आत्मनिर्भर बनते हैं, तब वो अपने गांव को विकास के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इसी विचार को दर्शाता है सक्षम युवा सशक्त गांव। सक्षम युवा केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से मजबूत होता है। वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है तथा समाज के हित में कार्य करता है। गांव केवल रहने का आधार मात्र नहीं, बल्कि उत्पादन, संस्कृति और सामाजिक जीवन का केंद्र भी है। गांव का महत्व कृषि उत्पादन का मुख्य स्रोत है। पारंपरिक कला और संस्कृति संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की नींव भी है। गांव के विकास में शिक्षित युवा साक्षरता बढ़ाने का कार्य करते हैं। वे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं तथा शिक्षा के महत्व को समझाते हैं। शिक्षा अज्ञानता और अंधविश्वास को समाप्त करती है। कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से भी आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला भी बन सकता है। ग्रामीण युवा लघु उद्योग, डेयरी और पशुपालन, मधुमक्खी पालन, हस्तशिल्प व ऑनलाइन व्यवसाय से भी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है। आधुनिक कृषि के माध्यम से सक्षम युवा वैज्ञानिक खेती, जैविक खेती, आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि बढ़ती है। डिजिटल गांव की स्थापना के माध्यम से आज इंटरनेट और मोबाइल तकनीकी ने दुनिया बदल दी है। युवा डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी और ई कॉमर्स के माध्यम से गांवों को आधुनिक बना सकते हैं। सामाजिक सुधार में भी युवाओं की भूमिका के माध्यम से गांवों में कई सामाजिक बुराइयां निस्तारित की जा रही हैं। युवा जागरूकता अभियान चलाकर नशाखोरी, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता को भी समाप्त करने में सहयोग दे रहे हैं, जिससे युवा समाज को नई दिशा दे रहे हैं। युवा महिला सशक्तिकरण में भी बढ़ चढ़कर कार्यरत हैं। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तब पूरा गांव विकसित होता है। युवा महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांवों में पर्यावरण संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। युवा वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाकर प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। आर्थिक विकास में भी युवाओं का योगदान अकथनीय है। युवा स्टार्टअप शुरू करके स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाते हैं, जिससे पर्यटन और ग्रामीण उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नेतृत्व और लोकतंत्र में भी युवाओं की भागीदारी के माध्यम से सक्षम युवा पंचायत स्तर पर नेतृत्व संभाल सकते हैं। वे पारदर्शिता, ईमानदारी और विकास को प्राथमिकता देकर स्थानीय प्रशासन को मजबूत बना सकते हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी युवा गांवों के विकास में निरंतर अग्रसर है। कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया अभियान, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ग्रामीण स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर युवा अपने गांवों को विकसित करने में निरंतर प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी युवाओं का योगदान अति महत्वपूर्ण है। स्वस्थ गाँव ही सशक्त गाँव की पहचान है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी कई समस्याओं को जन्म देती है। युवा स्वच्छता अभियान, टीकाकरण जागरूकता, पोषण अभियान और साफ सफाई के कार्यक्रम चलाकर लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। युवाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य, स्वच्छता अभियान चलाना, साफ पेयजल के महत्व को बताना, योग और खेल कूद को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना भी इनके प्रयासों की अकथनीय समग्र विकास की भावनाओं को दर्शाता है। आज ग्रामीण पर्यटन भी तेजी से विकसित हो रहा है। युवा अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प और संस्कृति को भी पर्यटन से जोड़ सकते हैं। इससे गांवों की आय बढ़ती है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। ग्रामीण पर्यटन से लाभ जैसे स्थानीय रोजगार, सांस्कृतिक पहचान का प्रचार, आर्थिक विकास और पलायन में भी कमी मिलते हैं। भविष्य का आदर्श गांव सशक्त होगा जब गांवों में हर युवा शिक्षित और कुशल होगा। डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, रोजगार गांव में ही मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनेंगी, पर्यावरण संरक्षित रहेगा, सामाजिक समानता स्थापित होगी। ऐसे गांव विकसित भारत की पहचान बनेंगे। सक्षम युवा केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि पूरे समाज को और पूरे राष्ट्र के भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे,
ज्ञान प्राप्त करे

0: और समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाए तो गांवों का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। सशक्त गांवों का निर्माण ही विकसित भारत का मार्ग है और इस मार्ग के वास्तविक निर्माता हमारे युवा हैं। सक्षम युवा ही सशक्त गांव की बुनियादी नींव है और विकसित भारत की एकल पहचान है, ये सिद्ध है।
1: श्रोताओं, अभी आप जान पाए मुनीश रतन जी से कि जो सशक्त युवा है वो कैसे करके सक्षम गांव को बना सकता है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको वो अपना करके एक सक्षम गांव का निर्माण कर सकता है। और बातचीत चर्चा चली रही है, तो और कोई जानकारी आपके बीच में पहुंचाने वास्ते पहले, आज सभी लोग देख रहे हो, आज दिन का है, आज भैया बड़ी सब मग्न है, दशहरा है और दशहरा में भैया होत का है जी, तो हम और आप सभी जानते हैं, और ऐसे ही कुछ हमको और आपको बता रहे हो जो लोकगीत।

0: जेठ दशहरा है और गंगा जी नहावे की कर लो तैयारी है। जब लोकगीत को स्वर दे है वीरेंद्र सिंह ने, और उम्मीद करते हैं भैया लोकगीत आपको पसंद आओ है। और बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो आज दशहरा पर गंगा स्नान के लिए गए होंगे, और जिनने जो जो चीज़ें बताई हैं भैया वे सभी चीज़ें बना के अपने साथ में ले गए हैं ना। हाँ देखो गर्मी पड़ रही है, और कौन कौन से जो व्यंजन हैं वे हमको बना करके ले जाने हैं। तो जी सब बातें आज हमारे जो लोग दशहरा पर स्नान के ले गए होंगे उन्हें पता होंगी। और साथ ही साथ में अब भैया चलते हैं एक गांव की ओर। धान की नर्सरी की तैयारी हमें कैसे करनी है, किस तरीका से हमें धान की नर्सरी डालनी है, और डालन के बाद में कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान रखनी है, जिन पर विस्तार से बता रहे हैं कल्लू सिंह।
1: सुनने वालों के लिए जान लेते हैं आपका परिचय। मेरा
2: नाम कल्लू यादव, जिला बरेली, ब्लॉक मजगुना।
1: गांव कौन सा है आपका?
2: गांव राजपुर कला।
1: हर कोई कोई ना कोई काम काज करता है अपने जीवन यापन के लिए, आप क्या काम काज करते हैं?
2: खेती।
1: खेती में इस समय क्या काम काज चल रहा है?
2: खेती में फिलहाल मक्का है
1: जी,
2: एक्सपेरिमेंट है, और
1: अच्छा
2: धान की तैयारी चल रही है।
1: तो धान की नर्सरी की तैयारी चल रही है इस समय।
2: हाँ जी।
1: कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं खेतों में, किस तरीके से बना रहे हैं?
2: जुताई सही कल्टीवेटर से 2 बार कर दिया, फिर पानी
1: अच्छा
2: छोड़ दो, फिर तैयार, फिर जोतेंगे।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: लगभग कितनी बार जोत देंगे?
2: लगभग 6-7 बार।
1: ये आपने कहा पानी छोड़ दिया, इससे क्या होता है?
2: इससे जनरेशन है घास को सब
1: हो जाएगी,
2: हाँ
1: फिर बाद में नहीं होगी,
2: फिर दोबारा नहीं होगी।
1: अच्छा, ये एक तरीके से पौध जब डालते हैं तो लगभग कितनी बार, जैसे पानी छोड़ना या पलेवा कहते हैं, कितनी बार करना चाहिए?
2: कम से कम 2 बार।
1: अगर बारिश हो जाए
2: तो एक ही बार।
1: एक बार में काम चल जाता है।
2: हाँ
1: अच्छा, ये क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होता है?
2: जमीन का टेम्परेचर सही रहे हो,
1: हम्म,
2: मतलब नमी ज्यादा प्रकार रही, तो बाद में हल्को पौधा होगा तो चूर्ण की संभावना कम रहेगी।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: अगर ऐसे ही जोत करके पलेवा ना करें और ऐसे ही डाल दें तो क्या होगा?
2: ना हो पावेगी,
1: अच्छा,
2: टेम्परेचर पास समय पे बहुत लगभग 45-46 रेट तो
1: हम्म,
2: कैसे हो पावेगी।
1: अच्छा
2: हाँ
1: तो क्या दिक्कतें आएंगी?
2: दिक्कतें बहुत, पीरी पर लिख रही,
1: अच्छा,
2: चुई जाएगी
1: यानी जितनी डालेंगे उतनी होगी नहीं?
2: ना, मुश्किल से अगर ये ना ये चीजें दोनों ना करोगे तो लमसम 60% ही जनरेशन होगा बाबू, 40% खत्म।
1: खत्म हो जाएगी। अच्छा, जमने के बाद में हमारे किसान साथी जो हैं बताते हैं, हम बातचीत करते हैं तो कि घर पे जमाव कर लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से कंदान बनाकर पानी भरकर डालते हैं, तो क्या वो जमी हुई पौध भी खत्म हो जाती है?
2: हाँ वो जन 22 जनरेशन, वो जो टेम्परेचर के हिसाब से वो खच्चो जाते हैं,
1: अच्छा
2: बायोमास में बोलते हैं,
1: अच्छा
2: खत्म हो जाते हैं वो।
1: अच्छा तो ये है, अगर हमारे किसान साथी हैं हमारी आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, आपके परामर्श के अनुसार वो अगर नर्सरी डालें धान की, क्योंकि इस समय आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे किसान साथी वो भी तैयारी कर रहे हैं नर्सरी डालने की, तो आपने बताया कि कम से कम 2 पलेवा लगानी चाहिए, और जब डालें तो सूखी मिट्टी, अगर पलेवा नहीं किया है तो वो कर दें, लेकिन ऐसे ही सीधे खेत जोत करके ना डालें, है ना?
2: डाले हाँ
1: तो अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, जब वो आप डालते हैं आपके परामर्श के अनुसार उन्होंने पलेवा कर दिया, फिर आप क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे डालते हैं, जब जमा कर लेते हैं घर पर फिर क्या काम रहता है उसमें?
2: जब डाल दी
1: हम्म,
2: उसके बाद शाम को देखा कि उसमें पानी है तो जब ठहर गई तो 5 में पानी निकालना है वो,
1: ठीक,
2: फिर दूसरे दिन को जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाद में पानी को गर्म ना
1: गर्म,
2: पड़े,
1: अच्छा
2: हाँ
1: जी
2: निकलेगा,
1: ठीक,
2: फिर उसके बाद देखना है तो शाम को ही उसमें पानी देना है, ना कि सुबह को,
1: अच्छा शाम को जब
2: जो
1: पानी
2: पानी
1: लगा,
2: हाँ लगभग जब तक तैयार ना हुई तब तक शाम को ही पानी देने हैं वहाँ,
1: अच्छा
2: सुबह जाके उसमें अगर ज्यादा एक्स्ट्रा पानी वो निकाल दो
1: अगर दिन में सुबह ही भर देते हैं तो
2: ना, तो टेम्परेचर जो ऊपर से बढ़े हो तो वहाँ भपका बने वो
1: हम्म,
2: पौध की उसकी वो हल्को ही होता ना
1: कला,
2: हाँ वो तो टेम्परेचर ना जल पाता है,
1: अच्छा तो चू सकता है,
2: हाँ

0: पूछो तब से।
1: आपकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए किसान साथियों को, अगर वो पौध डालते हैं और अच्छी पौध करना चाहते हैं तो जो सिंचाई है वो शाम के ही समय करें।
0: हाँ, और टेम्परेचर बहुत जरूरी है। जैसे जैसी बढ़िया तरी रहेगी खेत में, उतनी बढ़िया पौधा रहेगा, बढ़िया एकदम।
1: अच्छा, खरपतवार हर कोई फसल में आते हैं। अब ये धान की नर्सरी जो है, बीज बहुत घना पड़ता है, कम जगह में डालनी होती है, रोपाई बहुत जमीन में करने के हिसाब से डालते हैं, तो उसमें निराई गुड़ाई तो हो नहीं पाएगी। तो खरपतवार रोकने के लिए जो घास फूस होती है उसके लिए क्या करते हैं आप?
0: वही ले डबल जो दो बार आपने खेत पर हो वो उसी के लिए तो है। खरपतवार कम मात्रा में होगी क्योंकि
1: अच्छा
0: उसकी जुताई काफी हुई ना, फिर
1: अच्छा
0: उसमें दो बार का के तो पानी लगो, जो जनरेशन होने खरपतवार को वो हो चुको है।
1: अच्छा, और बाद में नहीं होगा? अगर इस पर भी हो जाता
0: हो
1: है तो
0: जाता
1: क्या करते हैं?
0: तो दवा
1: अच्छा, स्प्रे करते हैं,
0: हाँ,
1: कनेर बनाते समय डालते हैं या फिर जब जमाती तब डालते हैं, कैसे
0: जब
1: करते
0: जब
1: हैं?
0: जमे आती है ताकि उसका मट्टी में मिलेगा,
1: अच्छा,
0: उसका छिड़काव कर देते हैं
1: लगभग कितने दिन बाद?
0: लगभग 4 से 5 दिन के बीच।
1: हमारी आपकी एक धान की नर्सरी पर बात हो रही है, तो अच्छी नर्सरी के लिए आप क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से आपकी नर्सरी तैयार हो और जो समय होता है 20 से 25 दिन के बीच में नर्सरी तैयार हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं आप?
0: सबसे मेन चीज तो है खेत को बढ़िया करके तैयार करना।
1: ठीक,
0: तैयार करने के बाद वहां में खरपतवार को तो मतलब ही रहा है दोबारा होने का। जैसे उसकी जुताई लगभग 6-7 बार हो गई, दो बार उसका पलेवा कर दिया,
1: ठीक,
0: तो खरपतवार को तो कोई मतलब ही नहीं है। उसमें पौधा भी बहुत विकसित होता है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि ज्यादा अधिक जुताई होने से उसका पौधा जो है वो बहुत बढ़िया होता है एक बार में।
1: ठीक,
0: एक चीज और बता रहा हूँ कि जैसे सुबह शाम उसे देखना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा,
0: हाँ, सुबह शाम आप देखोगे ना उसे, उसमें स्यास भी है, चिड़िया है, और ये चींटी अपना वो बना लेती हैं
1: अच्छा,
0: घर,
1: मिट्टी फूलती है
0: मिट्टी
1: तो
0: यहाँ फूलती है,
1: जी,
0: और सुबह शाम देखना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा,
0: हाँ, और दूसरी बात, उसमें जो भी देखना है रोग ना लग रहा हुआ है, वो चिट्ठीदार वो होता है कीड़ा पत्ता को जो उसे बोलते हैं घर के धान में भी लगता है,
1: जी,
0: ये देखना कि कहीं कोई रोग जैसे पत्ता में वो कीड़ा लगता है, भुनका टाइप होता है, वो पत्ते पत्र लेता है,
1: जी
0: और सुड़ी है, और जैसे तो कीटनाशक मतलब लगानी है,
1: जी
0: तभी देख पाओगे जब आप सुबह शाम से देखोगे
1: डेली।
0: डेली।
1: करु सिंह जी, आपने जो पौध की नर्सरी है उसके संबंध में बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों को आज के हमारे कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जो हमारे किसान साथी हैं गांव में धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं डालन के लिए, तो उन्हें किस तरीक़ा से डालने हैं और कौन सी बातें विशेष रूप से धान की नर्सरी में ध्यान रखनी है, ये अब बता रहे हैं कृषक कल्लू सिंह। और अपने धान की नर्सरी में कौन कौन सी बातें हैं वे ध्यान रखते हैं, ये सब बातें बताई हैं भाई आपको। और श्रोताओं, बातचीत चल रही है पर्यावरण की रक्षा पर, तो पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम कम से कम नई सामग्री को उपयोग करें, पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें और कचरे को रिसाइकिल करें, और जो प्लास्टिक है बाको भैया बहिष्कार करें, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचें और कपड़े वाले थैले को इस्तेमाल करें। वहीं अगर बात करें हम पानी की, तो इसकी बर्बादी को रोकें, नल में रिसाव को ठीक करावें और नहान के लिए भैया बहुत ही सीमित मात्रा में पानी को उपयोग करें, और पौधे ज़्यादा लगावें अपने घर के आसपास। अपने घर के आसपास खाली जगह पड़ी है बामें, आप पौधे लगा सकते हैं, और खाली जगह जो है बाको हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, अपने वातावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। और अब जहाँ समय है तो क्यों ना थोड़ी गौनी बजनी और हो जाए, तो अगलो लोग भी सुन लेते हैं ओम प्रकाश बा साथियों की आवाज़ में।

आती है मेरे प्यारे भाइयों, तो एक समय की बात याद आई है। भूपाल सिंह निगना को कहने लगा कि ये बहन आज तो ठुकरा रही है मेरे लिए, लेकिन उस दिन की बात याद कर, तुम्हारे यानी मेरे जीजा धीर सिंह की कैद करवा ली थी संभल के राजा ने, और यही मेरा हिरई भांजा तेरी गोद में 6 दिन का था, तू सौर में पड़ी हुई थी। जब तू मेरे पास आकर के रोई तो मैंने जाकर के बहनोई साहब की कैद छुटवाई, और उस दिन मेरे जो तलवार लगी उसका निशान आज भी मेरे हाथ में है। कहन लागे।

हमारे भाइयों बहुत कुछ समझाया आज निंदना ने, लेकिन जब कमला नहीं मानती तो खुशाल सिंह कहने लगे हमारी बहन कमला तो नहीं मान रही है, ना जाएंगी हमारे झोपड़ियों पर, लेकिन थोड़ी देर को जीजा तुम अगर गाड़ी रोक देओ तो मैंने तो तुम्हारे दर्शन करिए लाए, एक का मेरी रानी जो है सामल वो भी तुम्हारे दर्शन कर लेगी, तो होता क्या है।

संसार और ताशय अगर कछु होए तो चलो दर्शन करियो चल के कुछ दान में दे। तो मेरे प्यारे भाइयों आज निंदना कहन लागो विशाल सिंह के आए रानी।

तो श्रोताओं, गौनई बजने के साथ साथ आज जानकारी का सिलसिला और आपकी जो शारीरिक और मानसिक थकानी भैया बहुमीद करते हैं दूर हो गई होगी। और बातचीत हम आपसे कर रहे हैं पर्यावरण रक्षा की। तो जो बातें हमने आपको बताई हैं, जैसे हमें प्लास्टिक को बहिष्कार करने हैं, पानी को कम उपयोग करने हैं और ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनकी हमें बचत करने के साथ साथ में अधिक से अधिक पौधा लगाने हैं, और छोटी मोटी दूरी को अगर कहीं हम जा रहे हैं तो भैया जो हमारे साधन हैं उनमें साइकिल को प्रयोग करें। और बात रही खेती की, तो खेती में रासायनिक खादन को प्रयोग ना करके जैविक

साधन को प्रयोग अगर हम करेंगे तो निश्चित ही जो हमारे खेती से मिलने वाले अनाज में प्रदूषण हो रहा हो बाकी रोकथाम कर सकते हैं, और पौधे लगा करके हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। और जैसे हमने आपको पहले बताई ही कि अगर हम पानी को इस्तेमाल सही करेंगे तो जो भूगर्भ में जल है वह को हम लंबे समय तक बचाए कर रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को अच्छे पानी की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं अगर इन बातन को अमल में लावेंगे तब। और साथ ही साथ आजकल आप देख रहे होंगे कि भैया अपने खेतन में हम खाद डालते हैं तो उसमें बहुत सारी प्लास्टिक हमारे घूरे के साथ में जाती है, और अगर हम इसको उपयोग ही कम करेंगे तो भैया सीधी सी बात है हमारे जो जिस गड्ढा में हम सड़ा गला के देसी गोबर की खाद तैयार करते हैं वहाँ में जो पॉलीथीन है प्लास्टिक पन्नी है बनाई जाएगी और हमारे खेत जो हैं वे सुरक्षित रहेंगे। और अब सामने दीवार में लगी घड़ी भैया इशारों कर रही है, और कोई बातचीत या चर्चा को समय आपसे नहीं बचो है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भैया कन्हैया को यहीं पर कार्यक्रम ग्राम जगत से अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए। राम राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत भैया कन्हैया के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय भट्ट के अंतर्गत एक भेंट वार्ता। श्रीमती चंपा देवी से बातचीत कर रहे हैं ब्रजेश तिवारी।
1: क्या है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कार्यक्रमों का एक नया सिलसिला चला है, उसकी सिलसिले में एक प्रोग्राम है हमारे और आपके बीच, समाज के ही वृद्धजन जो सीनियर सिटीजन हैं उनके माध्यम से हम उनको जोड़ते हुए कार्यक्रम लेकर आए हैं। कार्यक्रम का नाम है अक्षयवट। अक्षयवट यानी वो प्रतिबिंब है, वो समानता है कि जो अक्षयता प्रदान करता है हम सबको अपनी बातों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियोज में आई हैं श्रीमती चंपा देवी जी। ना का समाज में रहने का, अपने जीवन को रेडियो से जुड़ाव का, परिवार को संभालने का, इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर अपना ही एक अनुभव है और उस अनुभव को हम जानेंगे अपने इस कार्यक्रम अक्षयवट में। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है?
2: चंपा देवी।
1: जैसा कि आपने हमें बताया कि आप एक हाउसवाइफ हैं, परिवार संभालती हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करती हैं। तो चंपा देवी जी, ये दोनों चीज़ों पे बात हम करेंगे, परिवार संभालने पर और पशुपालन पे। लेकिन उससे पहले आकाशवाणी अब मना रहा है अपने 90 वर्ष, यानी इस वर्ष आकाशवाणी 90 साल का हो गया है। जब जीवन में कुछ समय पहले जब आपने शुरुआत में देखा होगा, जीवन में आप बड़े हो रहे होंगे, हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, रेडियो आया, मनोरंजन का एक साधन रहा, न्यूज इसी पे मिलती थी, कोई और साधन नहीं था। आपने भी देखा होगा अपने बचपन में, तो कुछ इससे जुड़ी बातें कि बचपन में आपने रेडियो को पहली बार कैसे देखा, उसके बारे में कैसे सुना?
2: पहली बार ऐसा सुना हमने, जो पहले रेडियो में जो मशीन लगती थी उसमें गाने आते थे।
1: अच्छा, जो उसमें मशीन लगती थी,
2: मशीन लगती थी,
1: पिन से चलती थी,
2: वो वाली के गाने सुने।
1: गाने सुने आपने तो मतलब उस दौर में भी, यानी तब आपकी शादी हो गई थी?
2: शादी नहीं हुई,
1: तब नहीं हुई थी। तो गाने यानी उस दौर में ऐसे सुना आपने पहली बार
2: जी।
1: अच्छा, कभी आपने ये देखा हो कि आपके बाबा पापा परिवार के लोग जो है रेडियो सुन पे समाचार सुन रहे हो, या फिर ऐसा गांव में होता था पहले?
2: काम बिजी,
1: सब लोग खेतीबाड़ी में, अपने
2: खेतीबाड़ी में तो वो नहीं सुन पाते थे।
1: लेकिन हाँ, आपने जो है पहली बार अपना वहाँ पिन पे गीत सुनने की शुरुआत हुई, तो कितनी बड़ी बात होती थी उस दौर में कि अपनी पसंद का अगर कोई गीत सुन ले रेडियो पर, तो कितना खुशी होती थी उस दिन,
2: खुशी होती थी,
1: है ना। फिर अच्छा, जीवन में आगे बढ़े, आपका विवाह हो गया, तो आप विवाह के बाद सीधे बरेली आ गई या अपने गांव ही रही?
2: गांव गए थे पहले।
1: अच्छा, गांव गए,
2: शादी हो गई, गांव में गए थे।
1: अच्छा अच्छा, उस समय बड़ा थोड़ा काम कुल, इतने सारे काम, बड़ा परिवार होता था, सबको संभालना होता था, बहुत काम होता, तो उस बीच में मौका लगता था कभी कि कहीं रेडियो सुनने को मिल जाए?
2: सुन लेते थे काम करते हुए।
1: अच्छा, तो उस समय आपको कुछ याद आता है कि कौन सा स्टेशन बरेली या क्या आता था?
2: बरेली आती थी।
1: अच्छा,
2: और क्या कहते हैं,
1: नजीबाबाद या रामपुर?
2: नजीबाबाद आता था, रामपुर आता था
1: जी, इस तरीके से।
2: विविध भारती आती थी, और बम्बई।
1: हाँ, बम्बई विविध भारती जी जी। तो देखिए, उस दौर से आज का दौर, आज

0: आप देखिए कि आकाशवाणी को यानी रेडियो को पहले क्या एक रेंज होती थी कि भाई यहाँ तक रामपुर आएगा, यहाँ तक नजीबाबाद आएगा, यहाँ तक बरेली, सबकी एक रेंज है। अब इतना प्रगति कर ली है हम लोगों ने कि रेडियो, आप आकाशवाणी को लोग विदेशों में सुन रहे हैं,
1: सुन रहे हैं।
0: कितनी दूर दूर तक चले गए। अपनी पसंद की गीत, अपनी पसंद की बातें हम लोग जो है अब कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग रेडियो पर विश्वास करते हैं
1: करते हैं
0: हमारी इस पे कही गई बातों में। तो आपको क्या लगता है चंपा देवी जी, कि रेडियो पर जो भी बात हम लोग करते हैं, चाहे वो किसान संबंधी हो, पशुपालन संबंधी हो, महिलाओं का प्रोग्राम आता है, घर परिवार
1: अच्छा
0: नाते
1: लगता है
0: संचालन
1: सुनते हुए,
0: है ना, और
1: अच्छा
0: इसमें
1: लगता
0: ज्ञान
1: है।
0: की बातें हैं,
1: मतलब सभी बातें मिलती हैं रेडियो
0: हाँ
1: से,
0: सभी चीजें सीखने को मिलती
1: सभी
0: हैं।
1: मिलती
0: तो
1: हैं।
0: चंपा देवी जी, अच्छा एक बात और बताइए कि हम देख रहे हैं आज कितनी भागदौड़ भरी जीवन है ना, इंटरनेट सबके पास ही मोबाइल आ गया
1: जी
0: है ना, ऐसे में हम देखते हैं कि थोड़ा परिवार भी अब कम बात करते हैं आपस में, इतने ज्यादा सबके पास मोबाइल हो गए हैं कि लोग
1: एक
0: एक
1: दूसरे के पास नहीं
0: नहीं बैठते
1: बैठते,
0: हैं,
1: नहीं
0: यहाँ तक कि
1: बैठते
0: रोटी खाने ते भी नहीं है एक साथ,
1: नहीं है,
0: है ना, सबका अलग अलग।
1: नहीं खाते रोटी।
0: तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सब सबको एक साथ पिरो के रखने के लिए एक क्या क्या करना चाहिए कि एक साथ खाना खाएं, एक साथ बातें करें, परिवार में मिलजुल के क्या करें?
1: अब करें तो बहुत तेरा, लेकिन बच्चे
0: नहीं हो
1: नहीं
0: पाते
1: नहीं
0: हैं।
1: बहुएं आई
0: तो
1: हैं
0: इस
1: तो वो
0: तरीके से
1: नहीं चाहती हैं कि
0: सब।
1: अब साथ में बैठ के हम खाना खाएं।
0: अच्छा आप लोग जब अपने शादी करके आए तो कितना बड़ा परिवार था, तो कभी ऐसा लगता था इतने सारे लोगों का खाना बना रहे हैं
1: हमारे
0: हम,
1: मायके में बहुत बड़ा परिवार था, ए टोकरी में खाना रखा
0: बनता
1: जाता
0: रखा
1: था।
0: जाता था। अच्छा पहले ये कॉमन बात थी, ये सामान्य बात थी कि भाई 10 10 15 15 चाचा ताऊ सबके परिवार मिलजुल के रह रहे हैं, सब लोग एक साथ बना
1: सब
0: के
1: इकट्ठे रहते थे,
0: रहते थे और एक साथ ही मतलब
1: खाना
0: कोई
1: खाते थे।
0: खाना खाना बनता था तो सब एक दूसरे की मदद कर रहा, कोई सब्जी काट ले रहा है, कोई छोंक रहा है, कोई आटा गूंद ले रहा है, कोई ऐसे तो काम भी नहीं पता चलता था।
1: पहले चक्की चलती थी, जो चक्की थी नहीं
0: हाँ वो जात वाली,
1: तो वो एक जनी पीस रही है तो एक जनी धान कूट रही है,
0: हाँ,
1: एक जनी खाना बना रही है, ये
0: और
1: होता
0: ये
1: था,
0: होता है और आदमी खुशी खुशी उन चीजों को कर लेता
1: कर
0: था।
1: लेते थे।
0: अब विडंबना देखिए कि अब हम देख रहे हैं कि एक कुटिया होती थी लगभग हर परिवार में,
1: हाँ
0: हर घर में
1: कुटिया
0: एक
1: रहती,
0: कुटिया जिसमें हम लोग जो है अभी गेहूं खंद गए तो उसके अंदर गेहूं रख
1: हाँ
0: दिया
1: रख
0: गया,
1: दिया।
0: और मैं हम अपने बचपन की ही बात बताएं तो हमारे पास ही लगभग 10 15 क्विंटल की एक कुटिया थी, साल भर का गेहूं उसमें खरीद के रख दिया गया, फिर ढोल हर महीने अपनी जरूरत
1: सभी
0: के
1: लोग रख
0: अनुसार
1: लेते हैं
0: रख
1: अब तो,
0: लेते
1: अब तो टीन के चल गई हैं,
0: वो
1: उन्हीं में
0: टीन
1: रख
0: वाली
1: लेते
0: मान
1: हैं।
0: के,
1: पहले
0: अब वो भी यकीन करिए कि वो भी नहीं हो रहा है।
1: टीन की नहीं
0: अब
1: थी,
0: पहले तो वो
1: पहले
0: मिट्टी की बनाई जाते
1: मिट्टी
0: थे,
1: की बनाए लेते थे, हम खुद बनाते थे मिट्टी
0: अपनी
1: की,
0: कुटिया बना ली
1: बना
0: उसमें।
1: लेते थे।
0: अच्छा अब आप देखिए कि वो प्रचलन भी ये पैकेट वाला आटा और ये सब, आधुनिकता जब बढ़ रही
1: बढ़ रही है,
0: है फिर लोगों पे अन्य काम बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोग नौकरी पेशे में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इन सब कामों को यानी कि गेहूं को कौन अब उसको साफ करे, फटके धोए, फिर सुखाए, फिर पिसवाने ले जाए, ये सब काम भी अब जो है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे
1: सब बंद बंद
0: विलुप्त हो रहा
1: होते
0: है,
1: जा
0: खत्म
1: रहे
0: हो
1: हैं।
0: रहा है ना। तो चंपा देवी जी, कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ रही हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, ऐसे में कुछ अपनी बात बताइए कि कैसे आपने रेडियो सुना और रेडियो से आपको लाभ मिला, कोई ऐसी।
1: रेडियो ऐसे काम करते थे तब रख
0: हाँ
1: लिया,
0: हाँ
1: चला के तब सुन रहे हैं, काम भी हो रहा है
0: हाँ
1: रेडियो।
0: तो आप जो आज के हमारे समाज में कई वर्ग हैं, भाई बेटे हुए, बहू हुए, फिर नाती पोते, छोटे बच्चे हुए, तो अगर हम बहुओं की कैटेगरी मतलब एक सामान्य बात करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यानी आपके जो
1: जी
0: बच्चे हैं, इस वर्ग को संबोधित करते हुए अगर आप बोलें तो क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं, लोग कैसे आपस में मिलजुल के रहें, समूह में खाएं पिएं, बातें करें, कुछ काम करें जिससे कि परिवार आगे बढ़े, परिवार के बीच एकता और समरसता बनी रहे, वो लगता है क्या करना चाहिए बच्चों को?
1: बच्चे मानते तो ही नहीं,
0: हाँ
1: कितने भी समझाओ कुछ
0: जी
1: भी
0: जब
1: करो,
0: करेंगे अपने ही मन
1: लेकिन
0: का,
1: करेंगे अपने ही मन का, लेकिन
0: हाँ फिर
1: नहीं
0: भी लेकिन आपको
1: जब
0: क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए, कुछ बताइए जिससे कि हमारे सभी श्रोता माने सुने कि भाई उनका परिवार में फिर से जो है दूरी आ रही है वो और अच्छी नजदीकी बनी रहे करें,
1: हाँ
0: तो
1: कुछ,
0: जैसे लोग एक साथ बात
1: हाँ
0: करें,
1: कुछ
0: बात करना बहुत जरूरी नहीं, आपको
1: तो
0: लगता है
1: बात नहीं कर पाते
0: एक
1: हम,
0: दूसरे से
1: नहीं
0: नहीं,
1: कर पाते
0: और सब
1: बात
0: अपने अपनी अपनी जीवन में व्यस्त हैं।
1: बस।
0: तो चंपा देवी जी, अच्छा, एक बताइए, हम अब बात करते हैं हमारे नौनिहालों की, हमारे छोटे छोटे बच्चों की,
1: जी
0: तो बच्चे जो हैं हम पहले अपने मान लीजिए कोई बाबा कोई चीज लाए, उन्होंने बच्चों को दिया और कहा लो भाई बेटा बांटो, तो
1: बांटो,
0: उसके पीछे की भावना ये होती थी कि पहले तुम सबको बांटो फिर खाना, वो चीजें मतलब संस्कार देते थे हम बच्चों
1: देते
0: को
1: थे,
0: किसी ना किसी तरीके से,
1: सही बात है।
0: तो अब वो क्या लगता है आपको कि बच्चों में संस्कार वो कम हो रहा है, तो कैसे बढ़ाएं क्या करें?
1: अब बड़ा बढ़ तो जाएगा,
0: जी
1: लेकिन उन बच्चों की जो माँ है
0: हाँ
1: जैसा सिखाएंगी वैसा ही सीखेंगे।
0: मतलब हाँ, लेकिन ऐसे में दादी दादा का भी तो रोल होता
1: दादी
0: है,
1: दादा का तब रोल होता है जब
0: हाँ
1: दादी दादा इकट्ठे होंगे,
0: जब साथ में रह रहे
1: साथ
0: हैं,
1: में
0: हाँ
1: रह
0: और अब
1: रहे
0: तो
1: हैं।
0: सब अलग अलग।

0: सभी कहते
1: न्यूक्लियर।
0: रहे तो दादी दादा को रोल आता है,
1: जी
0: अब अलग अलग हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: मम्मी पापा का रोल चलेगा।
1: और फिर वो फिर सब अलगाव विलगाव और लोग अलग, अपनी अपनी बात है। लेकिन ये मानती हैं आप कि बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं?
0: कम हो रहे हैं, कम हो रहे
1: हम
0: हैं।
1: लोग क्या पहले, आप देखते होंगे हम लोग अपने बचपन में, कोई आ जाए तो, या हम लोग कहीं अपने ननिहाल या गांव जाए तो कमर दुख जाती थी पांव छूते छूते,
0: छूते छूते अब
1: है
0: कोई नहीं छुएगा
1: है।
0: पैर।
1: और तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं लगता आपको कि धीरे धीरे गायब हो रही
0: अब
1: हैं?
0: तो पैर छूना बिल्कुल बंद
1: तो यानी एक
0: समझो।
1: तरीके से इसको पैर छूने को हम बस इसको संस्कार से जोड़ के बात कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कारों की कमियां हो रही हैं? नहीं,
0: हाँ, संस्कार की कमियां नेकाद ना हो रही, बहुत हो रही
1: बहुत
0: है।
1: हो रही। तो अब इसको बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को समय समय पर संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए कि कौन बड़ा है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, किससे सम्मान करना चाहिए। नहीं भाई, खाते समय हाथ धोना चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि
0: जी
1: खाते समय हाथ धोएं, पहले खाने से पहले भगवान को याद कर लें। पहले हम लोग जब हम अपने पापा के साथ खाते थे बचपन में, हमें याद है,
0: जी
1: तो पापा एक कौरा उसमें से सब में से निकाल के अलग रख देते थे।
0: रख देते थे
1: तो ये
0: पहले लोग, रख देते
1: रख देते थे।
0: थे।
1: तो ये चीजें अब धीमे धीमे धीमे धीमे कम होती जा रही
0: कम हो
1: हैं।
0: रही है।
1: लेकिन खैर, आप आज हमसे कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, इतनी सारी आपने हमसे बातें की और बताए अपने अनुभव कार्यक्रम में जुड़े हुए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे गीत सुनना भी पसंद है, कभी कोई गीत पसंद आया आपको?
0: हाँ, गीत पसंद
1: कौन
0: है
1: कौन
0: ना।
1: सा गीत आपको पसंद है? आज आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं
0: कोई
1: आपकी पसंद का कोई गीत, कोई गीत आपको याद हो जिसकी दो एक लाइन ही याद हो या गीत के बोल ही याद हो, तो
0: सा भी
1: कोई
0: सुनता
1: सा
0: है
1: लेकिन गीत सुनना पसंद है।
0: जी।
1: अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि अपने मन की कोई बात आज कार्यक्रम में हमारे साथ साझा कीजिए, जिससे कि जो हमें सुन रहे हैं हजारों लाखों लोग, वो भी उससे लाभान्वित हों, चाहे वो पशुपालन की ही हो, चाहे वो अपने जीवन से ही जुड़ी हो, चाहे वो सबको सबके लिए प्रेरणा का ही काम करें, तो क्या कहेंगी आप?
0: हमें तो भैंस को काम बहुत अच्छा लगता
1: मतलब
0: है
1: पशुपालन काम अच्छा
0: बस।
1: लगता है, तो उसमें पशुपालन कैसे करती हैं आप? अगर अच्छा मान लिया हमारे पशुपालक जो हैं भाई, वो लोग अपने पशुओं को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें, ज्यादा से ज्यादा उनके पशु स्वस्थ रहें, उसके लिए क्या क्या करें?
0: उसके लिए भूसा में जो हरा चारा है वो भी डालना चाहिए, खर है और चोकर भी है। अब तो गेहूं हो गए हैं, गेहूं डालो पिसा के और तब ज्यादा
1: हाँ, मतलब
0: मिलेगा।
1: जितना कहने का
0: हाँ,
1: मतलब आप
0: जितना
1: खिलाना
0: खिलाए,
1: चाहिए।
0: जितना खिला लोगे उतना ही मिलेगा।
1: कई बार हम लोग देखते हैं आजकल की ये जो डेयरी व्यवसाय एक चल गया है, इसमें पशुओं के साथ हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर चारा भी नहीं देते हैं, और अगर कोई पशु बिदक जा रहा है या दूध नहीं दे रहा है तो इंजेक्शन या अन्य माध्यमों से
0: नहीं,
1: उसका,
0: हम कभी नहीं लगाते हैं
1: और
0: इंजेक्शन,
1: लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये क्रूरता ही तो है।
0: कभी नहीं लगाया हमने इंजेक्शन। बहुत बरसों से भैंस, जब से हमारी
1: हाँ
0: शादी के आए
1: हाँ
0: हैं तब
1: हाँ
0: से हम भैंस पाल रहे हैं,
1: हाँ
0: लेकिन हमने इंजेक्शन कभी नहीं लगाया, चाहे दिया या नहीं दिया।
1: और लेकिन अच्छा खिलाएंगे तो पशु जरूर अच्छा
0: जरूर
1: दूध दे।
0: देगा।
1: तो ये बात भी आपने अच्छी बात कही कि भाई पशुपालक भाई ये बस इस बात का ध्यान रखें कि जैसा कि आज चंपा देवी जी का अनुभव है कि जब से इन्होंने विवाह उपरांत भैंस रखना शुरू किया, आज तक कभी इंजेक्शन के माध्यम से दुधारू पशु का दूध नहीं उतारा है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें, ये भी एक तरीके की पशु क्रूरता है और अपराध भी है। तो
0: अपराधों है। और दूसरी बात, उसमें क्या कहते हैं, बीमारियां फैलती
1: फैलती
0: हैं
1: हैं,
0: और नुकसान देता है बहुत
1: नुकसान
0: ज्यादा
1: शरीर के
0: देखा
1: लिए भी
0: जाए,
1: नुकसान है, न
0: और
1: सिर्फ भैंस के लिए या पशु के लिए, बल्कि
0: भैंसियों को
1: हम लोग जो दूध
0: नुकसान
1: पिए
0: है और जो लोग दूध पियेंगे उसका,
1: उनके लिए भी।
0: उनके भी लिए भी।
1: तो आप सुन रहे हैं ना श्रोताओं, कि बिल्कुल भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से आप किसी व्यवसाय में जुड़े हों तो थोड़ा सा आपका लाभ हो सकता है उससे बढ़ जाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपका जो पशु है वो बीमार होगा। तो आप चलते चलते चंपा देवी जी, आप ये हमको बताइए कि रेडियो के माध्यम से हमारे सभी पशुपालक भाई, चाहे सभी लोग कैसे जुड़ सकते हैं? इस वर्ष हम मना रहे हैं अपने 90 वर्ष, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा रेडियो सुने और इसका लाभ ले?
0: अब वो तो अपनी अपनी मर्जी है,
1: जी
0: जब मर्जी आए तो सुनो,
1: सुनिए। और
0: और क्या कहते हैं, ना मर्जी आए तो मत सुनो।
1: हाँ, लेकिन यह है कि सुनकर इन चीजों का लाभ उठाया जा सकता है, चाहे वो पशुपालन
0: जी,
1: संबंधी हो, चाहे वो
0: कुछ भी
1: जीवन।
0: सही।
1: तो चंपा देवी जी, कार्यक्रम में आज आप हमारे साथ यहाँ आई, स्टूडियोज में पधारी, आपने अपने जीवन से जुड़ी, पशुपालन से संबंधित और रेडियो से जुड़ी इतने संस्मरण हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट, और कार्यक्रम अक्षयवट में आज की हमारी मेहमान थी चंपा देवी जी, और हम आपका यहाँ से आकाशवाणी बरेली की तरफ से अनेक अनेक आभार व्यक्त करते हैं।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट में भेंट वार्ता, श्रीमती चिंपा देवी से बातचीत कर रहे थे ब्रजेश तिवारी। 104 FM पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने

वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 27 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें, विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 4 बजे और हमारा टेलीफोन नंबर है 251-7200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। मनोज पुत्र श्री राम निवासी ग्राम उम्मेदपुर थाना भुता जिला बरेली। सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी शारदा, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गोरा, आँख काली, बाल काले लंबे हैं, जो क्रीम रंग का सूट और क्रीम रंग की शलवार पहने हुए हैं, जो 25/4/2026 से लापता है। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो संजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट बरेली को सूचित करें। कमल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी 1146 ए सिविल लाइंस चौपला बगिया जिला बरेली। सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी शीतल, जिनकी उम्र 24 वर्ष, कद 5 फुट, रंग पक्का गेहुआ, इकहरा पतला जिस्म है, चेहरा लंबा है, बाल काले हैं और आंख सामान है, जो गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए हैं और दिनांक 13/5/2026 रात 8 बजे जिला अस्पताल जिला बरेली से लापता है। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जिला बरेली को सूचित करें। श्रोताओं खोए हुए व्यक्ति संबंधित एक और सूचना सुनिए। पुरुषोत्तम पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम अलीनगर थाना नवाबगंज जिला बरेली। सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री मानसी, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला है और बाल काले हैं, जो सूट सलवार हरे रंग का पहने हुए हैं, दिनांक 3/5/2026 से लापता है। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नवाबगंज को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी बुढ़िया के नाम। दादी आपके नाम।
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: महात्मा गांधी ने कहा था स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान। लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
6: सरकार ने इस वर्ष कुल 121 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
7: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
6: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
7: श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
6: शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
5: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
5: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
3: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
4: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं। जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई है।
0: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण

गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 107.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं आपके पत्रों पर आधारित पसंद के गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। ढेर सारे खत हैं और उन खतों में है आपके अनुरोध भरे गीत। ये पहला खत हमारे पास है बहेड़ी से अंजू भाई, खालदा बेगम, कहकशा, दानिश, आदिल, शफक और इनके परिवार के सभी लोगों का। आपने सुना चाहे फिल्म जीने की राह का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। गांव लोहड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, मास्टर अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन, जगमोहन, सुधीर नूतन और इनके परिवार के सभी लोग। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चढ़ौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहिद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। और ये खत है हमारे पास रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर और इनके परिवार के सभी लोग। शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार आप हैं। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, वीरेश सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, विक्की भारद्वाज, प्रदीप पाल, नमन और पदम भारद्वाज। बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, चवन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा, सलीमपुर बक्सर से राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। ये खत हमारे पास है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म जीने की राह का ये गीत।
2: नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

ये खत हमें भेजा है वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से, जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख करोला मुरादाबाद से, अयूब खान इरम और गुड़िया ने। मीरगंज से ही बिजली घर के पास से ये खत हमारे पास आया। भाई कल्लू मिस्त्री, नईम भाई, रिजवान भाई और इनके सभी साथियों का। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू भाई इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी और परिवार के सभी लोग। दसमले चौक परतूर जालना से जय श्री दसमले, शिवानी, अर्चना, आकांक्षा और इनके सभी परिवारीजन। भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और इनके परिवारीजन। खरगोन मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा और सभी वर्मा परिवार के लोग। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आप हैं साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार, खमरिया, बिलासपुर से। ये खत हमें भेजा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा ने। मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, वार्ड नंबर 6 औला बाजरिया से। आप हैं डाबर तालाव लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। ये खत हमें भेजा है वंदना, मनोरमा, अजय, रितिका, विनोद, छोटा अन्ना और इनके परिवार में। राम प्रसाद शर्मा, छावनी, अशरफ खां, मंदिर के सामने होली चौक, जिला बरेली से। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, जमीर खान और इनके सभी परिवारीजन। राबर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर।

अमर सिंह, हृदय बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमपति भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा और साथ में है शिवांश और प्रथव वर्मा। यह खत हमें भेजा है ककराला बदायूं से मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमवीर गोरखाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव, अमन खान और इनके सभी मित्रगण। तो आइए सुनते हैं फिल्म अमृत का ये गीत, महेंद्र कपूर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत है आनंद बख्शी का और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 27 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 4 बजे। और हमारा टेलीफोन नंबर 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। अगला गीत जिसको लिया है हमने फिल्म आन मिलो सजना से, आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और पसंद किया है आप सभी ने कटर चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, अरोई और स्वाति मौर्य। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज और साथ में साहिल। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनिजा, बिमला अनिजा और ये ख़दम भेजा है मौला अलवायन, शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और पदम सैनी। गड़ैया बरेली से ये ख़त हमारे पास आया है कैसा शमशी, अजीम शमशी, सलीम शमशी, नवैद शमशी, रजिया शमशी और इनके परिवार के सभी लोगों का। ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसावा जिला बदायूं तहसील दत्तागंज से सुभेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, अमन, अंकिता, अनीता, सूरज श्री, सनोज सोनी, विनीता, सुनीता और केशव यादव। पगीजा रेडियो श्रोता संघ बैशलब कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। आप हैं इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम, उल्ला अकरम नूरजहां, राजनाथ गांव से याकूब, आसमा, यूसुफ, इमरान, इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा, सोनम, अदीबा और इनके परिवार के सभी लोग। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आसिफ। आप हैं हमारी श्रोता ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। तो आइए सुनते हैं आन मिलो सजना का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन, निसार बाबा और साथ में मस्तान बाबा। जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। गंगवार रेडियो श्रोता संघ ग्राम दलपतपुर पोस्ट चटिया जिला बरेली से ओमपाल गंगवार, अनिता गंगवार, उनके मम्मी पापा। ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरनी जिला बरेली से अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार, छोटेलाल गंगवार। आप हैं हमारे श्रोता। अलीगंज रोड ग्राम मोहलिया से हजरत खां, आशमत खां, अजमत खां, डालमिया, रईस बानो। बिलराम गेट काजगंज से एम असलम सैफी, जैबुलनिशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। और आप हैं हमारे श्रोता पीर बहोड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद खां, मुस्तकीम तबस्सुम, मोहल्ला तलैया, उड़ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजल भाई, राम प्रसाद शर्मा और साथ में मैरून निशा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दथरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंदर कुमार वर्मा। आप हैं परिमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान और इनके सभी परिवारीजन। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजर

अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। आप हैं डोंगरगांव जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। ये खत हमें भेजा है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार। गंजडुंडवारा से मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बेगम, अरवाज खान, शहबाज खान, सूफिया, पप्पू भाई, अफजाना बेगम, महजबी शेख, बादाम अली, किशमिश जहां। तो आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। रचना है संतोष आनंद की और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इसी उम्मीद के साथ कि कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें अनुरोध गीत कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 103.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आज के इस अंक में आपको सुनवाते हैं कविता पाठ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विमल किशोर श्रीवास्तव।
1: अपने भारत माता के प्रति एक जवान की प्रतिज्ञा कि किस प्रकार से वो माँ की रक्षा में लगा रहता है, इस पर एक कविता है। कण कण बन बलिदान चढ़ूं या खंड खंड बट जाऊं मैं, कुल गौरव की मर्यादा पर कोई आंच न लाऊं मैं। सुनवा, या तो लौटूंगा मैं तिरंगे के पावन पट में लिपट कर, या सरहद पार विजय केतु को अंबर तक लहराऊं मैं। तेरे आंचल की छाया ने मुझको वज्र बनाया है, केसरिया बाने की खुशबू रोंगटे रोंगटे लाया है। सिंहनाद हूँ मैं समर का, सिंहनाद हूँ मैं समर का, फिर कालचक्र का डर ही क्या। अरिमस्तक का अर्घ चढ़ाकर मरुथल को नहलाऊंगा, और पुरखों के ऊंचे भाल को और भी ऊंचा कर जाऊंगा। अंगारों की सेज सजी हो या कांटों का हो पहरा, रंग भक्ति का चढ़ा हृदय पर सिंदूरी और गहरा। माँ नैनों के जल से अपनी ममता को न लजाना तुम, माँ नैनों के जल से अपनी ममता को न लजाना तुम। वीर प्रसूता कहला कर ही गर्व की ज्योत जगाना तुम, जो इंच इंच कट जाऊं तो भी जय भारत शब्द निकलेगा, जो इंच इंच कट जाऊं भी शब्द जय भारत ही निकलेगा। मेरी राख के हर जर्रे से एक नया सूरज निकलेगा। हिमगिरी की उत्तम शिखाएं मेरे प्रण की साक्षी हैं, सिंधु लहर की गर्जन बोले हम युग युग के रक्षी हैं। वतन की माटी मांग रही है शौर्य का चंदन टीका आज, मर्यादा की रक्षा हित ही गूंजेगा अब रणनाद आज। बौनी हो जाती है मौत जहां संकल्प प्रबल होता है, देश प्रेम का पथ ही केवल सबसे अधिक विमल होता है। मैं लौटूंगा बनकर बसंत या अमर ज्योति की एक लहर, तेरी लोरी की थाप सुनूंगा बनकर शीतल शांत पहर। इतिहासों के स्वर्ण पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जाऊंगा, होगा तिरंगा साथ मेरे जब धरा को छोड़ कर जाऊंगा। शपथ है मुझे उस माटी की जिसे शीश नवाता हूँ, प्राणों की आहुति देकर भी राष्ट्र धर्म निभाता हूँ, प्राणों की आहुति देकर भी राष्ट्र धर्म निभाता हूँ। इस कविता में एक संदेश है, कर्म को प्रेरित करती है। कविता प्रारंभ होती है, तुम बैठो यहीं इन सायों में, पुरानी यादों की बाहों में, शायद तुम्हें यकीन है उस पल का जो गर्त में छुपा है आने वाले कल का। तुम करो प्रतीक्षा उस आहट की जो शायद कभी सुनाई दे, या किसी ओझल हुई मंजिल की जो मुड़कर कहीं दिखाई दे। मगर मैं तो चला कि रुकना मुझे गंवारा नहीं, सिर्फ आस के सहारे जीना अब मेरा सहारा नहीं। मुझे काम करना है, मुझे कर्म को जीना है, पसीने की हर बूंद से अपना मुकद्दर सीना है। सपनों के महल ढह जाते हैं अक्सर इंतजार में, सपनों के महल ढल जाते हैं अक्सर इंतजार में, सत्य वही है जो पढ़ा जाए पुरुषार्थ के बाजार में। मुझे विश्वास नहीं उस मौन खामोशी पर जो केवल रुकने का बहाना देती है, मैं उस गति का हिस्सा हूँ जो हर पत्थर को रास्ता बना देती है, मैं उस गति का हिस्सा हूँ जो हर पत्थर को रास्ता बना देती है। तुम बैठो यहीं और बुनते रहो इंतजार के धागे, मैं निकल पड़ा हूँ।

0: अपने कर्मों के रथ के आगे। इस कविता में आजादी को परिभाषित किया गया है, स्वतंत्रता को। इस स्वतंत्र जीवन में भी किस प्रकार से मनुष्य कैद रह सकता है, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। कविता के बोल हैं, पिंजड़े से पक्षी को निकाल कर लाया हूँ, पर कहानी यहीं पूरी कहाँ होती। उसके पंखों में अब भी झिझक की धूल है और आंखों में कैद दिनों की परछाई सोती है। वो खुली हवा को छू कर ठिठक जाता है, जैसे आजादी भी कोई अजनबी डर हो। हर दिशा में फैली संभावनाओं के बीच उसके भीतर अभी भी पिंजरे का असर हो। लोहे की सलाखों के पीछे छूट गई, पर मन के भीतर जंजीरें बाकी हैं। उड़ान का आकाश सामने फैला है, पर यादों के बादल अब भी भारी हैं। मैं जानता हूँ पिंजड़ा केवल लोहे का नहीं, वो आदतों, डर और सीमाओं का घर होता है। उसे तोड़ना बाहर से आसान है, पर भीतर से मिटाना एक लंबा सफर होता है। मैं उसके संग बैठकर धूप बांटता हूँ, हर सुबह उसे नया भरोसा देता हूँ कि उड़ना केवल पंखों का हुनर नहीं, मन से भय को विदा करने का रास्ता देता हूँ। धीरे धीरे वो गुनगुनाना सीख रहा है, खामोशी से संवाद करना छोड़ रहा है। हर फड़फड़ाहट में एक नई चाह है, हर कोशिश में जीवन का विस्तार है। इसलिए मैंने ठाना है कि पिंजड़े से पक्षी को तो निकाल लाया ही हूँ, अब उसके मन से पिंजरे को भी मिटाऊंगा। उसे सिर्फ उड़ना नहीं, खुले आकाश में जीना सिखाऊंगा। स्वप्नदर्शी मनुष्य का मन, इस पर एक कविता है, त्रिकालदर्शी मन। इसकी पंक्तियां हैं, है क्षितिज सा झिलमिलाता, लड़कपन में खिलखिलाता, बरसात में इंद्र धनुषी मन, पर वक्त की आंधियों में घिरकर, कभी टूटा कभी जुड़कर, सीखा हर घड़ी संघर्षी मन। घर की जिम्मेदारियां ढोता, कभी अपनों के लिए रोता, मुश्किलों में भी स्थिर मन, भीड़ में रहकर भी तन्हा, खुद से ही करता है चर्चा, आत्मचिंतन में गढ़ता मन। काल भेदी नाद करता कष्ट में भी प्रमाद करता, ख्वाहिशों में स्वप्नदर्शी मन, सपनों का संसार सजाता, हकीकत से टकरा जाता, फिर भी न रुकता, त्रिकालदर्शी मन। और मन पर ही अगली कविता है, कविता के बोल हैं, क्यों होता है ऐसा हर बार, मन मांगे सुख मिले लाचार, जिसको पाने को मन तड़पे वो मिलकर भी जाए दूर पार। सपनों का सावन आता है, फिर सूखा मन रह जाता है, हाथों में जो थी रोशनी वो छूते ही बुझ जाती है। कभी हंसी बनकर मिलती खुशियाँ, कभी आंसुओं में ढल जाती है, मिलने की बेला पल भर की, फिर यादों में ही रह जाती है। क्या ये भाग्य का खेल है कोई, या मन की अपनी चाहत है, जो पास रहे वो भा न सके, जो दूर रहे वही राहत है। हर इच्छा बनती है धुन कोई, हर धुन अधूरी रह जाती, शायद यही है जीवन का राग, मिलकर भी दूरी रह जाती। ये कविता हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक संदेश है। कविता के बोल हैं कि चलो आओ थोड़ा अल्हड़ बनकर, फिर से हुल्लड़ मचाया जाए, थकी हुई इन राहों पर हंसी का दीप जलाया जाए। चलो हवा के संग उड़ चलें, बादलों से बातें कराएं, दिल के बंद दरवाजों को आज खुलकर फिर सजाया जाए। किताबों में बंद जो सपने हैं, उन्हें सड़कों पर टहलाया जाए, जो मुस्कान कहीं खो बैठी है, उसे होठों तक फिर लाया जाए। थोड़ा शोर मचाएं खुशियों का, थोड़ी शरारत कराएं, रूठी हुई जिंदगी को प्यार से फिर मनाया जाए। न कल की चिंता न कल का डर, आज बस दिल की सुन ली जाए, थोड़ा अल्हड़ बनकर आज हर पल को त्योहार मनाया जाए। चलो ठाकों से शाम रंग दें, चांद को भी हंसना सिखा दें, और सितारों की महफिल में अपनी कहानी गुनगुनाएं। थोड़ा अल्हड़ बनकर चलो आज फिर हुल्लड़ मचाया जाए, जीवन के इस भाग दौड़ में बचपन को फिर से बुलाया जाए।
1: अभी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे थे श्री विमल किशोर श्रीवास्तव। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप हिंदी कार्यक्रम सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को 7:45 पर।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में पेश खिदमत है कैलाश जोशी की आवाज में चंद गजलें। सबसे पहले समाअत फरमाइए कैसर उल जाफरी का कलाम कैलाश जोशी की आवाज में।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में समात फरमा रहे हैं चंद गजलें कैलाश जोशी की आवाज में। आइए अब सुनते हैं राहत इंदौरी का कलाम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कैलाश जोशी की आवाज में चंद गजलें। कलाम थे कैसर उल जाफरी, खुमार बाराबंकी और राहत इंदौरी के। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं श्रेया घोषाल के गायक गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म सिंघम से।

रोक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी के की। इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या प्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरक

0: उनकी कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
0: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्वभर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में

0: तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आरजू फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

दूसरा आदमी, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया और जयदेव का संगीतबद्ध किया तुम्हारे लिए फिल्म का गीत।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथोनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

हेमंत कुमार का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म खामोशी से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पारसमणि और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

पारस मड़ी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दो बदन से। इस गीत को स्वर दिया है आशा भोसले ने।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है भीगी रात।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी गिरिजा देवी का राग आभोगी कान्हड़ा में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का राग आभोगी कान्हड़ा में ख्याल गायन। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

0: किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities